आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलो हर्ज और FM 101.6 मेगा हर्ज पर। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 27वीं तिथि, तदनुसार 18 जुलाई 2026। प्रातः के 5:57 हो रहे हैं। हमारी आज की प्रथम सभा आरंभ होती है।

0: हम आकाशवाणी बीकानेर के डूंगरगढ़ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम 215.05 मीटर था 1395 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 6 बजने को ही अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के जालंधर से 20 राज्यों के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल माध्यम से कल लोकार्पण किया। इन स्टेशनों का पुनर्विकास अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत लगभग 1,570 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। ये योजना दुनिया के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन पुनर्विकास कार्यक्रमों में से एक है। विरासत भी विकास भी की भावना के अनुरूप विकसित इन स्टेशनों में स्थानीय संस्कृति, विरासत और वास्तुकला की झलक दिखाई देती है।
2: अब जैसे जालंधर है, यहाँ की पहचान खेलकूद से है, तो जालंधर कैंट स्टेशन में पंजाब की खेल परंपरा और लोक संस्कृति के दर्शन होते हैं। आप आनंदपुर साहब स्टेशन जाएंगे तो वहाँ तख्त श्री केसगढ़ साहब की झलक दिखाई देती है। कालका स्टेशन पर श्री काली मंदिर के दर्शन होंगे। यानी हमारे स्टेशन अब हमारी संस्कृति सभ्यता के प्रतीक भी हो गए हैं।
1: इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने करतौली अंबाला रेल सेवा और अमृत शेरहटा और वाराणसी के बीच संत रविदास एक्सप्रेस को झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री ने जालंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक की रेल और सड़क अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण भारतीय रेल में तेजी से हो रहे परिवर्तन का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के विकास के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार की प्राथमिकता लोगों की सेवा, उनके जीवन स्तर में सुधार और प्रगति के नए अवसर सृजित करना है। उन्होंने कहा कि सरकार नागरिक देवोभव के मंत्र के साथ कार्य कर रही है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने हरियाणा के जींद से देश की पहली हाइड्रोजन संचालित यात्री रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाई। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। ये सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। सरकार ने सत्र से पहले कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में पेंशन संबंधी मुकदमों पर आयोजित द्वितीय राष्ट्रीय कार्यशाला के पूर्ण सत्र को संबोधित करेंगे। मंत्रालय ने कहा है कि ये कार्यशाला सभी हितधारकों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करते हुए पेंशन संबंधी मुकदमों के प्रबंधन में सुधार करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित सीमा सुरक्षा बल की 18वीं बटालियन की जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे सीमा सुरक्षा बल के जवानों से संवाद करेंगे, प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे तथा पौधारोपण कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा बल से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। 3 दिन के दौरे पर श्री शाह आज सिलीगुड़ी में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का संयुक्त रूप से शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं से कनेक्टिविटी में सुधार होगा, यात्रा समय में कमी और यातायात जाम में कमी आने के साथ साथ पुणे में औद्योगिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 25 जुलाई तक 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में सचिव सीवी जॉर्ज ने कहा कि ये यात्रा मध्य और पूर्वी यूरोप के साथ भारत की बढ़ती भागीदारी को दर्शाती है। खेलों में हॉकी इंडिया आज से देश भर में कोचिंग और रेफरी शिक्षा कार्यशालाओं की शुरुआत करेगा। इसका उद्देश्य प्रशिक्षकों और तकनीकी अधिकारियों को आधुनिक प्रशिक्षण पद्धतियों और अंतर्राष्ट्रीय मानकों की जानकारी देना है। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष डॉ दिलीप तिर्की ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में आयोजित ये कार्यशालाएं देश में हॉकी की मजबूत नींव तैयार करने और खेल के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में आज सुबह पीवी सिंधु का सामना विश्व की चौथी वरीयता प्राप्त चीन की चेन युफेई से होगा। सिंधु कल अपने क्वार्टर फाइनल मैच में जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा के हटने के बाद अंतिम 4 में पहुंची। इसके परिणाम स्वरूप क्वार्टर फाइनल मुकाबला शुरू होने से पहले ही रद्द कर दिया गया, जिससे सिंधु को वॉकओवर मिल गया। फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज फ्रांस और इंग्लैंड की टीम आमने सामने होंगी। मियामी स्टेडियम में ये मुकाबला भारतीय समय के अनुसार 2:30 पर खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज पर प्रातः के 6:05 हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है आज का विचार। विषय है सत और असत। वाचक स्वर श्री मिलिंद पांडे का है।

सत्य और असत्य बेहद दिल को छूने वाला और मार्ग दिखाने वाला एक विषय है। साथियों, जीवन में हर दिन हमारे सामने दो रास्ते आते ही हैं, सत्य और असत्य। सत्य का अर्थ है ईमानदारी, सदाचार, करुणा और मानवता का मार्ग। वहीं असत्य का अर्थ है झूठ, छल, स्वार्थ और अन्याय का रास्ता। कई बार असत्य का मार्ग आसान और आकर्षक भी लगता है, लेकिन उसकी मंजिल कभी सुखद नहीं हो सकती। इसके विपरीत सत्य का मार्ग भले ही कठिन हो, लेकिन वही मन की शांति, समाज का सम्मान और स्थायी सफलता प्राप्त करता है जो सत्य के रास्ते पर पड़ता है। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि सत्यमेव जयते, अर्थात अंततः विजय सत्य की ही होती है। इसलिए हमें अपने विचारों, वाणी और कर्मों में सत्य और सदाचार को मजबूत बना के रखना चाहिए। याद रखिए, व्यक्ति की पहचान उसके धन या पद से नहीं, बल्कि उसके चरित्र और अच्छे कर्मों से होती है। तो आइए हम सब सत्य का मार्ग अपनाएं और अपने जीवन को सच्चे अर्थों में सार्थक बनाएं। तो आज का विचार अभी आपने सुना, विषय सत्य और असत्य। वाचक स्वर

हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:10 हो चुके हैं स्टूडियो की घड़ी में और समय हो गया है भक्ति संगीत के दैनिक कार्यक्रम वंदना का। तो शुभारंभ करते हैं हमारे इष्ट देव हनुमान के इस बेहतरीन भजन के साथ।

भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना आप आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से सुन रहे हैं। लीजिए अब सुनते हैं उषा सेठ के स्वर में सूरदास का भजन माई मैंने माखन खायो।

शाह सेठ के स्वर में सूरदास के इस भजन के साथ भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना संपन्न होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:30 हो रहे हैं। अब आप सुनेंगे रामचरित मानस गान, जिसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं बालकांड दोहे।

राजा जनक की यज्ञशाला में अपने को वीर तथा पराक्रमी समझने वाले राजे महाराजे शिव के धनुष को करोड़ों प्रकार से उठाने की चेष्टा कर असफल लज्जित हो अपने अपने स्थान पर वापस जा चुके हैं। तब 10,000 राजाओं ने एक साथ धनुष उठाने की चेष्टा की, किंतु शिव का धनुष है जिसे उठाना तो दूर, वे उसे तनिक डिगा भी नहीं सके। एक एक कर सभी वीर तथा पराक्रमी राजे महाराजे अपनी कीर्ति और वीरता गंवाकर उसी प्रकार उपहास के पात्र बन गए जैसे वैराग्य बिना सन्यासी हंसी का पात्र बन जाता है। राजा जनक के मन में संशय पैदा हुआ, क्यों उन्होंने ऐसा प्रण ठाना जिसे सुनकर न केवल द्वीप द्वीप के राजा आए वरन मनुष्य रूप धारण कर देवता तथा दैत्य भी उपस्थित तो हुए, किंतु धनुष तोड़कर सीता के हाथों जयमाल पहनने वाले को विधाता ने मानो रचा ही नहीं। धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर उसे तोड़ना तो दूर, कोई भूमि पर ही उसे हिला भी नहीं सका। जनक जी की अकुलाहट नैराश्य में परिणत हो गई। ब्रह्मा ने सीता के ललाट में विवाह शायद लिखा ही नहीं। राजा जनक के निराशा भरे वचन सुनकर उपस्थित समाज तो खिन्न हुआ, किंतु लक्ष्मण की भ्रिकुटी तन गई, होठ फड़कने लगे और क्रोध से आंखें लाल हो आईं। यदि उन्हें राम की आज्ञा मिले तो वो धरती को गेंद के समान उछालकर कच्चे घड़े की भांति फोड़ दें, फिर इस पुराने धनुष की तो बिसात ही क्या है।

रामचरितमानस गान के संक में अभी आपने सुना बालकांड दोहा संख्या 250 के आगे से दोहा संख्या 252 के बाद के आठवें पद तक का सस्वर पाठ। मुख्य स्वर श्रीकांत परगांवकर का था और संगीत सतीश भाटिया का। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:40 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

श्रोताओं, बात करें हमारे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की, तो प्रातः 9:10 पर आप सुनिएगा पॉडकास्ट प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ, प्रातः 9:10 पर।

कार्यक्रम चित्र भारती का अनुप्रसारण हम करेंगे रात्रि 9:30 पर, जबकि संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम आप सुनिएगा रात्रि 10 बजे से 11 बजे तक। इसमें आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं कलाकार देवव्रत मिश्रा का सितार वादन रात्रि 10 बजे संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में। ये दोनों कार्यक्रम यानी कि चित्र भारती और संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। जिले की चिट्ठी का समय रहेगा संध्या 6:42 का। ये कार्यक्रम हम अपने जयपुर अजमेर केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। श्रोताओं, अब से कुछ ही पलों में यानी कि 6:45 पर आप सुनोगे कार्यक्रम खेती की बातें। विषय होगा समय पर करें खरपतवार का नियंत्रण। वाचक स्वर होंगे श्री दीवानदान रत्नों के। उसके बाद आप सुनोगे 6:50 पर लोक भजन। सुप्रभात कार्यक्रम का समय रहेगा हमेशा की तरह 7:00। विषय होंगे अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस, जल है तो कल है, अध्ययन और मानसिक स्वास्थ्य। फिल्म संगीत सुनिएगा 7:30 पर। फिल्म संगीत आप फिर से सुनिएगा 10:00 से। और इसी सभा में 12:40 और 2:30 पर भी आप फिल्म संगीत का लुत्फ ले पाएंगे। श्रोता, मैं आपको बता दें कि आज 8:30 पर हम आपके लिए लेकर आएंगे विज्ञान की दुनिया यानी कि एक विशेष मासिक कार्यक्रम की का 22वां संस्करण। प्रमुख चर्चा का विषय रहेगा ब्रह्मांड की उत्पत्ति। वैज्ञानिक डॉक्टर आंचल चंद्रा से एक विशेष भेंटवार्ता भी होगी। प्रेरणादायक वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर भा आलेख व प्रस्तुति श्रीमती बरखा थानवी व्यास की होगी। संयोजन श्री अमित सिंह का 8:30 पर विज्ञान की दुनिया में। शास्त्रीय संगीत का प्रसारण होगा 9:40 पर प्रातः। हेलो बीकानेर, ये कार्यक्रम सुनिएगा आप 11:00। फोन इन पर आधारित इस कार्यक्रम को लेकर आएंगी श्रीमती प्रतिमा तिवारी 11:00। सुगम संगीत सुनिएगा प्रातःकालीन सभा में 12:10 पर। दोपहर महिला जगत कार्यक्रम बहने सुनेंगी हमेशा की तरह 1:05 पर। आज का कार्यक्रम संध्या शर्मा ओझा और वीणा ओझा लेकर आएंगी। आज आपको चर्चा का विषय सुनाएंगे घर से डिजिटल कंटेंट क्रिएशन और आय। वार्ता भी सुनाएंगे आपको एक कामकाजी महिला गृहस्थी और काम में सामंजस्य। वार्ताकार होंगी श्रीमती निर्मला शर्मा। कार्यक्रम महिला जगत के अंतर्गत 1:05 पर। सांध्यकालीन सभा में युवाणी का प्रसारण होगा संध्या 5:05 पर, जिसमें आज की बात का विषय रहेगा समय का सदुपयोग। फिल्म संगीत सुनेगा 6:00 शाम।

0: श्रोताओं, ये था हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:45 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बातें, जिसमें आज विषय है समय पर करें खरपतवार का नियंत्रण। वाचक स्वर है श्री दीवान दान रत्नू के।
1: किसान भाइयों, समय समय पर खरपतवार नियंत्रण जरूरी है, इसलिए समय समय पर खरपतवार नियंत्रण करना चाहिए। और खरपतवारों में सबसे खतरनाक खरपतवार है गाजर घास। इसका नियंत्रण बहुत जरूरी है। यह एक वर्षीय शाकीय पौधा है, जो लगभग 3-4 माह में अपना जीवन चक्र पूरा कर लेता है। पूरे वर्ष फलता फूलता है। इसकी पौधे की लंबाई 1 से 1.5 मीटर तक लंबी होती है। तना रायदार शाकीय होता है। पत्तियां गाजर अथवा गुलदाउदी पत्तियों की भांति होती है। पौधे पर सफेद रंग के छोटे छोटे फूल लगते हैं। गाजर घास का पौधा हर प्रकार की जलवायु में उगने की अभूतपूर्व क्षमता रखता है। भूमि की अम्लीयता, क्षारीयता, इसके अंकुरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्रत्येक पौधे से लगभग 7,000 अत्यंत सूक्ष्म बीज उत्पन्न होते हैं, जो अपनी स्पंजी गुदियों की सहायता से हवा और पानी द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से पहुंच जाते हैं और पूरी जमीन को बंजर कर देते हैं। गाजर घास का मनुष्य और पशुओं के लिए बहुत ही खतरनाक प्रभाव पड़ता है। गाजर घास को मनुष्य व पशुओं के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव में संपर्क आने से मनुष्यों में एलर्जी, चर्म रोग, एक्जिमा, दमा आदि की जानलेवा बीमारी हो जाती है। इस खरपतवार में पोर्थेनिन नामक विषैला पदार्थ होता है, अतः इसके खाने से पशुओं में अनेक प्रकार के रोग फैल जाते हैं। इस पशुओं के दूध में कड़वाहट आने लगती है। कृषि उत्पादन में होने वाले नुकसान का 33% केवल खरपतवारों द्वारा होता है, जबकि केवल गाजर घास खरपतवार खाद्यान्न फसलों की पैदावार में 40% कमी करने की क्षमता रखता है। गाजर घास के पौधों में एक्सोट्रोपिन नेक्टोन नामक विषाक्त पदार्थ दलहनी फसलों में जड़ ग्रंथियों का विकास करता रहता है। इस पौधे के शीर्ष भाग कट जाने या नष्ट हो जाने पर काफी पुनर्वृद्धि की क्षमता रखता है। पौधे की जड़ों की गहराई अधिक होने के कारण सूखा सहन नहीं करने की क्षमता अधिक होती है। गाजर घास नियंत्रण के लिए बहुत आवश्यक है कि इसे होने वाले कुप्रभाव की जानकारी जनता और किसानों को उपलब्ध कराई जाए। इसके नियंत्रण हेतु सामाजिक चेतना पैदा होनी चाहिए। सामूहिक रूप से पॉर्थेन उन्मूलन का अभियान चला सकते हैं। गाजर घास खरपतवार को जड़ सहित हाथों से या दस्ताने या प्लास्टिक की थैली पहनकर फूल आने से पहले उखाड़ कर जला देना चाहिए। फूल आने से पूर्व साधारण नमक के 20% घोल का छिड़काव उपयोगी रहता है। एकर्षित क्षेत्र में फल आने से पूर्व 2.5 किलोग्राम डीएस्टर प्रति हेक्टर की दर से छिड़काव करें। कृषि क्षेत्रों में बुआई से पूर्व फसल के अनुसार एट्रोजिन, एनाक्लोर, ब्यूटाल क्लोर के उपयोग से संबंधित फसल में इसका नियंत्रण किया जा सकता है। पैरावेक्ट 0.1%, गोलाइकासेट 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टर की छिड़काव से भी इस खरपतवार को नियंत्रण कर सकते हैं। इस खरपतवार से जैविक नियंत्रण हेतु परभक्षी कीट क्राइसोमोलिड, जाइगोग्रामा, बाइकोलोरेटा, भृंगू कीट का कीट ग्रह में पालन करके इनकी लट्टों और भृंगों को इस पर छोड़ने से पार्थियम की बढ़वार में सार्थक रूप से कमी आती है। यदि उपरोक्त विधि अपनाकर सामूहिक रूप से हम खरपतवार की रोकथाम करें तो निश्चित रूप से इसको हम खरपतवार को नष्ट कर सकते हैं। इसलिए समय पर खरपतवार नियंत्रण का महत्व जरूरी है।
0: श्रोताओं, अभी आपने खेती की बातें कार्यक्रम में सुना। विषय समय पर करें खरपतवार का नियंत्रण। वाचक स्वर श्री दीवानदान रत्नू का था। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ और FM 100

6.6 MHz पर। प्रातः के 6:50 हो चुके हैं। प्रस्तुत है लोक भजन भायारे कर लीजिए भजन हरि को, शेर मोहम्मद सुलखानिया के स्वर में सुनते हैं।

0: ह्यः सायंकाले पंजाबस्य जालंधर नगरात् आभासीय माध्यमेन देशस्य विंशति राज्येषु पुनर्विकसितानां पंचसप्तति रेलस्थानकानां उद्घाटनम् अकरोत्। एतेषां स्थानकानां अमृत भारत स्थानक योजनायाः अन्तर्गतम् आधुनिकीकरणं जातम्। एषा योजना विश्वस्य बृहत्तमासु स्थानक पुनर्विकास योजनासु अन्यतमा अस्ति। प्रायः 70.5 लाख कोटि रूप्यकाणां व्ययेन विकसितानि एतानि स्थानकानि यात्री सौविध्यैः समलंकृतानि सन्ति। पुनर्विकसितेषु स्थानकेषु पंजाबस्य जालंधर कैंट SAS नगरम, श्री मुक्तसर साहिब, श्री आनंदपुर साहिब इत्येतेषां स्थानकानां समावेशः अस्ति। तद् अतिरिक्तं गुजरात, ओडिशा, दक्षिण रेल क्षेत्राणां अनेकानि स्थानकानि अपि अत्र सम्मिलितानि सन्ति। अस्मिन् अवसरे प्रधानमंत्री करटोली अंबाला रेलसेवां, अमृतसर वाराणसी संत रविदास एक्सप्रेस चेत्येताभ्यां हरितध्वजं प्रदर्शितवान्। ह्यः जालंधरे प्रधानमंत्रिणा लोकार्पितानि राष्ट्राय समर्पितानि च एतानि पुनर्विकसितानि स्थानकानि एते द्वे रेलसेवे च रेलमार्गावसंरचना परियोजनानां भागाः सन्ति। एतासां परियोजनानां व्ययः 70.5 लाख अस्ति। अवसरेस्मिन् प्रधानमंत्री अवदत् यत् 75 पुनर्विकसित रेलस्थानकानां उद्घाटनं भारतीय रेल विभागस्य विगतेषु कतिपय वर्षेषु अभवत्, तीव्र परिवर्तनस्य द्योतकं च अस्ति।
1: केंद्र की भाजपा सरकार की भी प्राथमिकता है भारत के हर नागरिक की सेवा, भारत के हर नागरिक का जीवन आसान बनाना और उसे आगे बढ़ने के लिए नए नए अवसर उपलब्ध कराना, और इसलिए हम नागरिक देवो भव इस मंत्र पर चल रहे हैं। गरीब हो, मिडिल क्लास हो, ऐसे हर परिवार को बेस्ट से बेस्ट सुविधा मिले, ये हमारा प्रयास है और नागरिक देवो भव का ये भाव हमारे काम में दिखता है।
0: पूर्वान्ये एव प्रधानमंत्री हरियाणा राज्यस्य जिंद रेल स्थानकात् भारतस्य प्रथमाय हाइड्रोजन इत्यनेन चालित रेलयानाय अपि हरितध्वजं प्रदर्शितवान्। एतत् रेलयानं जिंद सोनीपत रेल स्थानकयोः मध्ये संचरिष्यति, अथ 89 किलोमीटर मिता दूरता प्रायः द्विहोरायां पूर्णं करिष्यति। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ह्यः एस्टोनिया देशस्य राजधान्यां ताल्लिन नगरे तत्रत्य विदेश मंत्रिणा मार्गुत साह्यकना इत्यनेन सह मेलनं विहितवान्। उभाभ्याम नेतृभ्याम भारत एस्टोनिया देशयोः मध्ये व्यापार, निवेश, अंकिकीय परिवर्तन, साइबर सुरक्षा प्रौद्योगिकी चेत्येषु क्षेत्रेषु सहयोगस्य सुदृढीकरण विषये विचार विमर्श कृतः। अनन्तरं साख्यकना इत्यस्य उपस्थितौ मंत्रिणा भारत एस्टोनिया व्यापार मंचम् अपि अभिसंबोधितम्। केन्द्रीयः गृहमंत्री अमितशाहः गतरात्रौ पश्चिम बंगाल राज्यस्य त्रिदिवसीयायां यात्रायां सिलिगुड़ी इत्यत्र सम्प्राप्तवान्। सिलिगुड़ी नगरस्य बागडोगरा विमानस्थानके आगमनावधौ पश्चिम बंगालस्य मुख्यमंत्रिणा सुवेन्दु अधिकारिणा तस्य स्वागतं विहितम्। श्रीशाहः अद्य जुमागाछ नगरस्य सीमाचौकी इत्यत्र VSF इत्यस्य 18वां बटालियन इत्यस्य भ्रमणं करिष्यति। बैडमिंटन क्रीडायां भारतीय क्रीडिका तथा द्विवारं ओलंपिक पदक विजेत्री PV सिंधुः अद्य प्रातः टोक्यो नगरे जापान ओपन क्रीडायाः महिला एकलस्य उपांत्य चक्रीय स्पर्धायां चीन देशस्य चेन युफेई सम्मुखी करिष्यति। इति वार्ताः।
2: आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज पर प्रातः के 7 बज चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुप्रभात।

0: अभी आपने सुना लोक भजन। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारो चैनल से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:55 हो रहे हैं। अब आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: इयम् आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

की खामोशियां अब उजाले के हवाले हो रही है। क्षितिज पर सुनहरी किरणें नई उम्मीदों के दीप जला रही है। हम आगे बढ़ रहे हैं और सूरज हमसे आगे चल रहा है। कहीं ना कहीं हम एक दूसरे को देखकर इस दुनिया के जीवन का आनंद ले रहे हैं। पक्षियों का मधुर कलरव, मंद समीर की छुअन और प्रकृति की मुस्कान मानो यह संदेश दे रही है कि हर नया सवेरा जीवन को और बेहतर बनाने का निमंत्रण लेकर आता है। सुबह केवल सूर्योदय नहीं बल्कि मन में नए विचारों, नई ऊर्जा और नए संकल्पों का उदय भी होती है। तो उन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मैं मालकों साहब का स्वागत करता हूं कार्यक्रम सुप्रभात में। श्रोताओं, सुबह की यह ताजगी, यह खुला आसमान, ये चहचहाते पंछी और प्रकृति की अनुपम छटा हमें हर दिन एक नई सीख देकर जाती है। कौन जानता है कि हमारी जिंदगी में कितनी और सुबह लिखी है, हमारी ये किताब कब तक चलेगी, कोई नहीं जानता। इसलिए जो भी सुबह मिली है उसे पूरे मन से जिए, अपने आसपास खुशियां बांटिए, रिश्तों में अपनापन बनाए रखिए और जहां तक हो सके प्रेम का दीप जलाइए। आखिर जिंदगी 4 दिन की ही तो है, इसे भी शिकायतों और नफरतों में हम गंवाएंगे? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता। हम तो इन हंसी वादियों को, इस खुले आसमान को, इन घटाओं को और उसमें घुले हुए प्रेम को हम महसूस करेंगे और आनंद लेंगे।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1800 420 2233 पर कॉल करें।
2: जब सुन

0: के पहले और चौथे रविवार को सुबह 8:30 बजे सुनिए कार्यक्रम हेल्दी बीकाना आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल की प्रस्तुति।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: हंसी वादियों में बहते झरनों को देखते हैं तो जल की बात तो करेंगे ही श्रोताओं, क्योंकि जल है तो कल है। ये बहुत पुराना वाक्य है, बहुत लंबे समय से सुन रहे हैं, लेकिन जल संरक्षण के ऊपर कितना सीरियसली हम सोच रहे हैं और उनको अपने एक्ट्स में किस प्रकार से हम निभा पा रहे हैं, ये हमारे ऊपर है। श्रोताओं, जल केवल एक प्राकृतिक संसाधन नहीं बल्कि जीवन का आधार है। पृथ्वी का लगभग 71% भाग पानी से ढका है, लेकिन उसमें 97% पानी खारा है। मीठे पानी केवल 3% है और उसमें भी अधिकांश हिमनदों तथा भूजल के रूप में सुरक्षित है। तो बचा क्या? मानव उपयोग के लिए उपलब्ध जल 1% से भी कम है। श्रोताओं, भारत विश्व की लगभग 18% आबादी का घर है, लेकिन हमारे पास विश्व के केवल 4% मीठे जल संसाधन है। इसलिए जल संरक्षण आज भविष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता बन चुका है। और बात करें राजस्थान की तो यहां तो सदियों पहले बावड़ी, जूहड़, टांका और कुंड जैसी जल संरक्षण प्रणालियों पर मतलब हम लोग आ चुके थे। पूरी दुनिया को हमने दिखाया कि पानी की हर बूंद का सम्मान कैसे किया जाता है। यदि हम वर्षा जल का संग्रह करें, टपकते नलों को समय पर ठीक करें, भूजल का विवेकपूर्ण उपयोग करें और जल स्रोतों को स्वच्छ रखें, तो आने वाली पीढ़ियों के लिए जल सुरक्षित रखा जा सकता है, क्योंकि जल है तो कल है। श्रोताओं, बारिश की पहली बूंद धरती की प्यास ही नहीं बुझा पाती मन, बल्कि वो मन की मिट्टी को भी महका देती है। सुन, जैसे ही वो पहली बूंद गिरती है मिट्टी पे, वो जो खुशबू आती है मिट्टी की, वो क्या वाइब्स लेकर आती है।

सकता हूँ। खेतों की हरियाली हो, किसानों के चेहरे की मुस्कान हो या बच्चों की खिलखिलाहट, सबकी शुरुआत बादलों की पहली दस्तक से ही होती है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: शुरू आज अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस है। प्रत्येक वर्ष 18 जुलाई को उनकी जयंती के अवसर पर यह दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2009 में इसकी घोषणा की और 2010 से पूरी दुनिया इसे मना रही है। नेल्सन मंडेला, उन्होंने रंगभेद के विरुद्ध संघर्ष करते हुए 27 वर्ष जेल में बिताए, लेकिन बाहर आने के बाद उन्होंने बदले की नहीं बल्कि मेल मिलाप और क्षमा की राह चुनी, तभी तो वो महान है। उनका एक प्रसिद्ध कथन है, शिक्षा दुनिया का सबसे शक्तिशाली हथियार है जिससे दुनिया को बदला जा सकता है। तो हम करते हैं प्रयास उस हथियार का उपयोग करके इस दुनिया को बदलने का। इस दिवस पर दुनिया भर के लोगों से कम 67 मिनट समाज सेवा का आग्रह किया जाता है। ये उनके 67 वर्षों के सार्वजनिक जीवन का प्रतीक है। नेल्सन मंडेला हमें सिखाते हैं कि परिस्थितियां कैसी भी हों, जीवन की यात्रा रुकनी नहीं चाहिए। रास्ते कभी आसान नहीं होते, लेकिन चलते रहने वालों की कभी हार नहीं होती। हम जानते हैं मंजिल तक पहुंचते वही हैं जो चलते रहते हैं। कदमों में विश्वास हो, मन में उम्मीद हो, इरादे सच्चे हो, तो हर सफर यादगार बन जाता है।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: श्रोताओं, शिक्षा केवल अंकों का खेल नहीं है बल्कि व्यक्तित्व निर्माण की सबसे बड़ी शक्ति है। लेकिन आज की प्रतिस्पर्धा में अनेक विद्यार्थी पढ़ाई के साथ तनाव का भी सामना करते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ केवल मानसिक रोगों का अभाव नहीं है बल्कि ऐसा मन है जो सीख सके, तनाव को संतुलित रूप से सामना कर सके और जीवन में सकारात्मक योगदान दे सके। तो इस परिभाषा में आप कितना फिट होते हैं अपने आप को जरा संभाल लीजिए। विशेषज्ञ बताते हैं कि लगातार 45 से 50 मिनट अध्ययन करने के बाद 5 से 10 मिनट का विश्राम

हम एकाग्रता बढ़ाने में सहायक हो सकता है। पर्याप्त नींद, संतुलित भोजन, नियमित व्यायाम और मोबाइल स्क्रीन का सीमित उपयोग। बड़ा मुश्किल लग रहा है लास्ट शब्द, मोबाइल स्क्रीन का सीमित उपयोग। यह मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है, अपनाइए इसे। यदि कभी पढ़ाई का दबाव अधिक महसूस हो तो उसे मन में दबाने के बजाय माता पिता, शिक्षक या किसी विश्वसनीय व्यक्ति से साझा करना चाहिए। सहायता मांगना कोई कमजोरी नहीं है बल्कि परिपक्वता की पहचान है। ऐसी परिस्थितियों में भारत सरकार ने टेली मानस सेवा शुरू की है, जिसके माध्यम से प्रशिक्षित मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से निशुल्क और गोपनीय तरीके से परामर्श प्राप्त किया जा सकता है। यदि किसी को तनाव, चिंता, अवसाद या मानसिक परेशानी महसूस हो रही हो तो टोल फ्री नंबर 14416 या 1-800-89-14416 पर किसी भी समय संपर्क किया जा सकता है। आप टोल फ्री नंबर फिर से नोट कर लीजिए, 14416 टेलीमानस हेल्पलाइन। जीवन की हर परीक्षा में सबसे बड़ा अंक आत्मविश्वास का होता है, और जब मन शांत हो, मुस्कान साथ हो और विश्वास बना रहे, तब कठिन से कठिन रास्ता भी आसान लगने लग जाता है और सब कुछ लगता है कि भैया ऑल इज वेल।

चाचू ऑल इज वेल। तो श्रोताओं अब विदा लेने का समय है, लेकिन सुबह यूं ही समाप्त नहीं हो जाती। ये तो पूरे दिन आपके विचारों, आपके व्यवहार और अपने कर्मों के साथ चलती रहती है। आगे उगते सूरज की ये रोशनी आपके सपनों को नई दिशा दे, हम ये कामना करते हैं। ज्ञान आपके व्यक्तित्व को नई ऊंचाइयां दे, प्रेम आपके रिश्तों को और गहरा बनाए और आपका हर दिन किसी के चेहरे की मुस्कान का कारण बने। याद रखिए, जीवन की सबसे बड़ी सफलता केवल आगे बढ़ना नहीं बल्कि आगे बढ़ते हुए लोगों को साथ लेकर चलने में है। तो इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मैं मालकोस आपसे अनुमति चाहता हूं। नमस्कार।

वेलकम सुप्रभात, हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलो हर्ट्ज और एफएम 101.6 मेगा हर्ट्ज पर। प्रातः के 7:30 हो चुके हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

ने सुना ये गीत, फिल्म का नाम था डेविड। आवाजें थी अनिरुद्ध रविचंदर और श्वेता मोहन की। इस गीत को लिखा था तुराज ने और संगीत था अनिरुद्ध रविचंदर का। बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे, सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म का नाम है दौड़। आवाजें हैं यशुदास और आशा भोसले की, संगीत ए आर रहमान का है।

तो श्रोताओं, बीच में हम आपको रोक के बता दें कि साधना सरगम और हरिहरन को आप सुन रहे हैं। फिल्म का नाम है दहक, संगीत है आनंद मिलिंद का और इस गीत को लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने। फिल्म दहक का सुनते हैं बेहतरीन नगमा।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: कुमार शानू और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजें, बप्पी लहरी का संगीत, अनजान के बोल, और फिल्म का नाम है दलाल। सुनते हैं बेहतरीन गीत

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

सुनते हैं फिल्म खिलाड़ी का ये गीत, आवाज़ें हैं उदित नारायण, अभिजीत और अलका याग्निक की, संगीत है जतिन ललित का।

अच्छा भोसले, उदित नारायण और अभिजीत के स्वर में अभी सुना आपने खिलाड़ी फिल्म का ये गीत, और इसी के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारो चैनल से बोल रहे हैं। दिन के बजने को है 8 और अब आप सुनेंगे समाचार प्रभात हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखिए, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे ये सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने

0: अमृत भारत योजना के अंतर्गत देश भर में 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण किया, 2 नई रेलगाड़ियों को भी रवाना किया। गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में सीमा सुरक्षा बल की सीमा चौकी का दौरा करेंगे, सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा और विकास कार्यों की भी शुरुआत करेंगे। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति को लेकर चिंता जताई, प्रदर्शनकारियों की मौत की जांच की मांग। टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पीवी सिंधु और चीन की चेन युफेई के बीच मुकाबला जारी। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात मियामी में तीसरे स्थान के लिए फ्रांस का मुकाबला इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के जालंधर से कल 20 राज्यों के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण किया। इन स्टेशनों का पुनर्विकास अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत लगभग 1575 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। ये योजना दुनिया के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन पुनर्विकास कार्यक्रमों में से एक है। विरासत भी विकास भी की भावना के अनुरूप विकसित इन स्टेशनों में स्थानीय संस्कृति, विरासत और वास्तुकला की झलक दिखाई देती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण भारतीय रेल में तेजी से हो रहे परिवर्तन का प्रतीक है।
1: अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत 1300 से ज्यादा रेलवे स्टेशन को आधुनिक बनाया जा रहा है और इनमें से कई स्टेशन पर काम पूरा हो चुका है। 75 स्टेशन का लोकार्पण किया गया है। जब आप यहाँ जालंधर कैंट स्टेशन में जाएंगे तब आपको एहसास होगा कि वाकई हमारा देश विकसित राष्ट्र बनने की ओर बढ़ रहा है।
0: इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने करतौली अंबाला रेल सेवा और अमृतसर छेहरटा और वाराणसी के बीच संत रविदास एक्सप्रेस को भी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार नागरिक देवो भवः के मंत्र के साथ कार्य कर रही है।
1: हम नागरिक देवो भवः इस मंत्र पर चल रहे हैं। गरीब हो, मिडिल क्लास हो, ऐसे हर परिवार को बेस्ट से बेस्ट सुविधा मिले, ये हमारा प्रयास है और नागरिक देवो भव का ये भाव हमारे काम में दिखता है।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री ने हरियाणा के जींद से देश की पहली हाइड्रोजन संचालित यात्री रेलगाड़ी को रवाना किया। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। ये सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। सरकार ने सत्र से पहले कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में पेंशन संबंधी मुकदमों पर दूसरी राष्ट्रीय कार्यशाला के पूर्ण सत्र को संबोधित करेंगे। सभी मंत्रालयों और विभागों के नोडल अधिकारी और सलाहकार कार्यशाला में भाग लेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित सीमा सुरक्षा बल की 18वीं बटालियन की जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे सीमा सुरक्षा बल के जवानों से संवाद करेंगे, प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे और पौधारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा बल से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। 3 दिन के दौरे पर श्री शाह आज सिलीगुड़ी में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। वे राज्य में 3 नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन और जन्म मृत्यु पंजीकरण से जुड़े मामलों की भी समीक्षा करेंगे। शाम को वे कोलकाता रवाना होंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का संयुक्त रूप से शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं पर 16,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। इन 3 परियोजनाओं में खराड़ी जंक्शन और शिरूर बाईपास के बीच 53 किलोमीटर से अधिक लंबी 6 लेन की सड़क शामिल है, जो 246 किलोमीटर लंबे पुणे संभाजीनगर ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे का पहला चरण है। इसके अलावा हटपसर और यवत के बीच करीब 32 किलोमीटर की सड़क और तालेगांव चाकन शिकरापुर के बीच करीब 54 किलोमीटर की सड़क का भी शिलान्यास किया जाएगा। इन परियोजनाओं से कनेक्टिविटी में सुधार, यात्रा समय में कमी और यातायात जाम में कमी आने के साथ साथ पुणे क्षेत्र में औद्योगिक और

0: आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गए।

0: भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाए। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी अशांति पर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क ने प्रदर्शनकारियों की मौतों की त्वरित निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की है। श्री तुर्क ने पाकिस्तानी अधिकारियों से संयम बरतने, लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने और हिंसा की घटनाओं के लिए जवाबदेही तय करने का आग्रह किया। उन्होंने क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच शांति बनाए रखने की अपील की। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार पिछले महीने से चुनावों से पहले जारी प्रदर्शनों के दौरान कई लोगों की मौत हुई है। उच्चायुक्त ने सभी मौतों की निष्पक्ष जांच की आवश्यकता पर जोर दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजनाओं को लेकर भारत और जापान के बीच बातचीत अच्छी तरह से आगे बढ़ रही है। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सोशल मीडिया पर की गई कुछ टिप्पणियां व्यक्तिगत राय पर आधारित हैं और तथ्यों से मेल नहीं खाती। उन्होंने बताया कि परियोजना का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और पहला खंड वर्ष 2027 में शुरू होने की उम्मीद है। चाबहार बंदरगाह के संबंध में विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमरीका की ओर से दी गई छूट कुछ समय पहले समाप्त हो गई थी और इस मामले को आगे बढ़ाने के लिए संबंधित पक्षों के साथ बातचीत जारी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत सरकार का रुख स्पष्ट है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के पूरे केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है।
2: मैं यह कहना चाहूंगा और हम लोगों ने हमेशा से ये कहते आए हैं कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरीज जो पूरा क्षेत्र है, ये भारत का अंग है, भारत का अंग था, भारत का अंग रहेगा।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एस्टोनिया के विदेश मंत्री मार्गत स्टाकना से राजधानी टालिन में मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौता वार्ता के सफल समापन के बाद नए अवसरों पर भी विचारों का आदान प्रदान किया। भारत एस्टोनेशिया व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि क्षमता और बड़े विनिर्माण आधार को विश्व स्तरीय उत्पादन के साथ जोड़कर द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत किया जा रहा है।
3: Working to strengthen each other's
4: हम एक दूसरे की अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करने और यूरोपीय संघ के सभी लोगों और भारतीयों के लिए साझा समृद्धि और बेहतर भविष्य की दिशा में मिलकर काम कर रहे हैं। हमने एफ्टा के साथ समझौते किए हैं जो पिछले साल 1 अक्टूबर से लागू हुए। ब्रिटेन के साथ समझौता 15 जुलाई को लागू हुआ और 27 देशों वाले यूरोपीय संघ के साथ समझौता 2027 की पहली तिमाही में लागू होगा। इन समझौतों के साथ हम पूरे यूरोप के साथ कई क्षेत्रों में दोतरफा व्यापार के लिए तैयार होंगे।
1: पनामा के विदेश मंत्री जेवियर एडवार्डो मार्टिनेज आचा वास्केज 5 दिन की यात्रा पर कल भारत आ रहे हैं। वे सोमवार को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर से मिलेंगे। भारत की 4 दिन की यात्रा पर आए जांजीबार के राष्ट्रपति डॉ. हुसैन अली मिवनई आज नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। कल उन्होंने चेन्नई में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के 63वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। हमारी श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आगामी कड़ी में हम रामवीर तंवर से बातचीत करेंगे। श्री तंवर ने जल संरक्षण और जल निकायों को पुनर्जीवित करने के लिए व्यापक कार्य किया है। उन्हें आमतौर पर पॉन्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है।
5: मेरा भतीजा आया था कि अंकल आपका नाम टीवी में आ रहा है और मैं भगा भगा नीचे गया। जब तक नीचे गया तो मन की बात प्रोग्राम तो चल रहा था, बट मेरा

0: पार्ट था वो खत्म हो गया था। तो मैं वापस गया अपने कमरे में, जब लेकिन वहां जाके देखा तो मेरा मोबाइल बज रहा था। मैंने उठा के देखा तो बहुत सारे ढेरों सारे मैसेज थे। पक्षी तालाब किनारे पे तो बैठ नहीं सकता, तो हम क्या करते हैं, तालाब के बीच में एक आइलैंड बनाते हैं मिट्टी का, उस पे बैठने की व्यवस्था करते हैं। अभी तक 100 से ज्यादा आइलैंड बनाए हैं।
1: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
2: ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी गोल्ड पर सुना जा सकता है। आप इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पीवी सिंधु और विश्व की चौथी वरीयता प्राप्त चीन की चेन युफेई के बीच मुकाबला जारी है। सिंधु कल अपने क्वार्टर फाइनल मैच में जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी नोकुहारा के हटने के बाद अंतिम चार में पहुंची है। और अब अन्य खेल खबरों के साथ है मृगनयनी पांडे।
3: हॉकी इंडिया आज से देश भर में कोचिंग और रेफरी शिक्षा कार्यशालाओं की शुरुआत करेगा। इसका उद्देश्य प्रशिक्षकों और तकनीकी अधिकारियों को आधुनिक प्रशिक्षण पद्धतियों और अंतर्राष्ट्रीय मानकों की जानकारी देना है। हॉकी इंडिया की अध्यक्ष डॉ. दिलीप तिर्की ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में आयोजित ये कार्यशालाएं देश में हॉकी की मजबूत नींव तैयार करने और खेल के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। अब अगर बात करें फीफा विश्व कप की, तो फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज फ्रांस और इंग्लैंड की टीम आमने सामने होगी। मियामी स्टेडियम में यह मुकाबला भारतीय समय के अनुसार 2:30 पर शुरू होगा। विश्व कप का फाइनल कल रात न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी स्टेडियम में अर्जेंटीना और स्पेन के बीच खेला जाएगा। यह मुकाबला भारतीय समय के अनुसार 12:30 पर शुरू होगा। समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
2: मौसम विभाग ने उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कल तक तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में भी कल तक तेज वर्षा हो सकती है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है फरहत नाज।
4: धन्यवाद जागृति। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत को सभी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अमर उजाला लिखता है, न धुआं न प्रदूषण, रेलवे में हरित परिवहन की शुरुआत। प्रधानमंत्री ने कहा, दुनिया की सबसे लंबी और ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेन। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, हाइड्रोजन की ताकत, स्वदेशी तकनीक, पटरी पर दौड़ी देश की ऐसी पहली ट्रेन। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर नागरिकता का प्रश्न उठाते हुए लिखा है, समस्या ये है कि अपने देश में नागरिकता सिद्ध करने वाला कोई सुनिश्चित प्रमाण पत्र नहीं है। हिंदुस्तान ने SIR से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी को प्रथम पृष्ठ पर दिया है। SIR में नाम कटने से नागरिकता नहीं जाती। 10 और 20 रुपए के प्लास्टिक नोट अगले साल आ सकते हैं, लिखता है दैनिक भास्कर। पॉलीमर शीट कंपनियों से निविदाएं मंगाई, 18 अगस्त को टेंडर। जनसत्ता ने RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा का बयान दिया है, कमजोर मानसून आर्थिक वृद्धि के लिए जोखिम।
2: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत योजना के अंतर्गत देश भर में 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण किया, 2 नई रेलगाड़ियों को भी रवाना किया। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में सीमा सुरक्षा बल की सीमा चौकी का दौरा करेंगे, सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा और विकास कार्यों की शुरुआत भी करेंगे। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति को लेकर चिंता जताई, प्रदर्शनकारियों की मौत की जांच की मांग। टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पीवी सिंधु और चीन की चेन युफेई के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम संजय मट्टू। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi inaugurates 75 redeveloped railway stations across the country under Amrit Bharat scheme. Also flags off 2 new train services. Home Minister Amit Shah to visit BSF border outpost in West Bengal today to review security and launch development initiatives. UN Human Rights Agency voices concern over wave of unrest in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. Calls for probe into deaths of protesters. In Japan Open Badminton, PV Sindhu faces Chen Yufei of China in semi-final of women's singles in Tokyo, and in FIFA World Cup, France and England to lock horns for third place at Miami tonight. Prime Minister Narendra Modi

0: ज्ञान के नए आयामों से रूबरू करवाता हमारा विशेष मासिक कार्यक्रम विज्ञान की दुनिया।
1: नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का हमारे विज्ञान आधारित विशेष कार्यक्रम विज्ञान की दुनिया में। आज है कार्यक्रम की दूसरी कड़ी। हम एक बार फिर आपके साथ लेकर आए हैं विज्ञान की अनोखी, अद्भुत और ज्ञानवर्धक दुनिया की नई कहानियां और रहस्यों से भरे रोचक विषय। पिछले कार्यक्रम में हमने आपके साथ विज्ञान की कुछ अनोखी और रोमांचक बातें साझा की थी। आज हम विज्ञान की इस यात्रा को आगे बढ़ाते हुए लेकर आए हैं कुछ और दिलचस्प विषय और नई जानकारियां। इस कड़ी में हम आपको विज्ञान के विभिन्न पहलुओं से रूबरू कराएंगे, चाहे वे ब्रह्मांड की अनोखी गुत्थियां हो या फिर रोजमर्रा की जिंदगी में विज्ञान की भूमिका। हमारे साथ जुड़े रहिए क्योंकि हम आपके लिए लाए हैं नई खोजों और वैज्ञानिक तथ्यों का खजाना। पहली कड़ी में हमने जाना कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे जीवन में कैसे घुल मिल रही है और इसके फायदे, जोखिम और चुनौतियां क्या है। आज हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति, बिग बैंग और अंतरिक्ष के अद्भुत रहस्यों को समझने की कोशिश करेंगे। हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे विज्ञान ने हमारी सोच और समझ को अनंत आकाश तक पहुंचाया है। साथ ही आज की कड़ी में हम अक्टूबर माह में विज्ञान को मिली नई दिशा, आविष्कारों और ऐसे नए शोध पर बात करेंगे जो हमारी दुनिया को तेजी से बदल रही है। हमारे आज के वैज्ञानिक होंगे भारत के महान वैज्ञानिक और भारत में परमाणु ऊर्जा के जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। अंत में हम जानेंगे कि कैसे नई तकनीकों का विकास हो रहा है और कैसे युवा इन तकनीकों को समझने के लिए उच्च अध्ययन की ओर अग्रसर हो सकते हैं। इसे समझने के लिए हम कार्यक्रम में बात करेंगे सीनियर साइंटिस्ट आंचल चंद्रा से, जो कि हमें बताएंगी उच्च अध्ययन का मार्ग और कैसे जैव प्रौद्योगिकी यानी कि बायोटेक्नोलॉजी हमारे स्वास्थ्य में सुधार ला रही है। तो विज्ञान की इस रोमांचक यात्रा पर हमारे साथ बने रहिए। चलिए बिना किसी देरी के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और इस कड़ी में विज्ञान की नई दिशाओं और उपलब्धियों की खोज में निकलते हैं। विज्ञान की दुनिया में आज हम आपको ब्रह्मांड की उत्पत्ति से लेकर आज तक की यात्रा पर ले चलेंगे। ये एक ऐसी यात्रा होगी जो बिग बैंग से शुरू होती है और हमें समय के सबसे रहस्यमय और अद्वितीय क्षणों में ले जाती है। इस यात्रा में हम जानेंगे कि कैसे ब्रह्मांड अस्तित्व में आया, कैसे इसमें तारों और ग्रहों का निर्माण हुआ और कैसे इसने एक अनजाने सफर पर निकलकर जीवन और आकाश गंगाओं का निर्माण किया। आज के इस रोमांचक एपिसोड में हम ब्रह्मांड के सबसे पुराने रहस्यों से लेकर नवीनतम वैज्ञानिक खोजों तक के अनगिनत पहलुओं पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस अनंत यात्रा की, जिसमें विज्ञान की रोशनी और ब्रह्मांड के अद्भुत रहस्य हैं। लगभग 13.8 अरब साल पहले ब्रह्मांड में कोई तारे, ग्रह या आकाशगंगाएं नहीं थी। हर चीज एक अत्यंत घनी और गर्म अवस्था में थी, जिसे वैज्ञानिकों ने सिंगुलैरिटी कहा। इस सिंगुलैरिटी से एक महाविस्फोट हुआ जिसे आज हम बिग बैंग के नाम से जानते हैं। यह महाविस्फोट मात्र एक धमाका नहीं था, बल्कि ये ऊर्जा और पदार्थ का विस्तार था। इस प्रक्रिया के दौरान ब्रह्मांड में समय, स्थान और ऊर्जा अस्तित्व में आए। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार जब ब्रह्मांड का जन्म हुआ तब वह बहुत ही गर्म और घना था। इस अत्यधिक गर्मी ने पदार्थ को प्लाज्मा अवस्था में बदल दिया। कुछ ही क्षणों के बाद जैसे ही ब्रह्मांड का तापमान कम हुआ, पदार्थ ने अपनी संरचना बदलनी शुरू की और क्वार्क तथा ग्लूओन जैसे प्राथमिक कणों का निर्माण हुआ। इन कणों ने मिलकर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनाए, जो आगे चलकर परमाणु का निर्माण करने लगे। बिग बैंग के कुछ मिनटों बाद ब्रह्मांड बहुत गर्म और घना था। कुछ समय बाद जब ब्रह्मांड का तापमान कम होने लगा तब परमाणु बनने लगे और यह गर्म गैस धीरे धीरे ठंडी होने लगी। वैज्ञानिक इस समय को रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। जब रिकॉम्बिनेशन हुआ तब प्रकाश की किरणें स्वतंत्र रूप से यात्रा कर सकी और यह पहली बार था जब ब्रह्मांड में प्रकाश दिखाई देने लगा। इसे वैज्ञानिक कॉस्मो माइक्रोवेव बैकग्राउंड

या CMB कहते हैं। CMB एक प्रकार का रेडिएशन है जो आज भी ब्रह्मांड में मौजूद है। वैज्ञानिकों ने इसे मापने के लिए कई उपग्रहों और टेलीस्कोप का प्रयोग किया। इससे हमें ब्रह्मांड की शुरुआती अवस्था और उसके तापमान का अनुमान लगने में मदद मिलती है। ब्रह्मांड के विस्तार की अवधारणा का श्रेय महान खगोल शास्त्री एडविन हबल को जाता है। हबल ने 1920 के दशक में ये खोज की कि आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं। इसका मतलब है कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। उन्होंने ये भी पाया कि जितनी दूर की आकाश गंगा होती है वह उतनी ही तेजी से हमसे दूर जा रही होती है। इसे हबल का नियम के रूप में भी जाना जाता है। हबल के इस सिद्धांत ने बिग बैंग थ्योरी की पुष्टि की और ये दिखाया कि ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है। इससे ये सवाल भी उठता है कि क्या ये विस्तार हमेशा जारी रहेगा या किसी समय पर रुक जाएगा। बिग बैंग के बाद के कुछ 100 मिलियन वर्षों में ब्रह्मांड में हाइड्रोजन और हीलियम गैस के बादल थे। इन बादलों ने गुरुत्वाकर्षण के कारण संकुचित होकर पहले तारों और आकाशगंगाओं का निर्माण किया। इन तारों के अंदर परमाणु संलयन की प्रक्रिया से नए तत्व बनने लगे। इन नए तत्वों के बनने से ब्रह्मांड का स्वरूप बदलने लगा और उसमें विविधता आने लगी। जब तारे अपने जीवन के अंत में पहुंचते हैं तो वे विस्फोट कर देते हैं, जिसे सुपरनोवा कहा जाता है। इन विस्फोटों के दौरान भारी तत्व अंतरिक्ष में फैल जाते हैं और नए तारों, ग्रहों और धूमकेतुओं के निर्माण में सहायक बनते हैं। लगभग 4.6 अरब साल पहले एक विशाल गैस और धूल का बादल हमारे सौरमंडल के निर्माण के लिए संकुचित हुआ। इस बादल के बीच में अत्यधिक संकुचन के कारण सूर्य का निर्माण हुआ। इसके चारों ओर की धूल और गैस से ग्रह, चंद्रमा, धूमकेतु और अन्य खगोलीय पिंड बने। हमारा ग्रह पृथ्वी भी इसी प्रक्रिया से बना और एक विशेष दूरी पर स्थित होने के कारण यहाँ जीवन के लिए अनुकूल स्थितियां बनी। पानी, हवा और तापमान जैसे तत्व पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने में सहायक बने। अब प्रश्न ये उठता है कि पृथ्वी पर जीवन कैसे आया। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब वैज्ञानिक आज भी खोजने का प्रयास कर रहे हैं। शुरुआती पृथ वी पर कई रासायनिक प्रक्रियाएं हुई। इन प्रक्रियाओं से जीवित कोशिकाओं के मूल तत्व जैसे कि अमीनो एसिड बने। इन कोशिकाओं ने धीरे धीरे जटिल संरचनाओं का निर्माण किया और एक समय पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और पौधे विकसित होने लगे। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति और विकास हमें ये बताती है कि प्रकृति में कितनी शक्ति और विविधता है। समय के साथ जीव जंतु और पौधों में विकास होता गया और आज हम यहाँ तक पहुँचे जहाँ हम अपने ब्रह्मांड को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम जानते हैं कि ब्रह्मांड में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमें दिखाई नहीं देती। वैज्ञानिकों ने इसे डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का नाम दिया है। यह अनुमान है कि ब्रह्मांड में 27% डार्क मैटर और लगभग 68% डार्क एनर्जी है। यह डार्क मैटर और डार्क एनर्जी ब्रह्मांड के विस्तार और संरचना को नियंत्रित करते हैं। डार्क मैटर के बिना ब्रह्मांड का स्वरूप पूरी तरह से बदल सकता है। ये रहस्यमयी पदार्थ गुरुत्वाकर्षण के रूप में कार्य करता है और आकाश गंगाओं को आपस में बांधने में मदद करता है। वहीं डार्क एनर्जी ब्रह्मांड के विस्तार को बढ़ाने में सहायक है। 20वीं सदी में विज्ञान ने ऐसी खोजें की जो ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में सहायक साबित हुई हैं। हबल टेलीस्कोप और अन्य अंतरिक्ष दूरबीनों ने हमें अंतरिक्ष के दूरस्थ भागों को देखने में मदद की है। इसके साथ ही हम ये जान पाए हैं कि ब्रह्मांड में न केवल हमारी आकाशगंगा बल्कि अरबों आकाशगंगाएं हैं। इन आकाशगंगाओं में असंख्य तारे हैं और ग्रह हैं। अंतरिक्ष विज्ञान और खगोल शास्त्र ने कई नई दिशाएं खोली हैं। वैज्ञानिक अब ब्लैक होल, वार्म होल और मल्टीवर्स जैसी अवधारणाओं पर शोध कर रहे हैं। ये विषय हमारी समझ को और बढ़ाता है और हमें नए नए सवाल के जवाब खोजने की प्रेरणा देता है। अब ये सवाल आता है कि ब्रह्मांड का भविष्य क्या होगा। क्या ये विस्तार हमेशा जारी रहेगा या क्या ब्रह्मांड में कोई अंत है। एक सिद्धांत है जिसे बिग क्रंच कहा जाता है। इसके अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार किसी समय पर रुक सकता है और इसके बाद ये संकुचन की प्रक्रिया में जा सकता है। इसका मतलब है कि एक दिन ये वापस सिंगुलैरिटी में भी बदल सकता है। दूसरी ओर कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्रह्मांड का विस्तार अनंत काल तक

0: चलता रहेगा और ये किसी अंतिम अवस्था में नहीं पहुंच सकता। इस सिद्धांत को बिग फ्रीज कहा जाता है। इसके अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार धीमा हो सकता है, लेकिन ये हमेशा के लिए निरंतर जारी रहेगा। तो श्रोताओं, आज हमने ब्रह्मांड की उत्पत्ति से लेकर आज तक के सफर को समझने की कोशिश की। ये है एक अनंत यात्रा है जो हमारे जीवन और अस्तित्व को एक नई दृष्टि से देखती है। हम जितना ब्रह्मांड को समझने की कोशिश करते हैं, उतना ही ये हमें अपने रहस्यों में उलझाता है। विज्ञान ने हमें इस यात्रा पर भेजा है और ये यात्रा हमें न केवल ब्रह्मांड की अद्भुतता को देखने का अवसर देती है, बल्कि हमारे अस्तित्व के मायने भी समझाती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये यात्रा ज्ञानवर्धक और रोचक लगी होगी। श्रोताओं, विज्ञान की दुनिया के सफर को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट की ओर। इसमें हम बात करेंगे सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर आंचल चंद्रा से विज्ञान और विज्ञान विषय से जुड़े उच्च अध्ययन के बारे में। आंचल जी, स्वागत है आपका स्टूडियो में।
1: नमस्कार, थैंक यू।
0: हम आपसे जानना चाहेंगे कि एक विद्यार्थी के तौर पर आपने विज्ञान विषय को क्यों चुना? विज्ञान विषय को चुनने, साइंस से लेकर साइंटिस्ट बनने तक का आपका सफर आपने कैसे तय किया?
1: एज अ साइंस, अब मुझे शुरू से रुचि थी स्कूल में साइंस के सब्जेक्ट में, बायोलॉजी में, और मैं हमेशा उसी डायरेक्शन में, उसी विषय में आगे पढ़ना चाहती थी। स्कूल खत्म करने के बाद ऑफ कोर्स मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं एज यूजुअल इंजीनियरिंग या डॉक्टरेट की जाए, जिसके लिए मेरी माँ की बहुत इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूं। तो मैंने उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम दिए और मुझे कुछ हद तक सफलता मिली, लेकिन फिर ऑप्शन था कि या तो कहीं बहुत दूर ऐसे ऑप्शन थे या फिर डेंटल में। पर मुझे था कि मुझे प्योर बायोलॉजी में कुछ मोर, जहाँ पे मैं डिस्कवरी कर सकूँ, कुछ नया ऐसा सीख सकूँ या पढ़ सकूँ, ऐसे उसमें काम करना था। तो उस वक्त मैंने डिसाइड किया कि मैं साइंस में ही, प्योर साइंसेस में ही अपना बैचलर्स करूँगी। तो उस वक्त मैंने बैंगलोर में जाके बैचलर्स इन जेनेटिक्स में पढ़ाई की, जो कि एम एस रमा बैंगलोर में थी। उसके बाद मैंने वहाँ पे अच्छा स्कोर किया, अच्छे मार्क्स आए। उसके बाद मैंने मेरा मास्टर्स इन बायोमेडिकल जेनेटिक्स वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी वेल्लोर से किया। और ये करते करते बाय एंड ऑफ इट मैंने काफ़ी सारे पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई किया, इंडिया में और बाहर भी। और मुझे फिर बाहर मैंने जर्मनी और यूके में कई सारी जगह अप्लाई किया, जहाँ से मुझे इंटरव्यू कॉल आए। फिर फाइनली मैंने मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर मॉलिक्यूलर फिजियोलॉजी जर्मनी में अपना पीएचडी प्रोग्राम में ज्वाइन किया, जहाँ पे मैंने 4 साल कैंसर बायोलॉजी रिसर्च में बिताए। उसके बाद मेरा पीएचडी प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद मैंने एक्चुअली काफ़ी अच्छे पेपर पब्लिश किए, जिसकी वजह से मुझे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन से पोस्ट डॉक्टरेट करने के लिए इनविटेशन आया। और मैंने वहाँ पे एक लैब में ज्वाइन किया, जहाँ पे मैं मोस्टली अगेन कैंसर रिसर्च में ही काम कर रही थी अगले 4 साल तक। मुझे एक ऐसे प्रोग्राम मिला जहाँ पे मुझे कुछ समय नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज में स्पेंड करना था और कुछ समय मेडिकल रिसर्च काउंसिल कैंसर यूनिट कैम्ब्रिज में स्पेंड करना था। तो मैं शुरुआत के कुछ सालों में एमआरसी कैम्ब्रिज में मैंने काम किया एज अ सीनियर साइंटिस्ट, और उसके बाद मेरा बाकी का समय मैंने एनसीबीएस में वापस आकर अपना प्रोजेक्ट खत्म किया और एज एन अर्ली करियर साइंटिस्ट मैंने वहाँ काम खत्म किया। कहीं पे भी आपको अगर हायर एजुकेशन पीएचडी परस्यू करनी है तो मोस्टली वो दे आर कवर्ड बाय फेलोशिप विच इज ग्रांटेड बाय द आइदर डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक डीबीटी और दे आर अदर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, बट दीज आर मोस्टली कवर्ड बाय द गवर्नमेंट। तो किसी भी हायर एजुकेशन पीएचडी प्रोग्राम के लिए आपको ऐसा अपनी तरफ से कुछ नहीं देना।
0: आर्थिक रूप से विद्यार्थियों को परेशान होने की जरूरत नहीं है अगर वो उच्च अध्ययन करना चाहते हैं तो। आपके कहने का मतलब है संभावनाएं तो खूब हैं विदेश के अंदर, ऐसी बात नहीं है। चुनौती ये है कि हमें उसका रास्ता पता होना चाहिए। एक शब्द रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ में हम आजकल बहुत सुनने में आ रहा है, क्योंकि आप भी अभी फिलहाल उसी से जुड़ी हुई है। स्टार्टअप शब्द, आप अपना एक स्टार्टअप लेकर आए हैं। जो आपका स्टार्टअप है वो आपके बायोटेक्नोलॉजी, जो आपका विषय है अध्ययन का, उससे जुड़ा हुआ है, उसके बारे में हमें आप कुछ बताना चाहेंगी और क्या सरकार से आपको उसके लिए कुछ मदद मिली?
1: मेरे रिसेंट नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज में जब मैं काम कर रही थी, तो मेरा टेन्योर वहाँ पे ख़त्म होने के बाद ऑफ कोर्स मेरे पास ऑप्शन था कि अब मैं नेक्स्ट आगे क्या करना चाहती हूँ। और मैं ट्रेडिशनल अगेन सेम या तो प्रोफेसर बन के मैं वो पाथ परस्यू नहीं करना चाहती थी। मुझे था कि मुझे खुद का कुछ शुरू करना है और ऐसा जिससे मैं और एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकूँ, लेकिन ऑफकोर्स अपनी फील्ड में जिसमें मैंने इतने सालों से एक्सपीरियंस लिया है। तो उसके लिए मैंने डिसाइड किया कि हम एक बायोटेक लाइफ साइंसेज स्टार्टअप शुरू करेंगे, जिसमें हम बेसिकली ऐसी चीज़ें बनाएंगे

0: एक प्रोडक्ट बनाएंगे जो कि डायरेक्टली लोगों तक हम अपनी साइंस के थ्रू उसको डिलीवर कर सकें। तो अभी हम साइंस में जो भी रिसर्च कर रहे हैं वो हम अध्ययन करके उसको पब्लिश कर देते हैं,
1: बिल्कुल,
0: और वो कहीं कोने में रहता है, उसका कभी इस्तेमाल होगा शायद कुछ
1: अभी
0: सालों में।
1: किस विषय पर काम कर रहे हैं?
0: तो अभी हम जो काम कर रहे हैं वो हम ऐसे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं औरतों के लिए ताकि कैंसर का अर्ली डिटेक्शन, जितनी जल्दी से जल्दी अगर आप कैंसर को डिटेक्ट कर सके उसकी स्क्रीनिंग के लिए हम एक ऐसे टूल्स और ऐसी डिवाइसेस बना रहे हैं ताकि औरतें अपने घर की प्राइवेसी में इजीली इन डिवाइसेस को यूज कर सके और ये टेस्ट ले सके और उन्हें अर्ली
1: इसका टेस्ट।
0: सो ये हम जो बना रहे हैं एक सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग के लिए हम एक अर्ली डिटेक्शन टेस्ट बना रहे हैं ताकि अगर आपको HPV, सो दिस ये सर्वाइकल कैंसर जो होता है यूजली HPV एक वायरस की वजह से होता है और अगर औरतों को यूजली अगर ये इन्फेक्शन होता है उसका डिटेक्शन को पता करने के लिए हमने ये डिवाइस बनाया है ताकि आप इसको अर्ली डिटेक्ट करके पता कर सके कि आपको क्या संभावना है ये सर्वाइकल कैंसर डेवलप होने की।
1: बिल्कुल, जैसा कि कहते हैं ना कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, अगर हमें अर्ली स्टेज पर ही पता लग जाए तो हमें उस चुनौती का सामना ही ना करना पड़े, हम उसको वहीं पर ही उसका ट्रीटमेंट लेकर उसको जल्द से जल्द रोक सकें। आप इतने नोबल कॉज से जुड़ी हुई हैं, हमारे जो आज युवा श्रोता हमें सुन रहे हैं या जो विज्ञान में रुचि रखने वाले श्रोता सुन रहे हैं उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगी कि वो विज्ञान के अंदर अपनी समझ को और बढ़ाएं और सुपरस्टिशंस जिसे हम बोलते हैं या जो परंपरावादी सोच रखते हैं वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखें?
0: इसके बारे में ये एक सुझाव है कि अगर आपको सच में बहुत रुचि है विज्ञान में, बायोलॉजी में, तो आप हमेशा ये मत सोचिए कि मुझे एक अच्छा टिकाऊ जॉब ही चाहिए, और अगर आप उस रास्ते पे जाएंगे तो आप कभी भी कुछ नया डिस्कवर नहीं कर पाएंगे। कुछ नया चाहते हैं खोजना तो आपको शुरू में शायद थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, अपना रास्ता खोजना पड़ेगा, 10 जगह जाके 10 चीज़ें देखनी पड़ेंगी, और जितना आप कोशिश करेंगे जितनी क्यूरियोसिटी होगी तो वो रास्ता भी आपको अपना मिलता जाएगा। हाँ, आप लोगों से पूछ सकते हैं, थोड़ा सलाह ले सकते हैं, लेकिन एट दी एंड ऑफकोर्स आपको खुद से ही थोड़ा क्यूरियोसिटी दिखानी पड़ेगी, थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा वो रास्ता खुद के लिए ढूंढने के लिए, क्योंकि ऐसे रास्ते यूजली वो रास्ते होते हैं जहाँ पे ज़्यादातर लोग चल नहीं रहे होंगे तो आसान नहीं होगा। सो मेरी एडवाइस यही है कि अगर आपको हायर एजुकेशन में एज फार एज, क्योंकि काफ़ी साल मेरा हायर एजुकेशन मैंने बाहर किया, उसके बाद में जब वापस आई तो मैंने देखा है कि एक्चुअली गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव लिया है, स्पेशली अगर आप बाहर देखो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट इंजीनियर्स और आईटी प्रोफेशनल्स और साइंटिस्ट का है यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज़ में, वो भी इंडिया से। गवर्नमेंट ने उसके लिए इसीलिए काफ़ी सारे प्रोविजन बनाया है कि अगर कोई भी हायर एजुकेशन परस्यू करना चाहता है इंडिया में, सारे प्रोग्राम जो है उसमें गवर्नमेंट फुल फेलोशिप स्कॉलरशिप देती है ताकि आपको ये एक स्ट्रेस ना रहे कि मैं कैसे रिसर्च करूं क्योंकि मेरे पास तो कमाई का कोई जरिया नहीं है,
1: फाइनेंसेस कैसे
0: आएंगे। तो आपके फाइनेंसेस के लिए भी उन्होंने वो आपको एक अच्छा स्टाइपेंड देते हैं ताकि आप अपने खुले उससे आप रिसर्च कर सके और एक अच्छे रिजल्ट्स ला सके, तो उसके लिए संभावनाएं ऑफकोर्स बढ़ी हैं पिछले कुछ सालों में, बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं और अभी इंडिया में इतने अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट है और सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट में जो साइंटिस्ट हैं जो ट्रेनिंग दे रहे हैं बेसिकली जो प्रोफेसर्स हैं वो सारे बाहर से ही ट्रेनिंग लेकर आए हैं, सब बाहर से PhD पोस्ट डॉक करके वापस आके,
1: मतलब बाहर उच्च अध्ययन लेने के बाद में भी वापस देश आया जा सकता
0: तो
1: है।
0: उनका जो नजरिया है, जो पर्सपेक्टिव है, जो बाहर से जो सीख कर आए हैं वो भी आप उन लोगों के साथ आप काम करेंगे, रिसर्च करेंगे, वो लोग जो सीख कर आए हैं वो सब वहाँ एडवांस सेट ऑफ हाईली प्रोफेशनल प्रोफेसर्स और साइंटिस्ट आपको ट्रेन कर रहे हैं, तो द लेवल ऑफ एजुकेशन ऑल्सो जो आपको ट्रेनिंग मिलेगी रिसर्च में वो बहुत हाई लेवल है, ऐसा नहीं है कि आप अभी भी वही पुरानी चीजों में ही काम कर रहे हो जो बहुत सिंपल है।
1: बिल्कुल,
0: तो वो सब चेंजेस बहुत आए हैं अभी और इसीलिए मैं कहूँगी कि अगर आप हायर एजुकेशन परस्यू करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा मौका है, अभी आपको गवर्नमेंट भी बहुत अच्छे सब्सिडीज ग्रांट स्टाइपेंड्स दे रही है,
1: बिल्कुल,
0: तो आपको बिल्कुल इंडिया में, बाहर जाना चाहते हैं तो बाहर भी बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं पर इंडिया में भी अभी बहुत ऑप्शंस, अभी जो लोग आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं प्रोफेसर दे रहे हैं वो ज्यादातर सब आप 90% फैकल्टी जो देखोगे वो सब बाहर से ट्रेनिंग करके आए हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से, स्टैनफोर्ड से, UCSF से, यू नो बड़ी बड़ी नामी हार्वर्ड से, सब यूनिवर्सिटी से सब एजुकेशन रिसर्च करके ट्रेनिंग लेके फिर वो यहाँ आके प्रोफेसर, तो आप सोच सकते हो जो एजुकेशन रिसर्च का जो लेवल है वो काफी बढ़ चुका है।
1: बिल्कुल,
0: एक्सपोजर, इंटरनेशनल एक्सपोजर जो पहले मिलता था वो आज आपको यहीं इंडिया में ही मिलेगा
1: बिल्कुल,
0: अगर आप इन हायर एजुकेशन में आप जाते हो तो.
1: बिल्कुल, उच्च अध्ययन के लिए इच्छा और इच्छा शक्ति अगर दोनों चीज आपके पास है तो विदेश के

देश में भी असीम संभावनाएं हैं। हमारी सरकार ने कई उच्च संस्थान और खोल दिए हैं जिससे कि आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, और जैसा कि आंचल जी ने बताया कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कार्य करने के बाद में स्टार्टअप्स के अंदर अगर आपको ग्रांट या हेल्प चाहिए तो सरकार के साथ में आपको वो भी मिल सकती है। आंचल जी, आप स्टूडियो में आए, हमसे बातचीत की और हमारे श्रोताओं को इतनी सारी असीम संभावनाओं के बारे में और इतनी जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, आज की हमारी

0: को इतनी सारी असीम संभावनाओं के बारे में और इतनी जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, आज के हमारे महान वैज्ञानिक हैं डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, भारतीय विज्ञान के एक प्रमुख वैज्ञानिक, दूरदर्शी और प्रेरणादायक शख्सियत, जिन्होंने भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की नींव रखी थी और उसे वैश्विक स्तर पर सम्मान दिलाया। उनके असाधारण योगदान के कारण उन्हें भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक भी कहा जाता है। डॉक्टर भाभा का जीवन, उपलब्धियों और उनके विचार हमें यह समझने का अवसर देते हैं कि कैसे एक व्यक्ति के अद्वितीय समर्पण और दृष्टिकोण से देश की तकदीर बदल सकती है। होमी जहांगीर भाभा का जन्म 30 अक्टूबर 1909 को एक प्रतिष्ठित पारसी परिवार में हुआ। उनके पिता जहांगीर भाभा एक जाने माने वकील थे। बचपन से ही विज्ञान और गणित के प्रति डॉक्टर भाभा का गहरा झुकाव था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा बॉम्बे में हुई और इसके बाद उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में दाखिला लिया। उनके परिवार की इच्छा थी कि वे इंजीनियर बने। उनके इस निर्णय को पूरा करने के लिए उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू कर दी, लेकिन उनका दिल विज्ञान और विशेषकर भौतिकी में लगा था। भाभा ने कैम्ब्रिज में अपने भौतिकी के प्रोफेसरों के साथ काम किया और कई महत्वपूर्ण अनुसंधान किए। कैम्ब्रिज में अपने अध्ययन के दौरान डॉक्टर भाभा का ध्यान कॉस्मिक किरणों की ओर गया। उन्होंने कॉस्मिक किरणों के व्यवहार पर शोध किया और पाया कि ये किरणें वायुमंडल में प्रवेश करते ही अनेक भागों में विभाजित हो जाती हैं। उनके शोध ने भौतिकी के क्षेत्र में कई नई संभावनाओं के द्वार खोल दिए और उनकी इस खोज को भाभा स्कैटरिंग के रूप में जाना जाने लगा। उनके द्वारा किए गए शोध के लिए उन्हें प्रतिष्ठित एडम्स पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान डॉक्टर भाभा भारत वापस लौट आए। उन्होंने समय का सदुपयोग भारतीय विज्ञान के क्षेत्र में योगदान देने के लिए किया। उस समय भारतीय विज्ञान अनुसंधान के क्षेत्र में नई सोच और दिशा की जरूरत थी। डॉक्टर भाभा ने टाटा ट्रस्ट की मदद से मुंबई में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च यानी कि TIFR की स्थापना की, जो आगे चलकर भारत के परमाणु अनुसंधान के लिए केंद्र बन गया। भारत में अपने प्रारंभिक अनुसंधान के दौरान डॉक्टर भाभा ने महसूस किया कि भारत को ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए परमाणु ऊर्जा की आवश्यकता है। परमाणु ऊर्जा से न केवल देश की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है, बल्कि इसे अन्य क्षेत्रों में भी उपयोग में लाया जा सकता है। इसके बाद उन्होंने परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की और भारतीय परमाणु कार्यक्रम की नींव रखी। 1954 में उन्होंने भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC बार्क की स्थापना की। बार्क के माध्यम से उन्होंने भारत को परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का सपना देखा और उसे पूरा करने के लिए अपनी पूरी निष्ठा के साथ कार्य किया। डॉक्टर भाभा का ये मानना था कि परमाणु ऊर्जा का प्रयोग शांति और विकास के उद्देश्यों के लिए होना चाहिए और इसका दुरुपयोग किसी भी स्थिति में नहीं होना चाहिए। डॉक्टर भाभा ने हमेशा परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग का समर्थन किया। डॉक्टर भाभा का योगदान न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में मान्यता प्राप्त हुआ। उनके अद्वितीय कार्यों के कारण उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। डॉक्टर होमी भाभा का जीवन 24 जनवरी 1966 को अचानक समाप्त हो गया, जब स्विट्जरलैंड के पास एक विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु भारतीय विज्ञान के क्षेत्र में एक बड़ा आघात था। उनकी अनुपस्थिति में भारत ने एक महान वैज्ञानिक को खो दिया, लेकिन उनके द्वारा स्थापित संस्थाएं और उनके विचार आज भी हमें विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बरखा थानवी व्यास का नमस्कार।
1: ये था विज्ञान के नए आयाम से रूबरू करवाता हमारा मासिक कार्यक्रम विज्ञान की दुनिया। आलेख एवं प्रस्तुति श्रीमती बरखा थानवी व्यास की, परिकल्पना एवं संयोजन था श्री अमित सिंह का।

हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलो हर्ट्ज और FM 101.6 मेगा हर्ट्ज पर। लीजिए अब सुनते हैं एक देश गान।

0: हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। दिन के बजने को है 9 और अब आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। देश के पहले निजी तौर पर विकसित प्रक्षेपण यान विक्रम 1 का पहला कक्षीय प्रक्षेपण आज होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, किसान की समृद्धि और आत्मनिर्भरता से ही देश और प्रदेश का समग्र विकास संभव है। केंद्र ने जल जीवन मिशन 2.0 के तहत राजस्थान को मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए 537 करोड़ 70 लाख रुपए की सहायता स्वीकृत की और प्रदेश का पहला संवेदनशील गवाह केंद्र पाली जिला न्यायालय परिसर में शुरू किया गया। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। स्काई रूट एरोस्पेस आज भारत के पहले निजी तौर पर विकसित प्रक्षेपण यान विक्रम 1 का पहला कक्षीय प्रक्षेपण करने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में इस मिशन को भारत की अंतरिक्ष यात्रा में नया ऐतिहासिक अध्याय बताया। उन्होंने कहा कि 4 चरणों वाले इस रॉकेट को त्वरित और मांग के अनुसार प्रक्षेपण सेवाएं प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है।

0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ये मिशन देश के युवाओं की प्रतिभा, दृढ़ संकल्प और उद्यमशीलता की भावना को दर्शाता है। साथ ही ये भी दिखाता है कि भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में किए गए सुधार नवाचार और उद्यम के लिए नए अवसर खोल रहे हैं। श्री मोदी ने स्काई रूट एरोस्पेस की पूरी टीम को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने युवाओं से इस ऐतिहासिक मिशन पर नजर रखने और हैशटैग इंडिया विथ विक्रम 1 का उपयोग करके स्काई रूट टीम की सफलता के लिए शुभकामनाएं देने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि किसान की समृद्धि और आत्मनिर्भरता से ही देश और प्रदेश का समग्र विकास संभव है। नागौर जिले के डेगाना के तिलानोश गांव में आयोजित ग्राम विकास चौपाल में उन्होंने किसानों, पशुपालकों और युवाओं से संवाद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों को आधुनिक तकनीक, सिंचाई, वित्तीय सहायता और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध करा रही है। उन्होंने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि के साथ ही राज्य सरकार अतिरिक्त 3,000 रुपए की सहायता दे रही है। श्री शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार किसानों को सशक्त बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
1: और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि हमारा किसान आगे बढ़े, हमारा किसान आत्मनिर्भर बने, हमारा किसान के जीवन में बदलाव हो, हमारा किसान सशक्त बने, उनको भविष्य की भी चिंता है कि आने वाली पीढ़ियां भी हमारी सुरक्षित रहे। और आपने देखा है कि जब 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी केंद्र में सरकार आई थी तो उन्होंने किसान को भरोसा दिलाया था और उन्होंने यह कहा था कि आप चिंता मत करिए, हम किसान की आय भी बढ़ाएंगे, किसान को सशक्त भी कराएंगे।
0: इससे पहले मुख्यमंत्री ने गांवों में ही राजीविका से जुड़ी महिलाओं से भी संवाद किया। संसद के सोमवार से शुरू होने वाले मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई सुचारू रूप से चलाने में सहयोग की अपील करेगी। संसद का मॉनसून सत्र सोमवार से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित किए जाने की संभावना है। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से चलाए जा रहे सघन मातृ स्वास्थ्य सेवा अभियान के दौरान चिन्हित हर हाई रिस्क गर्भवती महिला का नियमित फॉलोअप किया जा रहा है। जन स्वास्थ्य मिशन के निदेशक डॉ. रवि प्रकाश शर्मा ने कल जयपुर में राज्य स्तरीय अभियान को लेकर बैठक की। बैठक में गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व जांच, उच्च जोखिम वाली गर्भावस्थाओं की पहचान, ट्रैकिंग, उपचार, रेफरल और संस्थागत प्रसव कराए जाने के निर्देश दिए गए। उन्होंने अधिकारियों से सभी गर्भवती महिलाओं का समय पर पंजीकरण, आवश्यक जांच, टीकाकरण तथा आयरन और कैल्शियम की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा। विभाग ने गर्भवती महिलाओं से अपील की है कि वे नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य संस्थान में नियमित प्रसव पूर्व जांच कराएं और चिकित्सकों की सलाह के अनुसार आवश्यक जांच और उपचार कराएं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। जल जीवन मिशन 2.0 के तहत केंद्र सरकार ने राजस्थान को वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 537,70,00,000 रुपए की केंद्रीय सहायता स्वीकृत की है। जल जीवन मिशन के निदेशक राजन विशाल ने बताया कि ये राशि ग्रामीण पेयजल योजनाओं पर राज्य सरकार द्वारा किए गए खर्च की भरपाई के रूप में मिलेगी। इससे ग्रामीण पेयजल परियोजनाओं के क्रियान्वयन में सहायता मिलेगी और हर घर जल अभियान को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अब तक 2,212 से अधिक गांवों को हर घर जल प्रमाणित किया जा चुका है। साथ ही 93% योजनाओं के लिए सुजलम भारत आईडी तैयार हो चुकी है। सहकारिता विभाग में डिजिटाइजेशन से सूचनाओं का संकलन आसान हो गया है। साथ ही सहकारी योजनाओं की प्रभावी निगरानी की जा रही है। विभाग के शासन सचिव डॉ. समित शर्मा ने कल जयपुर में आयोजित समीक्षा बैठक में राज्य सहकार पोर्टल, एमएसपी खरीद और ऑनलाइन इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम की

0: प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने राज्य सहकार पोर्टल के बाकी मॉड्यूल निर्धारित समय सीमा में पूरे करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सहकार पोर्टल का मोबाइल ऐप भी जल्द ही प्ले स्टोर पर उपलब्ध होगा। इसके माध्यम से अधिकारियों को कार्य निष्पादन में और अधिक सुविधा मिलेगी तथा आमजन को सहकारी सेवाएं ज्यादा सुगमता से उपलब्ध हो सकेंगी। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने कहा है कि पंच गौरव कार्यक्रम हर जिले की विशिष्ट पहचान को विकास का आधार बनाने की राज्य सरकार की पहल है। विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में उन्होंने जिला कलेक्टरों और स्थानीय उत्पादों, कृषि, पर्यटन, खेल और वन संपदा के संरक्षण, संवर्धन और ब्रांडिंग पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के लिए समयबद्ध लक्ष्य तय किए जाएं तथा जनभागीदारी, विभागों के आपसी तालमेल और विभिन्न योजनाओं के प्रभावी उपयोग से इसका क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। बैठक में संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। सभी जिला कलेक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए। प्रदेश का पहला संवेदनशील गवाह केंद्र पाली जिला न्यायालय परिसर में शुरू किया गया है। राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा ने इसका उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि ये केंद्र अदालती मामलों में संवेदनशील गवाहों को सुरक्षित और भयमुक्त वातावरण उपलब्ध कराएगा, साथ ही पूरे प्रदेश के लिए एक मॉडल होगा और भविष्य में राजस्थान के अन्य जिलों में भी ऐसे केंद्र स्थापित किए जाएंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
1: अति संवेदनशील गवाह बयान केंद्र, जिसे वनरेबल विटनेस डिपोजिशन सेंटर भी कहा जाता है, न्यायिक प्रक्रिया को अधिक संवेदनशील बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इस केंद्र में पॉक्सो सहित अन्य संवेदनशील मामलों के पीड़ितों और गवाहों के बयान सुरक्षित, सम्मानजनक और भयमुक्त वातावरण में दर्ज किए जाते हैं। इसका उद्देश्य गवाहों और पीड़ितों पर मानसिक दबाव कम करना तथा उन्हें बिना किसी भय या प्रभाव के अपना पक्ष रखने की सुविधा उपलब्ध कराना है। समाचार कक्ष से जयकिशन शर्मा।
0: भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने उदयपुर में अपना पहला निवासी केंद्रित आधार सेवा केंद्र शुरू किया है। सांसद डॉ. मन्नालाल रावत ने इसका उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये केंद्र डिजिटल गवर्नेंस को मजबूत करने में सहायक होगा। उदयपुर में केंद्र शुरू होने के साथ ही राजस्थान में आधार सेवा केंद्रों की संख्या बढ़कर 10 हो गई है। UIDAI के अनुसार सितंबर तक राज्य में 19 और केंद्र शुरू किए जाएंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश के पहले निजी तौर पर विकसित प्रक्षेपण यान विक्रम 1 का पहला कक्षीय प्रक्षेपण आज होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, किसान की समृद्धि और आत्मनिर्भरता से ही देश और प्रदेश का समग्र विकास संभव है। केंद्र ने जल जीवन मिशन 2.0 के तहत राजस्थान को मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए 537 करोड़ 70 लाख रूपये की सहायता स्वीकृत की और प्रदेश का संवेदनशील गवाह केंद्र पाली जिला न्यायालय परिसर में शुरू किया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे
2: आकाशवाणी के साथ। ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। इसके अंतर्गत आज सुनिए तालाबों के संरक्षण और विकास के लिए प्रयासरत पॉन्डमैन के नाम से प्रसिद्ध रामवीर तंवर के साथ विशेष बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रही है नीति शुक्ला।
3: जल ही जीवन है, ये कहावत तो हम सब बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन इसे सही मायने में समझकर और इसके लिए काफी अच्छा काम किया है आज की हमारी इस शख्सियत ने, जिससे कि हम आपको मिलवाने वाले हैं। मैं हूँ आरजी नीति और हमारे आज के जो गेस्ट हैं, इन्हें पॉन्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने तालाब के संरक्षण के लिए, उन्हें पुनर्जीवित करने के लिए काफी अच्छा काम किया है और यहाँ तक कि इनका जिक्र मन की बात प्रोग्राम में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी किया है। तो आइए स्वागत करते हैं रामवीर तंवर जी का। बहुत बहुत स्वागत है।
4: बहुत बहुत धन्यवाद
3: रामवीर जी। आपको पॉन्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, लेकिन कब इसकी आपने शुरुआत की? क्या आपने सोचा कि अब तालाबों का संरक्षण करना है, इन्हें पुनर्जीवित करना है?
4: देखिए, ये अचानक से ऐसी कोई घटना नहीं है जिसकी वजह से मैंने काम किया हो। इस तरह की घटनाएं किताबों में अच्छी लगती है, लेकिन ये है, मेरा मानना है कि वो धीरे धीरे ना कोई भी इनिशिएटिव आपको अपनी ओर खींच लाता है और उसके लिए जिम्मेदार होती है कई बार आपकी चाइल्डहुड यादें, बचपन में आपने जो देखा है और जवानी में आप जो नहीं देख पा रहे। मैं 10th क्लास तक अपने गांव में भैंसों को चराने जाता था जंगल में, और मैंने अपना पूरा होमवर्क किसी तालाब के या नहर के किनारे किया। मुझे याद है मेरे गांव से और जंगल जाते समय

0: नहर पड़ती है बहुत छोटी सी, और हमें वो नहर क्रॉस करनी होती थी, अदरवाइज तो 2-3 किलोमीटर घूम के आना पड़ता था। जब हम जाते थे, मैं 3री-4थी क्लास में जब था, तो तैरना नहीं आता था, बहुत छोटा बच्चा था, तो हम भैंस की पूंछ पकड़ के क्रॉस करता था मैं, और कई बार भैंस जो है वो बीच नहर में जाके लेट जाते थे, तो मैं भी लेटना पड़ता था उसके साथ, तो उस वजह से तैरना सीखा। लेकिन आई एम सो सैड टू टेल यू कि वो नहर अब एक नाला है, और वो ऑफिशियली नाला है। वहां पे सिर्फ अभी पूरे शहर का इंडस्ट्रियल वेस्ट और म्युनिसिपल वेस्ट वहां से बह के जाता है। आप वहां किनारे 5 मिनट खड़े नहीं हो सकते, जबकि उस नहर का पानी कई बार हमारे मुंह में चला जाता था, पेट में चला जाता था। मुझे कभी याद नहीं है कि हम बीमार हुए हैं। वही नहर है। मैं कई बार जब वहां से गुजरता हूँ तो आज अपने रुमाल को नाक पे रख के गुजरता हूँ, दुख होता है। जब मैं 11वीं क्लास में गांव से बाहर 20 किलोमीटर दूर पढ़ने के लिए जाता था बस में, डेली मुझे 25-30 किलोमीटर जाना था, 25-30 किलोमीटर आना था, तो वहां जब मैं रास्ते में ये देखता था तो जो भी रोड के किनारे के तालाब है वो धीरे धीरे धीरे धीरे लैंडफिल साइट बनते जा रहे हैं। क्योंकि आदत होती है कि जब भी हम जाते हैं हाथ में जो भी कचरा होता है वो सबसे पहला निशाना हमारी बनती है कोई नाली, नाली नहीं मिले तो नाला, नाला ना मिले तो नहर, नहर नहीं मिली तो तालाब। तो आज भी आप गांव में देखिए तालाब सबसे इजी टारगेट है कचरा फेंकने के लिए। तो जब मैं बाहर निकला गांव से और मैंने देखा कि ये मेरे गांव की समस्या नहीं है, ये तो सब जगह सेम इशू होता जा रहा है। जब मैं अपना ग्रेजुएशन में था, कॉलेज डेज में था, तो पॉकेट मनी के लिए मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। मेरे पास 2 स्टूडेंट थे और दोनों भाई थे। उसके पिताजी ने कहा पूरे दिन इधर उधर कंचा खेलते हैं, सारे दिन उधर जाते हैं, तो तुम अगर इनको पास करवा दो 33% से तो मैं तुम्हें जो है इनाम दूंगा। मैंने उनको पढ़ाया और उनके 70% आ गए। तो उन्होंने इतना प्रचार किया कि मेरे पास 40-50 बच्चे आ गए। वो ऐसे प्रचार करते थे किसी का बच्चा पास नहीं हो रहा हो तो रामवीर के पास भेजता पास हो जाता क्योंकि मुझे मैथ फिजिक्स से बहुत प्यार था। तो मेरे पास इतने सारे बच्चे हुए। वीकेंड पे हमने एक्टिविटी करना शुरू किया। एक्टिविटी क्या थी कि गांव में नए नए समर सर्विल लगे थे, पंप सबके घर में समर सर्विल पंप है। एक गिलास पानी की जरूरत है तो 1000 लीटर पानी निकालेंगे। छोटे बच्चे को नहाना है तो उसको बाल्टी नहीं लाएंगे, उसके लिए बस समर सर्विल का स्विच ऑन कर देंगे, जाओ बेटा नहा लो। अब 10,000 लीटर पानी में बच्चा नहा रहा है। सोचिए जो 5 लीटर बच्चा नहा सकता था वो 10,000 लीटर में नहा रहा है, और वो ड्रिंकिंग वाटर उसकी कॉस्ट जोड़ेंगे 20 रुपए के हिसाब से तो लाखों रुपए में बैठ रही है वो। पूरे परिवार की इनकम 10,000 रुपए महीना है और पानी बहा रहे हैं 5 लाख रुपए का। तो हमने डिसाइड किया खेल खेल में कि जो भी हमारे गांव में सबसे ज्यादा पानी बर्बाद करता है उसके घर के सामने हम जल ही जीवन लिख के आएंगे चुपचाप। वो हमारी एक्टिविटी थी और वो हम वीकेंड में करने वाले थे। जब वो 1 महीना किया 2 महीना किया बहुत सारी गालियां भी खाई, कई पेरेंट्स ने अपने बच्चे हटा लिए। हमने सोचा था अच्छा पढ़ाते हो तुम तो इनको ऐब करना सिखा रहे हो, लड़ाई करना सिखा रहे हो लोगों के साथ। तो कुछ बच्चे हट गए, कुछ हो रहा है, लेकिन कुछ ने बहुत अप्रिशिएट भी किया। नेक्स्ट फेज में हमने क्या किया कि एक जगह हम बैठ के मीटिंग करने लगे। गांव से जो चौपाल बनी हुई है, चौपाल पे किया, हमने उसका नाम रखा जल चौपाल, और हमने उस ग्रुप का नाम दिया था जागरूक युवा समूह। जब हमने मीटिंग किया और सब कुछ हुआ तो कुछ लोगों ने अप्रिशिएट किया, कुछ लोग आए। एक बार क्या हुआ, किसी ने फोटो क्लिक करके डीएम में लगाया, अखबार में आया, अखबार से डीएम साहब के पास गया। डीएम साहब ने कॉल किया उन भैयाओं के पास कि उन बच्चों को बुला के लाओ। हमको बुलाया, उन्होंने अप्रिशिएट किया और कहा कि अगली बार मैं आऊंगा। वो अगली बार आए तो हम तो 20 लोग थे, वो आए तो 500 लोग इकट्ठा हो गए। देन आई रियलाइज कि ये जो हम कर रहे थे ये कोई छोटी चीज नहीं है। जिस काम के लिए खुद डीएम साहब, कलेक्टर साहब आपके गांव में आ सकते हैं, जिन्होंने अभी तक गांव देखा ही नहीं हमारा, और उनको पता चला। देन आई रियलाइज कि वी आर डूइंग समथिंग बिग। और वहां से ये फिर मैंने कॉलेज किया, 2 साल जॉब के साथ भी मैंने यही किया, अवेयरनेस कैंपेन चलाया, लेकिन अवेयरनेस कैंपेन थोड़ा बड़ा हो गया टाइम के साथ। और फिर मैंने सोचा कि जॉब छोड़ के फुल टाइम अभी मैं ये करूं। वहां से निकल के धीरे धीरे यहां तक पॉन्ड मैन की जर्नी शुरू हुई।
1: तो पॉन्ड मैन की जर्नी इतनी आसान तो नहीं रही होगी, कुछ चैलेंजेस भी आए होंगे, तो किस तरह की मुश्किलें सामने आई?
0: शुरुआती दौर में क्या था, आपके पास पैसा नहीं था, रिसोर्सेस नहीं थे, आपके पास टीम नहीं थी, आपके पास नॉलेज नहीं थी, आपके पास रिसोर्सेस नहीं थे, आपके पास कोई रेफरेंस नहीं था जिसको आप ये बोल सके कि मैंने वो काम किया है जी, आपको लोग क्यों ट्रस्ट करेंगे। इंडिया में क्या है, वाटर इज ए स्टेट सब्जेक्ट। कोई भी वाटर बॉडी है, तालाब है, पोखर है, कुआं है, कुछ प्राइवेट हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर स्टेट गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। आप उसको बिना परमिशन के गंदा तो कर सकते हैं, लेकिन बिना परमिशन के साफ नहीं कर सकते। साफ करना है तो आपको एनओसी लानी पड़ेगी। तो एनओसी के लिए हम चक्कर काटते थे। हमसे हर पूछता था एनओसी तब देंगे, पहले बताओ एक्सपीरियंस क्या है तुम्हारा। अब एक्सपीरियंस हो तो बताए, हमने तो 0 एक्सपीरियंस, हमने कभी तालाब ही साफ नहीं किया। गांव वालों से बात करें वो कहते थे कि यार तुमने कभी किया ही नहीं कुछ, ये कैसे करोगे। तो हमारे पास रेफरेंस पॉइंट नहीं था जिसको हम उदाहरण के तौर पर बता सके कि हमने वहां पे किया, उसको देखिए। दूसरा, आप तालाब साफ करेंगे आप मैनुअली कितना कर लेंगे, 5 किलो कचरा हटा लेंगे, 100 किलो हटा लेंगे, लेकिन बड़ा अगर आपको इम्पैक्ट करना है तो मशीन चाहिए, आपको डीजल

0: चाहिए, पेट्रोल चाहिए, मैन पावर चाहिए, टूल्स चाहिए, उसके लिए हमारे पास फंड नहीं था। हमने क्या किया कि जितना हमारे बस की है उससे करते हैं। तो जो भी सोशल मीडिया से, कॉलेज से जितने लोग जुड़े थे अपने साथ, उन सबको हमने साथ जोड़ा और क्लीन अप ड्राइव शुरू किया। मुझे याद है जब हम पहले दिन क्लीन अप ड्राइव किया था तो हमें लगा था बहुत सारे लोग आएंगे, लेकिन मैं और मेरा दोस्त दो ही रह गए कोई नहीं आया, हम दो ही लोग हो गए क्योंकि बारिश हो रही थी उस दिन, है ना। हम दोनों को तो जुनून था, सबको थोड़ी ना। हम गए वहां पे, हमने फावड़ा शुरू किया। अब बहुत सारे लोगों के साथ तो आपके अंदर हिम्मत होती, लेकिन हम तो दो ही लोग थे। और जब वहां पे हम तालाब साफ कर रहे थे, कोई भी हमसे निकल रहा था, क्यों कर रहे हो, कहां से हो, तो हमारे पास इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि हम जवाब दे सके कि हम ये कुछ करना चाहते हैं। कोई भी आता था, हाँ भाई कौन हो, क्यों साफ कर रहे हो, तो हम ये कहते थे जी नगर पालिका से है। अच्छा अच्छा, वो उधर भी करके जाना। मैंने कहा हाँ जी बाबू जी करके जाएंगे।
1: अच्छा, तो रामवीर जी मैं ये पूछना चाहूंगी कि बात तो सही है कि आपको सफाई का किसी तरह का एक्सपीरियंस नहीं था, क्योंकि जो कचरा होता है वो किसी भी तरह का कचरा हो सकता है, जरूरी नहीं कि सिर्फ वो कपड़ा और पॉलिथिन बैग्स हो, उसमें मेडिकल वेस्ट भी हो सकता है, तरह तरह के केमिकल्स हो सकते हैं, कांच हो सकता है। तो किस तरह के प्रिकॉशंस आप लेते हैं और किस तरह की प्रॉब्लम्स आपको सामने आई?
0: देखिए, हम शुरुआत में कोई एक्सपर्ट तो थे नहीं कि हम बता सके मेडिकल वेस्ट है, ये ऑर्गेनिक वेस्ट है, ये प्लास्टिक वेस्ट है। तो हमारे लिए तो सब एक प्लास्टिक में बंद कचरा है, हम तो सबको ऐसे ही उठा के फेंक देते। तालाब क्या है, वो सिंक होल है। आपके घर में कुछ भी निकलेगा ना, आपके रजाई, गद्दे, जूते, चप्पल, कांच, जो भी है, बस उसमें डाल दो जाके। चाहे वो नाला मिल जाए उसमें डाल दो, तालाब मिल जाए उसमें डाल दो। जब हम तालाब को रिस्टोर करते हैं, और कई बार हम जब डीवॉटरिंग करके उसको खाली करते हैं पूरे तालाब को, ताकि नीचे से खुदाई कर सके वापस से, आप यकीन मानिए कई बार 1 से 1.5 मीटर की एक लेयर मिलती है, पूरी कचरे की लेयर मिलती है। मान लो यही बोतल है, आप इसको फेंकिए तालाब में, अब दो चांस हो सकते हैं, या तो ये इसमें ढक्कन लगा हुआ है और हवा भरी हुई है तो ऊपर तैरेगा, या इसका ढक्कन खुला हुआ है तो पानी भरेगा जाके नीचे बैठ जाएगा। तो जब हमने तालाब को खाली किया तो 1 से 1.5 मीटर की हमें लेयर मिली, और उस लेयर में सिर्फ बोतल नहीं है, उसमें सब कुछ है, उसमें जूते हैं, उसमें चप्पल है, उसमें कांच है, घर का बचा हुआ सामान है, बहुत सारी मूर्तियां हैं, तमाम सारी चीजें हैं जो सालों से वहीं पे पड़ी पड़ी सड़ रही हैं। और कई सारे तालाबों में तो ऐसा भी हमने देखा, क्योंकि जैसे जलकुंभी और सिल्ट और गाद और सिलज हो जाती है तो जानवर भी फंस के मर जाते हैं, जाते पानी पीने के चक्कर में, लेकिन उसमें गाद इतनी सारी हो जाती है, उस कचरा डलते वहीं फंस जाता है। तो कई तालाबों में सहता हुआ हमने पानी निकाला तो नीचे ऐसे कंकाल का कंकाल खड़े हुए मिले, जो नीचे फंस गए थे, पानी में डूब गए थे वापस, ऐसे पड़े हुए मिले। बहुत दुख लगा उनको देख के हमें, क्योंकि गांव वाले को लगता था भैंस चोरी हो गई है, भैंस चोरी नहीं हुई थी, भैंस डूब के मर गई थी तालाब में।
1: जब आप कचरा उठाते हैं, आपकी टीम जाती है किसी लोकेशन पर, तो किस तरह से वो कलेक्शन करते हैं कि उन्हें हार्मफुल इफेक्ट से?
0: देखिए, उसके लिए जो सेफ्टी टूल्स होते हैं, एक स्पेशली ग्लव्स आते हैं जो इस तरह के वेस्ट को एक तरह से उठाने के लिए काम आते हैं, वहाँ पे प्रॉपर मास्क, और हमारे पास ना एक ड्रेस होती है प्रॉपर जो पूरा पहन लेते हैं तो यहाँ तक आती है, वो बहुत मोटी होती है, प्लस उसमें पानी भी नहीं घुसता है, सेफ्टी किट होती है, तो उसी को पहन के वो तालाब में घुसते हैं। एक तो आपके कपड़े भी गंदे नहीं होते, प्लस आपको नहीं पता कि पानी में क्या केमिकल घुला हुआ, तो वो भी आपके टच में नहीं आता है, और वो उसी तरह से फिर वो उठाते हैं। अब तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की, नगर पालिका गाड़ियों में भी अलग अलग बॉक्स बने हुए होते हैं, क्योंकि हम कचरे को निकाल तो सकते हैं लेकिन उसको अपनी मर्जी से डिस्पोज नहीं कर सकते, क्योंकि मैं क्या करूंगा, एक्स जगह से उठा के वाई जगह पे डाल दूंगा, बात तो एक ही हुई। तो इसलिए हम जब भी कोई तालाब करते हैं तो वो एक उसमें मल्टीपल पार्टी होती है, एक ट्राईपार्ट एग्रीमेंट होता है, एक होता है कॉर्पोरेट या स्पॉन्सर, एक होता है हम एग्जीक्यूटिंग पार्टनर, एक होता है वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन। तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है जहाँ पे भी उनका निस्तारण एक प्लांट है वहाँ तक उसको लेके जाए। जी जी, लेकिन अभी क्या है, टाइम के साथ हमें भी नॉलेज हुई है तो उसको अच्छे से सेग्रीगेट करते हैं, और जिस तरह से उसका एक आधुनिक तरीका होना चाहिए उसको सेग्रीगेट करने का, निस्तारित करने का, उसी को उसी से निस्तारित किया जाता है। क्योंकि तालाबों में सिर्फ 2-3 तरह का ही वेस्ट है, ऑर्गेनिक वेस्ट है, इनऑर्गेनिक वेस्ट है। ऑर्गेनिक वेस्ट तो तालाब के अंदर चला जाता है, स्लज ले लेता है। इनऑर्गेनिक वेस्ट जूते, चप्पल, प्लास्टिक, ये सारे हमने क्या है, कुछ स्टार्टअप्स के साथ कोलैबोरेट किया हुआ है, वो प्लास्टिक उनको देते हैं, उस प्लास्टिक से हमें वो बेंच, ट्री गार्ड, मेज, उसको मोल्ड करके वापस से पिंगला के वो हमें देते हैं, और उसी बेंच को हम तालाब किनारे रख देते हैं वापस। अच्छा। ताकि उसी बेंच पे बैठ के लोग शाम को फिर तालाब को निहारे।
1: तो पूरा आपने एक ये सिस्टम क्रिएट कर दिया है, तो ऑटोमेटिकली वो अच्छे तरह से वो जो कचरा है वो जा रहा है और स्टार्टअप उसे किसी अच्छे फॉर्म में लेकर वापस कर रहे हैं। तो जब आप तालाबों को पुनर्जीवन देने की कोशिश करते हैं, उनकी सफाई करते हैं, तो लोकल्स का किस तरह से सपोर्ट मिलता है या विरोध करते हैं, क्या रिएक्शन?
0: देखो, लोकल दोनों तरह के ही है। जिन लोगों ने तालाब के किनारे घर बनाया हुआ है, उनका हमेशा सपना रहता है कि

0: अगले साल 100 गज और कब जाएंगे, उससे अगले साल 100 गज और एंक्रोचमेंट करेंगे, उनका जिनके ऊपर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है ना तालाब को बचाने की, वो सबसे ज्यादा तालाब को कब जाने की फिराक में रहते हैं। और ये 90% सक्सेस रेट है मेरे इस बात का। आप कहीं भी जाके देखिए तालाबों को उन लोगों ने कब्जाया हुआ है जो तालाब के किनारे पे रहते हैं, क्योंकि वो उस जगह को अपनी मानने लगते हैं। उनका डायरेक्टली कोई फायदा नहीं हो रहा है तालाब से, इनडायरेक्टली तो बहुत सारे हैं भैया। पर्यावरण बच रहा है, आसपास का माहौल ठंडा होता है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है, बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट मिलती है। डायरेक्टली नहीं मिल रहा है, डायरेक्टली तब मिलता था जब पानी पीते थे उस तालाब से, जब उसमें नहाते थे, जब उसमें से मटका भर के लाते थे। तो इसलिए अब उसको लैंडफिल की तरह यूज करते हैं। ऐसे लोग तो हमेशा विरोध करते हैं जो उसको कब्जाना चाहते हैं, कुछ भी करके आपका काम रुकवाना चाहते हैं। दूसरे टाइप के लोग हैं जो थोड़े अवेयर हैं, वो सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन ईश्वर की ऐसी कृपा है कि सपोर्ट करने वाले लोग अभी भी भारत में विरोध करने वालों से ज्यादा है, इसलिए शायद हमारा काम चल भी रहा है। दूसरा जो अलग अलग टाइप के लोग मिले, कुछ लोग हैं जैसे आज हमने तालाब पे काम शुरू किया, शाम तक आ जाएंगे, पहले ये बताइए पैसा कहाँ से मिला, क्यों कर रहे हो, वो सारे लोग है। कुछ होते हैं जो अच्छी सलाह भी देते हैं कि भाई यहाँ पे ये पेड़ लगाइएगा, क्योंकि मुझे लगता है हम लोगों को इसलिए उसमें पार्टिसिपेट कराते हैं, इसलिए हम जन भागीदारी करते हैं उसमें, क्योंकि मुझे लगता है कि तालाब एक दिन में तो मरा नहीं होगा, तालाब को मरने में 30-40-50 साल लगे हैं, और तालाब को मरते हुए उन्हीं लोगों ने देखा है जो उस गांव में रहते हैं, इसलिए उस तालाब के बारे में सबसे ज्यादा, चाहे उसकी हिस्ट्री हो चाहे मरने की कहानी हो, उन्हीं लोगों को पता है जो वहां पे रह रहे, इसलिए हम उसको पार्ट बनाते हैं और हम बताते हैं कि आपको ही रेस्टोर करना है, हम तो सिर्फ आपको सपोर्ट करने आए हैं। तो दोनों तरह के लोग मिलते हैं, बहुत सपोर्ट भी करते हैं, बहुत विरोध भी करते हैं।
1: तो जैसे आपने एक बार किसी तालाब की सफाई कर दी, उसको पुनर्जीवन मिल गया, तो बाद में उसकी कौन देखभाल करता है?
0: अब मान लो अगर हम घर बना रहे हैं, या मेरा खुद का खेत है, या मेरा खुद का प्लॉट है, हमेशा वही देखभाल करेगा जिससे उसकी इनकम जुड़ी हुई है, या जो ओनर है उस जगह का। तालाबों के साथ इश्यू क्या है, तालाबों का कोई ओनर नहीं है, इसीलिए हम क्या करते हैं जब तालाबों को रेस्टोर करते हैं, तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि तालाबों को सेल्फ सस्टेनेबल बनाए। सेल्फ सस्टेनेबल बनाए मतलब तालाब अपने मेंटेनेंस का खर्चा खुद निकाले, तालाब अपने लिए इनकम करे। सिंगाड़ा कहाँ से आता है? तालाबों से। लोटस कहाँ से आता है? तालाबों से। मछली कहाँ से आती है? तालाबों से। और आजकल ये बिहार में तो मखाना देखिए, तालाबों से। बहुत सारी चीजें हैं जो तालाबों से आती है। और अब दिल्ली में, गुड़गांव में तो तालाब इको टूरिज्म के लिए, आप तालाब के किनारे रेस्टोरेंट खोलिए और एक दूसरी जगह खोलिए, तालाब किनारे वाला के इनकम ज्यादा होगी। तो तालाब अपने लिए इनकम करना सीख तो तालाबों की इज्जत भी बढ़ेगी, और इज्जत बढ़ेगी मतलब तालाब के किनारे वाले जो रेस्टोरेंट है या कोई भी चीज है वो आपको मेंटेन करेंगे। तो इसलिए हम तालाबों को इस तरह से एक्वा कल्चर, इको टूरिज्म या किसी न किसी एक्टिविटी से जोड़ने की कोशिश करते हैं, ताकि उसका अगर कोई 5 लाख रुपए साल का कमा रहे हैं तो वो 50,000 रुपए तालाब के मेंटेनेंस पर खर्च करें। अदरवाइज तो फिर हम अपने ऊपर ले लीजिए भाई, अगर हम ये उम्मीद करके चले कि मैंने तालाब को रिस्टोर कर दिया और अब जनता इसको खुद ही मेंटेन कर लेगी, तो हम भी जनता है। हम महीने में कितनी बार जाते हैं आसपास के तालाबों को मेंटेन करने के लिए? मैं कितनी बार जाता हूँ, आप कितनी बार जाते हैं, आप और जो इस तरह की बातें करते हैं वो कितनी बार जाते हैं? तो तालाबों को हमेशा वही मेंटेन करते हैं जिनको डायरेक्टली इनडायरेक्टली उससे कुछ फायदा।
1: तो जैसे आपने किसी तालाब को रिवाइव किया और कुछ समय बाद, कुछ महीनों बाद आप पलट कर जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर पक्षी आने लगे, जीव जंतु आने लगे, एक जनजीवन वहाँ पे पनप रहा है, तो देखकर कैसा फील होता है, क्या इमोशंस होते हैं?
0: बहुत अच्छा लगता है।
1: कोई एक्सपीरियंस भी हो तो बताइए।
0: हम क्या है, हमारे एक USP है तालाब रेस्टोर करने का। हम जब भी कोई तालाब बनाते हैं तो उसके बीच में नेस्टिंग आईलैंड बनाते हैं।
1: अच्छा।
0: बीच में छोटे छोटे टापू बनाते हैं, उस टापू पे वहीं की लोकल नेटिव घास भी लगाते हैं। उसका हमारा जो पर्पज है नेस्टिंग आइलैंड बनाने का, वो ये है क्योंकि हमें लगता है कि देखो पिछले 50-100 साल में टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा आई है। आजकल तो जो घरों में फिल्टर है वो भी AI वाले आ रहे हैं, लेकिन ये सारी टेक्नोलॉजी आई किसके लिए है? इंसान ने बनाई है, इंसान के लिए आई है। आज से 100 साल पहले एक तालाब जिसमें इंसान भी उतना ही डिपेंड था उस तालाब पे और एक पक्षी भी उतना ही डिपेंड था। इंसान के पास तो पानी आ गया, पाइपलाइन से आ गया, RO से आ गया, रिमोट से आ गया, लेकिन उसके लिए तो आज भी उतना रिलेवेंट है वो तालाब। तो जैसे ही मेरी पूर्ति हुई, जैसी मेरी जरूरत खत्म हुई, अब मैं तालाब को पाट दे रहा हूँ, अब मैं तालाब को मार दे रहा हूँ, अब मैं तालाब को कूड़ा कर बना दे रहा हूँ? नहीं भाई, आपके लिए ही तो टेक्नोलॉजी आई है, उनके लिए थोड़ी ना आई है। वो तो आज भी तालाबों पे उतने डिपेंड है। दूसरा, अभी पॉपुलेशन उतनी है, ट्रैफिक साउंड उतना है, तो आप उम्मीद छोड़ दीजिए, क्योंकि अब डेवलपमेंट क्या है, बिल्कुल या तो तालाब जो है वो शहर के बीच में आ गए या रोड किनारे आ गया, पक्षी तालाब किनारे पे तो बैठ नहीं सकता। तो हम क्या करते हैं, तालाब के बीच में एक आईलैंड बनाते हैं मिट्टी का, उस पे बैठने की व्यवस्था करते हैं
1: पक्षियों के।
0: बिल्कुल, आप और मैंने अभी तक 100 से ज्यादा आईलैंड बनाए। आप इस साल बनाइए आईलैंड और अगली साल देखिए कम से कम

0: आपको 100 बर्ड्स मिलेंगे, एक्वेटिक बर्ड्स मिलेंगे, बहुत सुंदर सुंदर बत्तखें मिलेंगे, क्योंकि बीच में फिर आप वो ना घोंसला रख सकती है, बीच में वो अपना नेस्ट बना सकती है, बीच में अपने बच्चों को पाल सकती, अपने बच्चों को ट्रेन कर सकती है। मैं अभी एक महीने पहले गया था एक तालाब पर, ग्रेटर नोएडा में हमने वो डेवलप किया था दुजाना गाँव में, मैंने बीच में देखा तो मिट्टी के ना बहुत सारे छोटे छोटे होल थे नेस्टिंग आइलैंड के ऊपर, वहां बत्तखों ने अपने बच्चे छिपाए हुए थे और पूरा तालाब एकदम बत्तखों से भरा हुआ है। आप सोचिए अगर वो बीच में नहीं होता, किनारे पे तो कोई नहीं रखेगा, रखेंगे भी तो कुत्ते बिल्ली खा जाएंगे, कोई बच्चा उठा लेगा। तो जब भी मैं एक ऐसे तालाब पे जाता हूँ जो मैंने 2 साल पहले रेस्टोर किया था और आज पूरा पक्षियों से भरा हुआ है, बत्तखों से भरा हुआ है, जलीय जीवों से भरा हुआ है, उसको देख के जो तसल्ली मिलती है दिल को, बुरा नहीं लगता कि मैंने जॉब छोड़ दी।
1: अब मैं इसी पे आ रही थी कि इतना मुश्किल रहा होगा कि जॉब छोड़ के आप फुल टाइम इस काम में लग रहे थे, अपने डिसीजन से ज्यादा मुश्किल रहा होगा घर वालों को कन्विंस करना, उन्हें समझाना, क्योंकि आप अच्छी पढ़ाई लिखाई कर चुके थे, तो उसके बाद कैसे कन्विंस किया अपने पेरेंट्स को, अपने घर वालों को?
0: क्या है, 5 भाई बहन है, अभी मैं सबसे छोटा हूँ और मेरी मम्मी बताती है कि हम 5 नहीं, हम 10 भाई बहन थे, 10 में से 5 नहीं रहे, 5 बचे और 5 जो भी नहीं रहे वो गरीबी के कारण नहीं रहे। 5ों में से भी मैं ऐसा हूँ जिसने 11th क्लास में पढ़ाई की, पहली बार घर का सबसे छोटा, क्योंकि मेरे बाद तो नेक्स्ट जनरेशन शुरू होने वाली थी, हमारे बच्चे आने वाले थे, तो आई वॉज द पर्सन जिसने 11वीं क्लास में एडमिशन लिया और मैं कॉलेज गया पहली बार और जिसने पहली बार एमएनसी में जॉब भी की। तो मेरे घर वालों के लिए तो कितना बड़ा अचीवमेंट था कि कोई कॉलेज गया है। जब मैं कॉलेज गया था तो मैं कॉलेज में घुसने के अगले दिन ही मेरे इतने सारे रिश्ते आने वाले थे, क्योंकि रिश्तेदारियों में कोई था नहीं जो कॉलेज
1: पढ़ा लिखा और एमएनसी में
0: जॉब करे। जबकि जो मेरे साथ के थे वो बता रहे हैं कि मेरे दादाजी वहाँ के ग्रेजुएट थे, मेरे परदादाजी वहाँ दरोगा थे और मैं वहाँ पहली बार कॉलेज में जा रहा हूँ। मुझे शर्म लग रही थी कि हम कितने पीछे हैं, लेकिन मेरे घर वालों को लग रहा था कि हम कहाँ पहुँच गए चांद पे। प्राउड फील कर रहे थे। घर वालों को उम्मीद थी और जब जॉब लगती है किसी की, पहली बार कोई जॉब करता है तो अलग बात होती है। तो जब मैं जॉब छोड़ रहा था तो मैं यही सोच रहा था कि जॉब छोड़ना मेरे लिए अब कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जब आपके पास खोने को कुछ है ही नहीं तो आपको डर किस बात का, जॉब ही तो अगले साल फिर लग जाएगी, यहाँ छोड़ के कहीं और लग जाएगी। बट मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं जस्टिफाई कैसे करूं। तो उन दिनों में क्या था, ये 2016 से 18 जॉब किया था, तो 18 में जब मैंने जॉब छोड़ी तो नक्सली वाला कुछ चल रहा था इधर छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की तरफ, झारखंड की तरफ। मैं जॉब छोड़ चुका था और मैं जॉब छोड़ने के एक महीने तक मैं घर से उसी समय निकलता था जिस समय जॉब के लिए निकलता था।
1: अच्छा।
0: और उसी समय घर पे आता था जिस समय जॉब से आता था,
1: तो क्या बताया,
0: ताकि घर वालों को रियलाइज ना हो।
1: अच्छा।
0: और मैं करता क्या था उस बीच की, कहीं पे कोई पर्यावरण का सेमिनार हो रहा है, एक दो भैया थे जो काम कर रहे थे उनके ऑफिस पे जाके बैठता था, कहीं ऐसा प्रोग्राम चल रहा है उसको जाके सुनना है, और कई बार उधर से मेट्रो में बैठ के आता था, यहाँ एक सिटी में बीच में गोल चक्कर है बहुत बड़ा सा, उस पे जाके बैठ जाता था। तो वो मेरा काम था। तो मैंने फिर एक दिन ऐसे ही कहा अपनी मम्मी से कि वहाँ जो है मेरा ट्रांसफर उधर हो रहा है छत्तीसगढ़। तो मम्मी ने पूछा छत्तीसगढ़ कहाँ पड़ता है, क्योंकि मम्मी तो हमारी कभी स्कूल देखी नहीं कैसा होता है स्कूल, उन्होंने छत्तीसगढ़ क्या, उन्होंने अपने नोएडा के बाहर कभी जाके नहीं देखा। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा छत्तीसगढ़ वही जगह है जहाँ पे आजकल नक्सली और बहुत हमले हो रहे हैं जो टीवी में देखा था। तो उसने कहा नहीं नहीं बेटा वहाँ नहीं जाना, तुम जॉब छोड़ दो कहीं और ढूंढ लो।
1: अच्छा।
0: तो मैंने कहा ठीक है कल छोड़ दूंगा।
1: तो मैंने पहले आपको पूरा वो भूमिका तैयार की, उसके बाद
0: क्योंकि जस्टिफाई करने में मुझे समय लगा उसको कि उनको बताऊं कैसे, है ना, मैं बोलूंगा क्या, हाल तो मेरी जॉब मेरा डिसीजन वो वाला नहीं है, बट हम गांव के लोग हैं, हमें पेरेंट्स को भी साथ लेके चलना है, कोई भी बुरा नहीं फील कराना है, उनकी उम्मीदें जुड़ी हुई है हमसे हमारे। लेकिन पिताजी इस काम से बिल्कुल ना खुश थे, वो मुझसे नहीं कहते थे लेकिन मेरी मम्मी को बहुत डांटते थे, तुम्हारी वजह से ये कर रहा है, तुम बोलती नहीं हो कुछ, ये है घर का नाश हो जाएगा, ये है वो है।
1: तो ऑब्वियसली लगता है कि बेटा इंडिपेंडेंट हुआ, जॉब कर रहा है,
0: तो छोड़ के गलत डायरेक्शन में जा रहा है ना, उनके लिए गलत डायरेक्शन थे और कोई भी पेरेंट नहीं चाहेगा कि बच्चा इनसिक्योर फील्ड की तरफ। तो कई बार ऐसा होता था कि न्यूज पेपर में मेरा आता था, आज इंटरव्यू देकर आया हूँ तो कल आएगा ही आएगा, तो मैं गली के बाहर खड़ा हो जाता था, न्यूज पेपर वाले को रोकता था, वो पेज फाड़ लेता था और बोलता था हाँ तुम ले जाओ अब इसको, तो पिताजी तक नहीं पहुंचता था। लेकिन भाई गांव में आया तो गांव वाले खुद ही आ जाते थे, आप तो तुम्हारे लड़के का।
1: तो वो बताइए मुझे घटना कि जब मन की बात में पीएम मोदी ने आपका जिक्र किया तो फिर क्या माहौल था? आपने सुना था वो?
0: नहीं, मैं तो सुन नहीं पाया था। उस दिन मैं अपने घर पे ही था और लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। मेरा भतीजा आया था, मैं ऊपर था फर्स्ट फ्लोर पे, वो ग्राउंड फ्लोर पे था, तो वो भागा भागा आया था कि अंकल आपका नाम टीवी में आ रहा है। तो मैंने तुरंत लैपटॉप साइड में रखा और मैं भागा भागा नीचे गया। और जब तक नीचे गया तो मन की बात प्रोग्राम तो चल रहा था, बट मेरा वाला जो पार्ट था वो

0: खत्म हो गया। तो मैंने उसको बोला कि तुम मजाक क्यों करते हो, अरे नहीं अंकल अभी देखा था, सच में देखा था मैंने। तो मैं वापस गया अपने कमरे में, जब लेकिन वहां जाके देखा तो मेरा मोबाइल बज रहा था।
1: अच्छा।
0: और बार बार बज रहा था। मैंने उठा के देखा तो बहुत सारे ढेरों सारे मैसेज थे, कॉल थे, मेरे जितने भी लोग मुझे जानते थे आसपास के तो सब लोग कॉल करके बधाई देना चाहते थे। तो जब मैंने एक दो मैसेज पढ़ा तो फिर मुझे अपने भतीजे की बात पे यकीन आया कि हाँ वो सही कह रहा था। उसके बाद से जो लोग कुछ मजाक उड़ाते थे क्या ये ऐसा काम करते हो, करते
1: वही लोग,
0: तो मेरे पास एक जस्टिफिकेशन और आ गया कि जब प्रधानमंत्री जी तारीफ कर सकते हैं तो आप कौन हो मजाक उड़ाने वाले।
1: और आपके पिताजी का क्या रिएक्शन था?
0: देखो गांव में ना हमारे एक बेटा और पिताजी के बीच में इस तरह के कन्वर्सेशन होते नहीं है। उनको मन ही मन खुशी हुई होगी लेकिन उन्होंने कभी कहा नहीं कि बेटा आई एम सो प्राउड ऑफ यू, ऐसा सिर्फ हम टीवी में देखते हैं कि पिताजी कहते हैं जाके।
1: तो जब इतने बड़े लेवल पे आपकी तारीफ आ गई और सब कुछ अच्छा चलने लगा तो आपने अपने पिताजी को फिर कैसे कन्विंस किया?
0: मैं तो क्या करता था कि जैसे शुरू में जब तालाबों की बात आती थी तो हमारे पिताजी चाहते थे कि तुम कुछ भी करो लेकिन ऐसा काम करो जिससे पैसा आए, तो मैं इसलिए पढ़ाया था कि तुम पैसे कमा सको। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, मैं जब भी तालाबों के बारे में पूछते थे तो मैं कहता था मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मछली पालन में बहुत पैसा आए।
1: अच्छा।
0: इससे मछली पालन करेंगे और करोड़ों रुपए कमाऊंगा। तो वो उस बात से खुश हो जाते थे, अच्छा मछली पालन का काम करना है। मैंने कहा हाँ जी, मैंने सुना उसमें बहुत पैसा है, एक साल ट्राई कर लेता हूँ, हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो मेरे पिताजी को किसी भी काम से कोई दिक्कत नहीं है जिससे पैसा आए, तो इसलिए मैंने तालाबों के काम को मछली पालन से जोड़ के मैंने उनको जब बताया तो इस साइड की ठीक है भाई, मछली पालन में मैंने भी सुना है बहुत पैसा है।
1: तो कभी फिर ट्राई किया आपने सच में मछली पालन?
0: नहीं, मेरे साथ के करते हैं ना।
1: अच्छा।
0: मैंने मछली पालन कराया, अगर तालाबों को सस्टेन कराना था तो किसी ना किसी तरह से एक्वा कल्चर से जोड़ना है, अदरवाइज तो आज आप तालाब साफ करेंगे अगले साल फिर उतना ही बढ़ जाएगा। आप एक साल में तालाब ही तो रेस्टोर कर सकते हैं, लोगों का माइंडसेट थोड़ी ना रेस्टोर कर सकते हैं। जो लोग कचरा फेंक रहे हैं उनको दिमाग को थोड़ा ना अंडू कर सकते हैं कि आज से कचरा फेंकना बंद, क्योंकि आदत खराब होती है धीरे धीरे, धीरे खराब होती है तो धीरे धीरे सही भी होती है। अब हमारा हाथ चलता ही नहीं है डस्टबिन की तरफ, अब तो माननीय प्रधानमंत्री ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है और ये स्वच्छ भारत मिशन चलाया तो थोड़ा थोड़ा आदत में आ रहा है डस्टबिन की तरफ, अदरवाइज तो फेंकने की तरफ ही चलता है। मैं तो जब कॉलेज में जाता हूँ स्कूल में जाता हूँ बच्चों को उदाहरण देता हूँ कि भाई अगर मैं आपको आज होमवर्क देके आऊँ, होमवर्क देके जा रहा हूँ कि आपको नेचुरल सीनरी ड्रॉ करके लानी है कल, तो मुझे पता है 90% बच्चे क्या ड्रॉ करके लाएंगे, दो पहाड़ पीछे से उड़ता हुआ, एक पक्षी, आगे झोपड़ी, एक छोटा सा पॉन्ड, सूरज निकल रहा है, कहां से आया ये, है ना, क्योंकि वो पीढ़ी दर पीढ़ी वही बनाते आ रहे हैं। लेकिन अब वो सब झूठ है, अब ऐसे तालाब नहीं बचे हैं, अब तालाबों की असली पिक्चर बनाइए ना कि तालाब कैसे कचरे से भरे हुए हैं।
1: अब तक आपने कितने तालाब साफ किए हैं और उन्हें पुनर्जीवन दिया है?
0: अभी तक तो हम 100 से ज्यादा तालाब कर चुके हैं।
1: अच्छा।
0: और ये 100 तालाब कोई बड़ा है कोई छोटा है ना, कोई 50-50 एकड़ के भी जिसमें एक में से भी 50 तालाब निकल सकते हैं छोटे छोटे है। क्या जैसे उत्तर भारत में आप रहेंगे तो यहाँ पे अगर 500 एकड़ की भी कोई वाटर बॉडी है ना, ह्यूज वाटर बॉडी, उसको भी तालाब ही बोलेंगे। वैसे आमतौर पर तालाब एक छोटी वाटर बॉडी है और झील बड़ी वाटर बॉडी है, लेकिन यहाँ पे उत्तर भारत में आप चाहे कितनी भी बड़ी वाटर बॉडी ले लीजिए उसको तालाब ही बोलेंगे। उदाहरण के लिए कहता हूँ भोपाल का बड़ा तालाब, आप उसको इस किनारे खड़ा होकर देखिए आपको दूसरा किनारा ही नजर नहीं आता और वो समुंदर लगता है आपको, लेकिन नाम क्या है, बड़ा तालाब, उससे थोड़ा छोटा होता तो छोटा तालाब। तो इसलिए यहाँ आपने झील भी रिवाइव करी तो वो भी तालाब ही है। तो ऐसे कर करके हमने 100 से ज्यादा तालाब अभी तक रिवाइव किए और अभी हम 11 स्टेट्स में काम कर रहे हैं एक साथ।
1: अच्छा।
0: हमने गांव से शुरू किया था लेकिन अभी हम उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, पांडिचेरी, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, एवरीवेयर वी आर वर्किंग।
1: आने वाले समय में किस किस जगह को, कौन से तालाब आपने टारगेट किए कि अब यहाँ पर काम करें?
0: नहीं, टारगेट हम नहीं करते हैं, हम क्या है अगली साल के लिए हमेशा एक नई लिस्ट बनाते हैं।
1: अच्छा।
0: और वो लिस्ट बनती है लोगों की डिमांड के अकॉर्डिंग। भाई मान लो आप स्पॉन्सर है, आप किसी गांव से निकले हैं और आप यूएस में रहते हैं और आपके पास अभी पैसे की कोई कमी नहीं है और आप बोलते हैं मुझे अपने गांव के तालाब की बहुत याद आती है, मैं जिस तालाब में नहाया हूं अभी वो एकदम कचरा घर बन चुका है, मैं इसको रिवाइव कराना चाहता हूं।
1: अच्छा।
0: तो हमारी टीम जाती है उसको रिवाइव करती है, जो खर्चा होता है वो देते हैं।
1: अच्छा, तो इस तरह से फाइनेंशियल हेल्प मिल जाती है और
0: फाइनेंशियल हेल्प मिल जाती है। दूसरा है कुछ कॉर्पोरेट है, मान लो मैं एक कंपनी हूं और मैंने इस जिले में एक अपनी कंपनी लगाई हुई है और मैं पूरा मेरा प्रोडक्शन ग्राउंड वाटर से है, मान लो मैं कोल्ड ड्रिंक ही बना रहा हूँ, मैं पैक्ड वाटर बना रहा हूँ, तो मैंने ऊपर वाला प्लॉट खरीदा है उस जिले का या उस गांव का, मैंने नीचे का पानी नहीं खरीदा है, क्योंकि जब मैं वाटर एक्सट्रैक्ट करता हूँ स्पेशली ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट करता हूँ तो उसी प्लॉट का पानी नहीं निकल के आता है, वो वहां से 1 किलोमीटर के

0: का भी पानी आता है, वो 500 मीटर दूर का भी, लेकिन वो तो आपने खरीदा नहीं, आपने तो सिर्फ प्लॉट खरीदा है। तो फिर आपकी ये कॉर्पोरेट जिम्मेदारी बनती है कि जिस क्षेत्र का आप रिसोर्सिस यूज कर रहे हो, जिस पर पब्लिक का हक था, यहाँ की हवा पर पब्लिक का हक है, जितना एक कंपनी के मालिक का हक है उतना ही गाँव के एक आदमी का हक है, तो आप कम्युनिटी रिसोर्सिस को यूज कर रहे हो फ्री में, तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस सोसाइटी के लिए, उस क्षेत्र के लिए आप कुछ करें। इसीलिए CSR लाया गया, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो जो बड़े कॉर्पोरेट है वो अपने प्रॉफिट का 2% निकाल के अलग रखते हैं और उस क्षेत्र के लिए खर्च करते हैं जहां पे उनका प्लांट काम कर रहा है, और ये मैंडेटरी है, ये हर कॉर्पोरेट को करना ही करना है। हम क्या करते हैं, उन कॉर्पोरेट को बोलते हैं कि भाई आपकी फैक्ट्री यहां पे है, आपसे 20 किलोमीटर दूर एक तालाब है जो गांव वाले रिवाइव कराना चाहते हैं और हम उसको रिवाइव करने के लिए रेडी है, आपकी जिम्मेदारी बनती है हमें सपोर्ट करने की। तो वो CSR के अंतर्गत जरूरी है, सब मदद करते हैं, कुछ कॉर्पोरेट हमारी मदद करते हैं, और ऐसे करते करते अभी तक हमारा 60 से ज्यादा कॉर्पोरेट पार्टनर्स हमारे बन चुके हैं अलग अलग क्षेत्र।
1: जैसे मेरे जैसे कोई आम जन के लोग अगर जुड़ना चाहे सफाई के या रिवाइव करने के लिए, तो वो क्या कर सकते हैं?
0: देखो, शुरुआत तो घर से होती है। अगर तालाब में जो कचरा है वो भी हर इंडिविजुअल का ही कचरा है ना, किसी ने जाके एक ट्रक कचरा तो डाला नहीं एक साथ, तो हमारा हर घर से एक एक बोतल निकलती है जब वहाँ पे एक ट्रक कचरा होता है। तो जब मैं स्कूलों में जाता हूँ, मैं बच्चों को बोलता हूँ, अगर आपने 5 किलो प्लास्टिक स्कूल में इकट्ठा कर लिया तो मतलब आपने 1 स्क्वायर मीटर पॉन्ड आपने साफ
1: कर लिया। बेहतर है कि उसे गंदा ही ना किया जाए।
0: हाँ, तो तालाब को रिवाइव करने के 2 तरीके हैं। एक, आप जाके तालाब से कचरा निकाले, एक आप तालाब में कचरा जाने ही ना दे। तो जब आप जाने नहीं देते तो वो ज्यादा एफिशिएंट होता है और ज्यादा काम का होता है, इसलिए हम स्कूल के बच्चों को जोड़ते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि बच्चे ही बदलाव ला पाएंगे, इसके अलावा और कोई, क्योंकि जब आप बड़े पेड़ को उखाड़ कर दूसरी जगह लगाते हैं और एक छोटे पेड़ को उखाड़ कर दूसरी जगह लगाते हैं, मतलब अगर आप बदलाव करना चाहते हैं तो बड़े पेड़ का सक्सेस रेट बहुत 5-10% होता है, बड़े पेड़ नहीं बच पाते, छोटे पेड़ तो आप लगाते ही रहते हैं, जंगल लगाइए, तो वो एडॉप्ट कर लेते हैं नई जगह को, उनको अंदर सीखने की क्षमता होती है। तो इसलिए हम बच्चों को जाके बहुत सारी वर्कशॉप करते हैं, हम बच्चों के साथ जाके बात करते हैं और कोशिश करते हैं कि वो तालाबों को गंदा ना हो।
1: मतलब हर बड़े काम की शुरुआत जो है वो छोटे छोटे चेंजेस, छोटे छोटे बदलाव से की जा सकती है। रामवीर जी, आप यहाँ पर आए और हमारे पॉडकास्ट में इतने सहज तरीके से आपने इतनी अच्छी बातें बताई जल संरक्षण के बारे में, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के लिए बस इतना ही, और आप भी ये छोटे छोटे बदलाव का हिस्सा बन सकते हैं, कचरा कम फैलाएं ताकि जो हमारी वाटर बॉडीज है वो गंदी ना हो। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए नीति को, नमस्कार।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे तालाबों के संरक्षण और विकास के लिए प्रयासरत पॉन्डमैन के नाम से प्रसिद्ध रामवीर तंवर के साथ विशेष बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रही थी नीति शुक्ला। आप इस कार्यक्रम को हमारे मोबाइल ऐप News on EIR और YouTube चैनल News on EIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं, पता है podcast.airnews@gmail.com।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पॉडकास्ट प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ का 10वां संस्करण। ये कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे थे। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 9:40 हुए हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। श्रोताओं, आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं शोभा गोटू का राग भैरवी में गाई ठुमरी। तबला पर संगत कर रहे हैं रहमान खां और गीत के बोल हैं सुन पायल की झनकार। तो सुनते हैं शोभा गोटू की राग भैरवी में गाई ठुमरी।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आपने सुनी शोभा गुरटू की राग भैरवी में गाई ठुमरी। तबला पर संगत कर रहे थे रहमान। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलो हर्ट्स और FM 101.6 मेगा हर्ट्स पर। प्रातः के 10 बज चुके हैं। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक ऐसे गीत से जो सच्चे प्रेम की मासूमियत और गहराई को बेहद खूबसूरती से बयां करता है। फिल्म बरसात का ये सदाबहार नगमा है, हमको सिर्फ तुमसे प्यार है। आवाजें हैं कुमार शानू और अलका याग्निक की, लिखा है इसे समीर ने और संगीत नदीम श्रवण का है।

के बोल प्रेम में डूबे उस एहसास को बयां करते हैं जहां हर पल प्रिय का साथ ही जीवन का सबसे बड़ा सुख बन जाता है। तो सुनते हैं एसपी बाला सुब्रमण्यम और चित्रा की मधुर आवाजों में ये सदाबहार गीत, लिखा है जिसे मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीत आनंद मिलिंद का है।

श्रोताओं, प्रेम जब शब्दों से आगे बढ़कर एहसास बन जाता है तो दिल बार बार यही पूछता है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। प्यार की यही मीठी कश्मकश, दिल की धड़कनों की यही मासूम बेचैनी इस अगले गीत में खूबसूरती से सुनाई देती है। फिल्म लव का ये है बेहद खूबसूरत गीत, साथिया तूने क्या किया। इस गीत

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
3: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
2: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
3: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
2: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
3: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
2: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
3: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
2: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
3: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज़ जन जन तक।
0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
4: श्रोताओं, प्यार कोई ऐसा एहसास नहीं है जिसे जबरदस्ती रोका या समझाया जा सके। ये तो चुपके से दिल में उतरता है और फिर जिंदगी के हर रंग को और भी खूबसूरत बना देता है। कभी ये मुस्कान बनकर होठों पर खिलता है तो कभी धड़कनों की मधुर सरगम बन जाता है। तो इसी प्यार से एहसास को बड़े ही सलीके से बयान करता है फिल्म दुश्मन का ये जो गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। प्यार को हो जाने दो, प्यार को हो जाने दो। लता मंगेशकर, कुमार सानू की आवाजें, बेहतरीन संगीत आनंद बख्शी के बोल, सुनते हैं। ये मधुर धुन है उत्तम सिंह की।

0: बदलो बदलो आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करे। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
3: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
2: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1800 420 2233 पर कॉल करें।
4: जब सुने

पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। प्रेम का ये बेहतरीन संदेश जो कबीरदास ने दिया, ऐसा ही कुछ संदेश लेकर आ रहा है हमारा अगला गीत। फिल्म ढाई अक्षर प्रेम के का शीर्षक गीत है ये। तो प्रेम, विश्वास और समर्पण की खूबसूरत अभिव्यक्ति है, अनुराधा पौडवाल और बाबुल सुप्रियो के स्वर में है। जतिन ललित का है बेहतरीन संगीत और समीर ने इसको सजाया है ढाई अक्षर प्रेम के साथ।

0: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारत।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

श्रोताओं, श्रृंगार केवल बाहरी सजावट नहीं होती, बल्कि प्रेम में डूबे मन की एक अभिव्यक्ति भी होती है। कहीं ना कहीं जब अपने किसी खास के मिलने की खुशी हो तो एक छोटी सी अदा भी पूरे माहौल को खूबसूरत बना देती है। ऐसी एक मीठी छेड़छाड़, अपनापन और प्रेम के रंगों से सजा है हमारा अगला गीत। फिल्म का नाम है हम आपके दिल में रहते हैं। इसका एक लोकप्रिय गीत है जरा आंखों में काजल लगा लो सनम। समीर का ये गीत है और अनु मलिक ने इसे मधुर संगीत से सजाया है। अनुराधा पौडवाल और कुमार शानू की दिलकश आवाजों से इस गीत को हमेशा के लिए यादगार बना दिया है। तो सुनते हैं, वही मेरा दिल है।

शोर सच्चा प्यार अक्सर शोर नहीं करता, वो तो चुपचाप रफ्ता रफ्ता दिल में अपनी जगह बना लेता है। कभी एक मुस्कान, कभी एक मुलाकात और कभी कुछ अनकहे एहसास, ये धीरे धीरे दिलों को एक दूसरे के करीब ले आते हैं। प्यार के इसी खूबसूरत प्यारे से सफर को शब्द और सुरों में पिरोता है हमारा अगला गीत। फिल्म हलचल का ये गीत है, नदीम श्रवण अनुराधा उदित नारायण और सुजाता के स्वर में है ये गीत। समीर ने इसे लिखा है और संगीत विद्या सागर का है। फिल्म हलचल से सुनते हैं रफ्ता रफ्ता।

रिलीज को सुनते हैं कार्यक्रम के अगले गीत में, लिखा इसे समीर ने और संगीत आनंद मिलिंद का है। फिल्म का नाम है आई मिलन की रात।

0: कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं, फिल्म हम आपके हैं कौन से सदाबहार गीत है, इस मौसम के जादू को महसूस करते हैं लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम के स्वर में।
1: टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन लेट्स स्टार्ट द फन।

कार्यक्रम के आखिर में आइए सुनते हैं फिल्म तुम बीन का ये गीत, उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल के स्वर में, संगीत है निखिल विनय का और लिखा है इसे फैज अनवर ने।

उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में गाए तुम बिन फिल्म के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत यही समाप्त होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज और एफएम 101.6 मेगा हर्ट्ज पर। दिन के 11 बजने को है। अब आप सुनेंगे हेलो बीकानेर।

हेलो बीकानेर कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम में। श्रोताओं, हर काम की शुरुआत अगर अच्छे से हो तो उसका अंजाम भी हमें अच्छा ही मिलता है। और देखिए, हमारे इस हेलो बीकानेर कार्यक्रम में भी हम अपने इस कार्यक्रम की शुरुआत अच्छे से ही करते हैं। हमारे अच्छे अच्छे श्रोता जुड़ते हैं, अच्छे अच्छे गाने सुनते हैं और देखिए पूरा कार्यक्रम बहुत अच्छा सा बन पड़ता है। इसी अच्छे सिलसिले के साथ श्रोताओं, आइए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत और सुनते हैं ये बहुत ही अच्छा सा।

0: आइए देखते हैं श्रोताओं हमारे साथी कौन जुड़े हैं हमारे साथ। हेलो,
1: नमस्कार,
0: कौन बोल रहे हैं? जी सुभाष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। अभी कैसा है स्वास्थ्य आपका सर? हाँ, धीरे धीरे आराम आ जाएगा। बताएं सर, आज का संदेश बताएं। जी जी सही बात है, बिल्कुल।
1: ये अपनी जिंदगी है वो ऐसा अंग बनने के लिए नहीं दिए, भगवान को पाने के लिए दिए। लोगों का कोई उद्देश्य है तो जैसे भीड़ है, हमको ये भी पता नहीं कि हमारा भगवान ने जो भेजा है अच्छा कर्मों के लिए दिया है। अच्छे कर्म है और भगवान को याद रखते हो दुनिया के लिए ताकत नहीं की आपको बहुत कमी नहीं है।
0: सही बात है सर,
1: ये जीव है ना डर पर भटक रहा है, जैसे नोट भटक रहे हैं ना, तो आज आपकी जेब में कल मेरी जेब में होंगे, पता नहीं कितने जेबों से आया और आगे कितने जेबों में जाएगा।
0: सही बात है,
1: जीव संसार में भटक रहा है, भगवान को पाने की कोशिश नहीं कर रहा, सुबह शाम धन धन धन चाहिए, धन में
0: जी हाँ
1: ये ठीक है, धन के बिना काम नहीं होता, लेकिन धन इतना आप अच्छा करो जितना आपको दूर
0: सही बात। बहुत अच्छा संदेश आपका कि हम अगर कथा कीर्तन दया भाव रखेंगे, पूजा करेंगे, सभी का आदर करेंगे, तो ये सब चीजें हमारे जीवन में बड़े मायने रखती हैं। तो अब गाना बताएं सुभाष जी, कौन सा सुनना चाहते हैं?
1: की है
0: जी जी हाँ
1: जी
0: आप हमारे कार्यक्रम से जुड़ते हैं, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है और हम चाहते हैं कि आप हमसे हमेशा जुड़े रहें। धन्यवाद सुभाष जी, आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो।
1: हाँ जी नमस्ते,
0: कौन बोल रहे हैं?
1: हाँ लक्ष्मी नारायण सोलंकी गंगा शहर से।
0: लक्ष्मी नारायण जी सोलंकी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे हेलो बीकानेर कार्यक्रम में।
1: हेलो
0: जी लक्ष्मी
1: चैनल पर। हाँ तो पहले तो यही है कि महिलाओं को क्रिकेट की जो अभी बढ़त मिली अच्छी जीत के लिए पहले तो ये बधाई देते हूँ।
0: हाँ बहुत बहुत अच्छी बात है, पूरे देश के लिए गर्व की बात है।
1: और पहला टेस्ट मैच था ये।
0: हाँ पहला टेस्ट मैच था और महिलाओं ने जो जीत हासिल की है उसके लिए वाकई में खुशी की बात है। ये बहुत
1: बहुत खुशी की बात है, महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हासिल किया और खूब मेहनत की और भी ये सब सारा प्रैक्टिस का खेल है।
0: हाँ बिल्कुल, करत करत अभ्यास है जड़मत होती सुजान।
1: हाँ,
0: तो ये अभ्यास ही है उनका, देखिए और कितना कठिन अभ्यास होता है। खाने पीने का पूरा उनको ध्यान रखना पड़ता है, एक्स्ट्रा नहीं खा सकते हैं, भूख लग रही है तो भी उनकी डाइट जो है वो पूरी कंट्रोल रहती है कि आपको खाने में क्या क्या खाना है और क्या क्या नहीं खाना है। घंटों वर्जिश करते हैं वो लोग और कितना पसीना बहाते हैं, और देखिए इस गर्मी के मौसम में अपने आप को पसीना बहाना पड़ता है, जहाँ स्वतः ही पसीना बह रहा है और वो तो मतलब इतनी प्रैक्टिस कर करके अपना पसीना बहा रहे हैं और देश का नाम रोशन कर रही हैं।
1: रोशन कर रहे हैं
0: जी, बिल्कुल बहुत अच्छी बात आपने कही और ये हम सभी के लिए गर्व की बात है जी।
1: अपन भी सब हौसला बढ़ाएंगे तो उनकी और बढ़ने की उम्मीद बनेगी।
0: सही कह रहे हैं आप। होता क्या है कि जब पुरुषों के मैच होते हैं तब तो हम बहुत बढ़ चढ़ कर देखते हैं और खूब उनकी हौसला अफजाई करते हैं, तरह तरह के जो विज्ञापनों के माध्यम से उनकी हौसला अफजाई होती है, अखबार भी भरे रहते हैं उनसे। लेकिन जब महिलाओं की बारी आती है टीम की तो फिर ये थोड़ी चीजें जो है वो कम होने लग जाती हैं।
1: अभी 2-3 सालों से तो बहुत
0: बहुत देखते हैं। सही बात है बिल्कुल। और अब देखिए आप सबको नाम भी याद रहने लगे हैं, पहले हमें किसी का नाम याद नहीं था, है ना? आप सबके टीम के नाम कम से कम 5 लोगों के नाम तो हमें टीम में से याद ही होंगे। जो कहते हैं ना सर समय बदला है, तो देखिए हर तरफ से बदला है। बात करते हैं सबको पढ़ाने की, सबको बढ़ाने की, तो बेटियां फिर क्यों पीछे रहे,
1: वजन उठा लो, वेट लिफ्टिंग करते हैं ना, उसमें भी बढ़ चढ़ के लेडीज आ गई,
0: बिल्कुल आ गई हैं। आप देखिए अभी जो है वो एक तीरंदाज, तो वो जो है उनके दोनों हाथ नहीं है और वो पैर से ही जो है वो आर्चरी करती है,
1: पैर से भी।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत ही छोटी बच्ची है वो, बहुत ही छोटी सी है और प्यारी सी बच्ची है वो, और वो पैरों से देखिए तीर चला करके और उसने कई पदक जीते हैं। तो सर ये तो काबिलियत है सबकी, और कहीं हम तो ये कहते हैं कि किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए।
1: हमें भी ये सोचना चाहिए कि हमारे दोनों हाथ दोनों पैर है फिर भी हम कोशिश नहीं करते।
0: हाँ बहुत से लोग हैं वो कहते हैं कि
1: भी नहीं, वो पैरों से कर रही है,
0: पैरों से कर रही है। सर बहुत बड़ी मिसाल है वो, तो बहुत ही अच्छी मतलब मिसाल है हम सभी के लिए।
1: बच्ची तो पढ़ाई में आई हुई है, वो पैरों से आपके लिख के भी।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। तो वो कह रहे हैं ना प्रतिभा जो है वो कहीं भी छुपी नहीं रहती है, है ना? अगर आपके अंदर हुनर है तो वो कहीं ना कहीं उठ करके बोलेगा ही बोलेगा। बहुत अच्छी बात लक्ष्मी नारायण जी आपने की, और हमारे ये जो मैसेज है ये सभी तक पहुंचेगा बेटियों के लिए जी। अब गीत बता दें,
1: परिवार के दोस्तों का नाम ले लो।
0: हाँ जी लीजिए सर।
1: सुनैन पुष्पा सोलंकी, हेमंत सोलंकी, कोमल सोलंकी और मेरे दोस्त है ओम जी, संतोष सोनी और राजू जी, राजू सोनी, मेरी दोस्त है विशेष लाडली है सोनी
0: जी। तो सभी का स्वागत है और आप गीत बता दें कौन सा सुनना चाहते हैं?
1: विलन फिल्म का गाना है मैडम।
0: वाह बहुत पुराना गाना,
1: ये हम दोनों को पसंद है,
0: मधुर गीत आप सभी की पसंद पर सुनते हैं ये अच्छा सा गीत।
1: थैंक यू मैडम।

0: हेलो बीकानेर कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। श्रोताओं आइए देखते हैं हमारे साथी कौन जुड़े हैं। हेलो,
1: हाँ नमस्कार मैम।
0: नमस्कार,
1: मैं जबलपुर एमपी से आपका श्रोता अशोक जी बात कर रहा हूँ।
0: जी
1: कैसी हैं आप और हाँ। आपके आकाशवाणी बीकानेर के।
0: अशोक जी सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। और
1: जी मैं पहली बार आपसे जुड़ा हूँ, बात कर रहा हूँ, अच्छा लग रहा है।
0: बहुत अच्छी बात है सर। अशोक जी पहले भी कई स्टेशन से जुड़े हुए हैं आप या सिर्फ बीकानेर से ही आज जुड़े हैं?
1: मैं सभी स्टेशनों से जहाँ टाइम मिलता ऑल इंडिया सभी से जुड़ जाता।
0: अच्छा चलिए बहुत अच्छी बात।
1: ये रेडियो हमारा सबसे दूसरा था।
0: जी अच्छी बात है सर, बहुत अच्छी बात है। अशोक जी काम क्या करते हैं?
1: रिटायरमेंट हूँ, इनकम टैक्स टर्मिनल।
0: अरे वाह सर, इनकम टैक्स फिर तो दूर दूर भागते होंगे लोग आपसे।
1: 75 से सुन रहा हूँ रेडियो गांव से लेके अभी तक।
0: बहुत अच्छी बात है सर, ऐसे ही श्रोता हमारे बहुत सारे हैं जो हमारे इस रेडियो को इतना महत्व देते हैं।
1: बारिश का गाना सुनवा दीजिए, किशोर कुमार लता जी की आवाज, सबके बिछड़े हुए हम आज का
0: खूबसूरत गीत है जिसका आपने चयन किया है। और अशोक जी आप हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप हमेशा हमसे यूं ही जुड़े रहें।
1: जी जी मैडम, धन्यवाद
0: धन्यवाद।

0: इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए श्रोताओं हमारे फोन नंबर हैं 0151-2528-041 और 0151-2528-042। ये दोनों ही नंबर हमारे हेलो बीकानेर कार्यक्रम से जुड़ने के लिए हैं। आइए देखते हैं इन नंबरों को मिला के हमारे अगले साथी कौन जुड़े हैं। हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ जी नमस्कार।
1: नमस्कार जी।
0: कौन बोल रहे हैं?
1: जय नारायण व्यास कॉलोनी बीकानेर राजस्थान से डॉक्टर अशोक कुमार शाही।
0: डॉक्टर अशोक जी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद जी।
0: जी डॉक्टर शाही, मौसम को देखते हुए, गर्मी को देखते हुए क्या कुछ उपाय कर रहे हैं आप, या किस तरीके से बारिश का इंतजार कर रहे हैं?
1: देखिए मैं तो यही उपाय करता हूँ, एक तो नींबू पानी का ज्यादा सेवन कर रहा हूँ।
0: जी जी।
1: दिन में कम से कम दो बार। तो
0: जी
1: तो एक एक तो दोपहर में हो जाए और एक थोड़ा शाम ढलते तक हो जाए।
0: जी।
1: क्योंकि सुबह फिर चाय का रहता है तो नींबू पानी का सेवन करें और उससे थोड़ी मैदा मतलब पेट वगैरह शीतलता रहेगी उसमें।
0: सही बात है सर।
1: और दूसरा ये न करें, कपड़े पूरे पहन के रखे हैं, गर्मी है चलो बनाने में घूम रहे हैं उसमें घूम रहे, वो नहीं होना चाहिए कपड़े, क्योंकि मच्छर भी है साथ में।
0: हाँ ये बात सही है।
1: तो मच्छर नजर नहीं आते हैं, छोटे छोटे मच्छर होते हैं, बड़े मच्छर भी होते हैं, तो उनसे भी बच के रहना है। मॉस्किटो क्रीम्स आती हैं वो बॉडी के ओपन पार्ट पे लगा के रखे हैं कि अब इनके अंडों की हैचिंग होगी तो कामयाब होगा पूरे।
0: सही बात है। और सर ये बुखार जो है कई बार इतने खतरनाक होते हैं कि जानलेवा भी साबित हो जाते हैं।
1: बिल्कुल जी। अब तरह तरह के बुखार है आजकल, तो पता ही नहीं चलता डॉक्टरों कौन सा बुखार हो गया।
0: सही बात है। जब तक
1: हम तो कहते हैं सब मच्छर काटा था, मलेरिया होगा, ये होगा, वो होगा। एक अजीब सही
0: नया ही नाम सुनने को मिलता है सर, हर साल एक नया डायग्नोज होता है।
1: अच्छा फिर उसकी दवाई नहीं मिलती है।
0: सही है सर।
1: रिसर्च में क्या होता है, जो जो बीमारी निकलती है पीछे पीछे दवाई भी बनाते रहते हैं साइंटिस्ट, क्योंकि वो दवा फिर उसके ऊपर कारगर होनी चाहिए, तो उस चक्कर में फिर दवा भी उपलब्धि भी थोड़ी कम रहती है। तो मतलब इससे बेटर है कि प्रिकॉशन इज बेटर देन वो है ना, क्योर वो वाला हिसाब करो तो।
0: सही बात है।
1: और जहाँ जहाँ एक्सपोज पार्ट है उनको जितना कवर्ड हो सके करें करें, फिर वो बताया मैंने वो उपचार करें। इससे क्या होता है कि थोड़ा मच्छरों से तो बचे।
0: सही बात है सर। गर्मी तो चलिए है तो है, गर्मी तो मौसम है, अपन इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ बाकी सावधानियां अपन बरत सकते हैं।
1: हाँ गर्मी देखो सीजन तो सब आने चाहिए, गर्मी सर्दी पतझड़ बारिश, क्योंकि इसका एक प्रकृति के ऊपर भी अच्छा प्रभाव पड़ता है, दूसरा हमारी बॉडी के ऊपर भी इनका अच्छा प्रभाव पड़ता है।
0: जी सर,
1: तो एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर बोलते हैं, तो वो सब चीजें बहुत जरूरी भी है।
0: जी सर,
1: अब ये नहीं है कि गर्मी ना आए, सर्दी आए, सर्दी ना आए, बारिश आए, बारिश ना आए तो वो आए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सब आएंगे लेकिन हम अपनी प्रिकॉशंस
0: जरूर ध्यान में रखें।
1: हाँ वो ध्यान में रखें, जिससे कोई बीमार ना हो, कमजोर ना हो, तो वो सब चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। मैंने तो ऐसा सोचना गलत भी हो सकता हूँ।
0: सही नहीं नहीं बिल्कुल सही है सर, आपका संदेश बहुत अच्छा है और सभी के लिए कामगार संदेश है ये, सभी के काम की चीज है ये, जो भी बात आपने कही है वो है ना। तो अब ऐसा ही अच्छा सा गाना बता दीजिए।
1: गाना तो आप सुनाइए, बाहर फिर भी आएंगी का बड़ा अच्छा गाना है, मोहम्मद रफी साहब ने गाया था, आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है।
0: खूबसूरत गीत सर आपने गा के भी सुना दिया, बोल पूरे बता दिए, तो आइए अब सुनते हैं रफी साहब की आवाज में ये गीत।
1: बिल्कुल जी।
0: धन्यवाद
1: धन्यवाद
0: धन्यवाद।

0: हेलो
1: हेलो जी मैम, नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: जी मैं मंसूर बोल रहा हूँ, राजस्थान जिला बीकानेर गंगा शहर से।
0: मंसूर जी, बहुत बहुत स्वागत है हेलो बीकानेर कार्यक्रम में।
1: स्वागत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद
0: जी।
1: कहते हैं ना कि अगर सीखना हो, अगर प्यार सीखना हो तो मतलब देश के जवानों से सीखे प्यार करना।
0: हाँ बिल्कुल
1: जी जी। अगर सब्र करना सीखे तो देश के किसानों से सीखे।
0: ओ बहुत बढ़िया बात
1: जी। जी क्योंकि कहते हैं ना कि वो मतलब अपनी जान तक कुर्बान कर देते हैं देश के लिए, मतलब प्यार जताने के लिए।
0: सही बात है।
1: वहीं देश के किसान जो है, मतलब किसान जो भी है, वो अगर बीज बोता है तो इतनी सब्र करता है कि जब तक फल का इंतजार करता है वो।
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बहुत अच्छी बात आपने कही। और देखिए, देश प्रेम से बड़ा तो कोई प्रेम हो ही नहीं सकता
1: जी, जी
0: जी। और सब्र की बात, किसानों की बात आपने अच्छी कही कि जब वो बीज बोते हैं उससे पहले से कितनी तैयारी करते हैं खेत की, उसके बाद में कितना इंतजार करते हैं, जब फसल पकती है लहराती है तब जाकर के उन्हें कहीं अपने सब्र का मीठा फल देखने को मिलता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, हम सबके पेट के लिए तो किसान ही है जो मेहनत कर रहे हैं, है ना। अगर वो नहीं करेंगे तो फिर आप और हम खाएंगे क्या।
1: जी
0: जी बिल्कुल। हाँ जी मंसूर जी, बहुत अच्छा लगता है जब आप बात करते हैं हमारे इस कार्यक्रम से। और आप तो हमारे नियमित श्रोता हैं, बरसों से जुड़े हुए हैं आप हमसे जी।
1: मैं और मेरे मित्र सभी ये गीत जो है आकाशवाणी टीम को और देश के जवानों को और देश के किसानों के नाम करना चाहता हूँ
0: जी। कौन
1: मित्रों के नाम इस प्रकार है, फरियाद अली उर्फ कड़वे, राजू भाई, गोपाल भाई, पुरुषोत्तम बंसारे, गंगा शहर
0: जी। आप गीत बता दें कौन सा सुनना चाहते हैं।
1: गीत मुझे सुनना है उपकार फिल्म से, जिसके बोल लिखे हैं गुलशन बावरा ने
0: जी,
1: कल्याण जी आनंद जी का है
0: जी,
1: महेंद्र कपूर ने, और जी के बोल है मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे
0: में, मेरे देश की धरती। वाकई में भारत देश की धरती का तो कहना ही क्या है जी। मंसूर जी, आपने हमें फोन किया, इसके लिए बहुत शुक्रिया
1: जी। आप इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।

0: हेलो
1: नमस्कार,
0: कौन बोल रहे हैं?
1: धीरज जबारी बात कर रहा हूँ, गाँव डेर तहसील जिला पाटन गुजरात।
0: जी धीरज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में।
1: जी धन्यवाद।
0: जी बताएं धीरज जी, कैसा मौसम है आपके गुजरात में?
1: मौसम सुहावना है, बारिश का इंतजार करते हैं जैसे आप लोग भी करते हैं।
0: अच्छा,
1: क्योंकि मोर भी बोल रहे हैं कि बारिश आओ
0: आओ। हाँ, सही बात है सर।
1: लेकिन ऊपर वाले की जब मर्जी होती तब बीकानेर या अहमदाबाद या पाटन में बरसेगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल सर, यहाँ तो बीकानेर में तो बिल्कुल भी नहीं बरसा है, एक बार भी नहीं बरसा है अभी,
1: शुरू से नहीं बरसा है।
0: बहुत एक महीने पहले करीब हुई थी बारिश, उसके बाद ये एक महीने से तो बिल्कुल भी नहीं हुई है सर।

0: वहली की, यानी बहुत पहले से गिर गई जो बारिश की ऋतु, तो मेरे ख्याल से 15 दिन पहले शुरू हुई।
1: हाँ।
0: अभी जरूरत है और बारिश के बिना जीवन अधूरा है,
1: बिल्कुल सही है,
0: प्रकृति के बिना जीवन अधूरा है। तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, मोर भी प्रार्थना करते हैं कि बारिश आए।
1: आपके पीछे मुझे मोरों की आवाज सुनाई दे रही है,
0: तभी तो मैंने मोर का उल्लेख किया।
1: हाँ जी जी बिल्कुल, सभी को इंतजार है बारिश का, और देखिए ये बारिश कब बरसेगी, जब बरसेगी, जब ईश्वर की कृपा होगी तभी बरसेगी, है ना।
0: मैं यही कहना चाहता हूँ, आपकी बात भी सही है, और मेरे ख्याल से स्वच्छ अगर देखा जाए तो शहरों में बीकानेर भी शामिल होगा, और राजस्थान के कई शहर भी स्वच्छता के बारे में अग्रिम में है, और इस स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी हमारी हर नागरिक की होती है, गांव हो या शहर।
1: बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। बहुत अच्छा लगा धीरज जी आपसे बात करके। अब आप गीत बता दें, कौन सा सुनना चाहते हैं?
0: गीत सुनना है आप तो ऐसे नहीं थे फिल्म का गाना है, और गाने के बोल है तू इस तरह मेरी जिंदगी में, गाया है अमृता जी ने जी। बहुत अच्छा गाना है, सभी श्रोताओं को पसंद आएगा मेरे ख्याल।
1: बहुत शुक्रिया धीरज जी हमसे जुड़ने के लिए, और आइए आपकी पसंद पर सुनते हैं सभी श्रोताओं के साथ ये खूबसूरत सा गीत।
0: धन्यवाद।
1: धन्यवाद।

1-2528-0401 और 01-5125-2802। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए श्रोताओं आकाशवाणी बीकानेर की पूरी टीम का सहयोग रहता है। कार्यक्रम की प्रस्तुति बरखा थानवी व्यास की है और इसका संयोजन है अमित सिंह का और मैं आपके साथ प्रतिमा तिवारी। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।

श्रोताओं, हमने कार्यक्रम के आरंभ में बात की थी कि अगर आगाज अच्छा होता है तो उसका अंत भी अच्छा होता है। तो आगाज हमने किया बहुत ही खूबसूरत से गीत के साथ, और देखिए अंत भी इस खूबसूरत से गीत के साथ ही हुआ इस हेलो बीकानेर कार्यक्रम का। तो आज के इस कार्यक्रम में आपने बहुत से गीत सुने और हमारे श्रोताओं की बात भी सुनी। कुछ महत्वपूर्ण संदेश थे जो हम सभी के लिए उपयोगी थे। भारत देश की बात थी, देश की रक्षा करने वाले जवानों की बात थी, बेटियों की बात थी, जो हम सभी के लिए गर्व की बात है। श्रोताओं, ऐसे ही नए नए विचारों के साथ हमारा ये कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, और इसीलिए हम आपसे गुजारिश करते हैं कि हमारे इस कार्यक्रम से आप अवश्य जुड़ें। हमारे फोन नंबर है 01

आप सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो बीकानेर। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलो हर्ट्ज और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 12 बजने को है, कुछ ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत का ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम एक अब से कुछ देर में आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया जाएगा। इसे हैदराबाद की निजी कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस ने बनाया है। विक्रम एक का यह प्रक्षेपण भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। ये पहली बार होगा जब किसी भारतीय निजी कंपनी ने देश में डिजाइन और तैयार किया गया ऑर्बिटल क्लास रॉकेट लॉन्च किया है। इस रॉकेट का नाम भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के सम्मान में रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्रम एक मिशन को भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। उन्होंने कहा कि ये चार चरणों वाला रॉकेट तेज और जरूरत के अनुसार उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजने के लिए बनाया गया है। प्रधानमंत्री ने स्काईरूट एयरोस्पेस की पूरी टीम को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि ये मिशन देश के युवाओं की प्रतिभा, मेहनत और नए विचारों को दिखाता है। इससे अंतरिक्ष क्षेत्र में नए अवसर सृजित होंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित सीमा सुरक्षा बल की 18वीं बटालियन की जुमागार सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे सीमा सुरक्षा बल के जवानों से संवाद करेंगे, प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे और पौधारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा बल से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। तीन दिन के दौरे पर श्री शाह आज सिलीगुड़ी में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में तीन प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का संयुक्त रूप से शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं पर 16,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना को लेकर भारत और जापान के बीच बातचीत अच्छी तरह आगे बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि परियोजना का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और पहला खंड वर्ष 2027 में शुरू होने की उम्मीद है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत सरकार का रुख स्पष्ट है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के पूरे केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी अशांति पर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क ने प्रदर्शनकारियों की मौतों की त्वरित, निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत की आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति केवल एक बयान मात्र नहीं है, बल्कि भारत अपने रुख पर दृढ़ता के साथ कायम है। नई दिल्ली में आर्म फोर्सेस फर्स्ट कॉन्क्लेव में श्री सिंह ने कहा कि भारत न केवल अपनी सीमाओं पर ही आतंकवादियों पर हमला करेगा, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर उनके ठिकानों में घुसकर भी उन्हें मारेगा।
1: आतंकवाद के खिलाफ भी हमारी गवर्नमेंट ने पूरी दुनिया के सामने अपने बदले हुए नजरिए को स्पष्ट किया है। आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारे लिए केवल एक स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि लाइन ऑफ एक्शन है।

0: आतंकवाद के खिलाफ हम दरवाजे पर नहीं बल्कि घर में घुसकर मारेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सारी दुनिया ने यह देख भी लिया, हमारी सेनाओं का पराक्रम तो हमेशा ही अद्भुत रहा है।
1: श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने भारत के इस नेतृत्व को देखा है और एक तकनीकी युद्ध का एक उल्लेखनीय उदाहरण है। श्री सिंह ने कहा कि इस अभियान में आकाश तीर, आकाश मिसाइल प्रणाली और ब्रह्मोस सहित कई अन्य अत्याधुनिक रक्षा उपकरणों का उपयोग किया गया था। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्ष में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत के रक्षा तंत्र को मजबूत करने को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बनाया है। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लगभग 2030 किलोग्राम गांजा जब्त किया है। इस कार्रवाई में दो अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। उनके खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस आरोपियों से तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के बारे में पूछताछ कर रही है। पीवी सिंधु ने टोक्यो में खेले जा रहे जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई है। फाइनल में कल पीवी सिंधु का मुकाबला जापान की अकाने यामागुची से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी बीकानेर के धोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम में 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 12:05 हुए हैं। अब आप सुनेंगे हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का विवरण।

हमारी इसी सभा में 12:10 पर और शाम 7:45 पर आकाशवाणी बीकानेर के ढोले मारू चैनल से आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम। फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुनेंगे हमारी इसी सभा में 12:40 पर, दोपहर 2:30 पर, शाम 6:05 पर और रात्रि 9:15 पर आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से।

महिलाएं अपना कार्यक्रम महिला जगत सुनेंगी दोपहर 1:05 पर आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। कार्यक्रम में आज चर्चा के विषय रहेंगे घर से डिजिटल कंटेंट क्रिएशन और आय, यूरिक एसिड बढ़ने लक्षण और खानपान, बच्चों में मोबाइल टाइम सीमित करें, डॉक्टर नेल्सन मंडेला जयंती। कार्यक्रम में आप सुनेंगे वार्ता कामकाजी महिला गृहस्थी और काम में सामंजस्य, वार्ताकार होंगी श्रीमती निर्मला शर्मा। कार्यक्रम में आप सुनेंगे रसोई से कुछ रेसिपीज और कुछ वीडियो टिप्स।

शाम 5:05 पर युवा साथी अपना कार्यक्रम युवाणी सुनेंगे आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। कार्यक्रम में आज की बात का विषय रहेगा समय का सदुपयोग। लघु जानकारी दी जाएगी नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस, यूरोप महाद्वीप, रील और रियल को समझें, अनुच्छेद 49 जैसे विषयों पर। इसी के साथ कार्यक्रम में आप सुनेंगे रोजगार समाचार और क्विज। जिले की चिट्ठी कार्यक्रम का समय रहेगा शाम 6:40 आकाशवाणी जयपुर केंद्र से।

ग्रामीण श्रोता अपना कार्यक्रम ग्रामीण जगत सुनेंगे शाम 7 बजे आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे फरमाइशी पत्रों व ई मेल पर आधारित लोक गीतों का कार्यक्रम।

रात्रि 8 बजे आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से आप सुनेंगे कार्यक्रम बीकानेर दर्पण। कार्यक्रम में आप सुनेंगे बीकानेर की सांस्कृतिक और साहित्यिक गतिविधियों का साप्ताहिक कार्यक्रम। वाचक स्वर होगा श्री

उपाध्याय का, प्रस्तुति रहेगी श्रीमती पुनीत बिश्नोई की, संयोजन होगा श्री अमित सिंह का। रात 8:30 पर आप सुनेंगे लोक संगीत का कार्यक्रम आकाशवाणी बीकानेर के ठोला मारू चैनल से। रात 9:30 पर कार्यक्रम चित्र भारती आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

रात्रि 10 बजे आकाशवाणी भी माफ कीजिएगा रात्रि 10 बजे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। कलाकार होंगे देवव्रत मिश्रा। आप सुनेंगे कार्यक्रम में सितार वादन।

ये था हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का विवरण। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। दिन के 12:10 हुए हैं, अब आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम की पहली गजल हम आपको सुनवा रहे हैं पंकज उदास की आवाज में। गजल को लिखा है कतील शिफाई ने।

पंकज दास की आवाज में ये गजल अभी आपने सुनी। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। कार्यक्रम में हम आपको सुनवा

आप सुन रहे हैं सुगम संगीत के कार्यक्रम में कुछ गजलें आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से। कार्यक्रम में लीजिए सुनिए अगली गजल मनोहर उदास की आवाज में। गीत गजल को लिखा है निदा फाजली ने।

भूपेंद्र और मिताली सिंह की आवाज में गाई हुई इस गजल के साथ ही कार्यक्रम सुगम संगीत यही समाप्त होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोले मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलो हर्ट्ज और एफएम 101.6 मेगा हर्ट्ज पर। दिन के 12:40 हुए हैं। अब आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। कार्यक्रम में पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं कैलाश खेर, महुआ कामत और श्रद्धा पंडित की आवाजों में। फिल्म का नाम है देव। गीत के बोल हैं निदा फाजली के। संगीत दिया है आदेश श्रीवास्तव ने।

0: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक।
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
1: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
2: आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। कार्यक्रम में अगली प्रस्तुति लीजिए सुनिए उदित नारायण और अलका याग्निक के स्वरों में। फिल्म का नाम है दिल चाहता है। जावेद अख्तर के लिखे बोलों को संगीतबद्ध किया है शंकर एहसान और लॉय ने।

उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में दिल चाहता है फिल्म से अभी आपने सुना ये गीत। गीत को लिखा था जावेद अख्तर ने, संगीत था शंकर एहसान और लॉय का। आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत एम जी श्री कुमार और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में। फिल्म का नाम है डोली सजा के रखना। गीत को लिखा है महबूब ने, संगीत दिया है ए आर रहमान ने।

राजेश कुमार और महबूबा पौडवाल की आवाजों में डोली सजा के रखना फिल्म का गीत अभी आपने सुना। गीत के बोलते महबूब के, संगीत था एआर रहमान का। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। कार्यक्रम के अंत में अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं श्रेय घोषाल और निखिल पॉल जॉर्ज की आवाजों में। फिल्म का नाम है बर्फी।

सिंह कुशाल और निखिल पॉल जॉर्ज की आवाजों में गाए बर्फी फिल्म के संगीत के साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत यही समाप्त होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोले मेरू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज और एफएम 101.6 मेगा हर्ट्ज पर। दिन के 1 बजे हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी जयपुर केंद्र से।

समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। भारत के पहले निजी रूप से विकसित ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 ने आज अपनी पहली परीक्षण उड़ान भरी। इसे हैदराबाद की कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने बनाया है। ये रॉकेट मिशन आगमन के तहत सुबह 11:30 बजे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया। विक्रम 1 का ये प्रक्षेपण भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। ये पहली बार है जब किसी भारतीय निजी कंपनी ने देश में ही डिजाइन और तैयार किया गया ऑर्बिटल क्लास रॉकेट लॉन्च किया है। इस रॉकेट का नाम भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के सम्मान में रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रॉकेट के सफल प्रक्षेपण के बाद इसे तैयार करने वाले वैज्ञानिकों से बात की और उन्हें बधाई दी। श्री मोदी ने कहा कि ये आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि इससे अंतरिक्ष क्षेत्र में नए अवसर पैदा होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत की आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति केवल एक बयान मात्र नहीं है, बल्कि भारत अपने इस रुख पर दृढ़ता के साथ कायम है। ये बात श्री सिंह ने नई दिल्ली में आज फोर्सेस फर्स्ट कॉन्क्लेव में कही। उन्होंने कहा कि भारत न केवल अपनी सीमाओं पर ही आतंकवादियों पर हमला करेगा, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर उनके ठिकानों में घुसकर भी उन्हें मारेगा। श्री सिंह ने कहा कि देश का रक्षा उत्पादन लगभग 1,78,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है, जबकि 2014 में ये लगभग 40,000 करोड़ रुपए था। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस वर्ष रक्षा उत्पादन में 2,00,000 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार करने का लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज नागौर जिले के तिलानेश गांव में रात्रि विश्राम के बाद प्रातः भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने खेतों में किसानों से चर्चा की तथा गांव की गलियों में महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों से संवाद किया। मुख्यमंत्री ने श्री चारभुजानाथ जी और वीर तेजाजी मंदिर में दर्शन किए और तालाब के किनारे पौधा लगाया। उन्होंने गांव में पुस्तकालय सह अटल ज्ञान केंद्र, रामसरी गांव से जोबनेर बुटाटी राज्य राजमार्ग तक 1,18,00,000 रुपए की लागत से डामर सड़क निर्माण तथा तालाब के सौंदर्यीकरण और जीर्णोद्धार की घोषणा की। राज्य सरकार ने भरतपुर शहर की पेयजल व्यवस्था को मजबूत करने के लिए करीब 81,14,00,000 रुपए स्वीकृत किए हैं। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिशासी अभियंता केशव पांडे ने बताया कि अमृत 2.0 योजना के तहत शहर में लगभग 326 किलोमीटर लंबी पेयजल पाइपलाइन बिछाई जाएगी। इसके साथ ही 10 नई पानी की टंकियों का निर्माण और 22,000 नए पेयजल कनेक्शन जारी किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि परियोजनाओं के लिए निविदाएं जारी कर दी गई हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं कक्षा की पूरक परीक्षाएं 28 जुलाई को आयोजित होंगी। बोर्ड की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार विज्ञान, वाणिज्य और कला संकाय की परीक्षाएं एक ही दिन में होंगी। परीक्षा सुबह 10:30 बजे शुरू होंगी। कुछ विषयों की परीक्षा दोपहर 12:30 बजे तक और बाकी विषयों की परीक्षा दोपहर 1:30 बजे तक चलेगी। राज्य के पहले परमवीर चक्र विजेता कंपनी हवलदार मेजर पी

0: बाबू सिंह शेखावत के शहादत दिवस पर आज उन्हें याद किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। श्री शर्मा ने लिखा कि मेजर पीरू सिंह शेखावत का जीवन सभी को राष्ट्रभक्ति, कर्तव्य निष्ठा और देश सेवा के लिए प्रेरित करता रहेगा। झुंझुनू स्थित मेजर पीरू सिंह स्मारक पर आयोजित कार्यक्रम में जिला कलेक्टर डॉ. अरुण गर्ग और अन्य गणमान्य नागरिकों ने पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उनके शौर्य और बलिदान को याद करते हुए युवाओं से प्रेरणा लेने का आह्वान किया गया। गौरतलब है कि मेजर पीरू सिंह ने 1948 के भारत पाकिस्तान युद्ध में टीथवाल सेक्टर में अद्वितीय वीरता का परिचय दिया था। उन्हें मरणोपरांत देश के सर्वोच्च वीरता सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी बीकानेर के टोलामारो चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज पर दोपहर के 1:05 हुए हैं। बहनें सुनेंगी अपना कार्यक्रम महिला जगत। आज प्रस्तुत करता है संध्या शर्मा ओझा और वीणा ओझा।

0: महिला जगत कार्यक्रम सुनने वाली हमारी सभी रेडियो सखियों को संध्या ओझा
1: और वीणा ओझा का
0: प्यार भरा नमस्कार। जीवन की राह में छोटी छोटी बातें बन जाती है खुशियों की सौगातें।
1: बस थोड़ा अपनापन, थोड़ी मुस्कान, यही तो है जीवन की सबसे सुंदर पहचान। सखियों, जीवन की भागदौड़ में हम सुबह से शाम तक न जाने कितनी जिम्मेदारियां निभाते हैं। घर हो या कार्यस्थल हो, परिवार हो या समाज हो, हर भूमिका में अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करते हैं। लेकिन इन सब के बीच कुछ पल ऐसे भी होने चाहिए जो सिर्फ हमारे
0: अपने हो,
1: जहाँ हम रुके, मुस्कुराए और कुछ नया सीखे और कुछ अच्छा भी सोचे।
0: सखियों, कहते हैं कि ज्ञान तभी सार्थक होता है जो जीवन को सरल बना दे। इसलिए महिला जगत केवल जानकारी देने का मंच नहीं, बल्कि अनुभव बांटने, प्रेरणा लेने और एक दूसरे से जुड़ने का माध्यम भी है।
1: बिल्कुल साक्षी, हमारी दादी नानी कहा करती थी कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। सच भी तो है, हर दिन हमें कुछ नया सिखाता है। कभी बच्चों से हम नटखटपन सीखते हैं, तो कभी बुजुर्गों से अनुभव, तो कभी जीवन की छोटी छोटी घटनाएं ही हमें बड़ी सीख दे जाती है।
0: वीणा, आज विज्ञान जो है वो बहुत तेजी से ना आगे बढ़ रहा है, सुविधाएं भी बढ़ रही हैं, लेकिन रिश्तों की मिठास, परिवार का साथ और संस्कारों की महक आज भी उतनी ही अनमोल है। यदि ना हम घर हर दिन घर में कुछ समय अपनों के लिए निकालें या एक दूसरे के साथ खुलकर बात करें और एक दूसरे की भावनाओं को समझें, तो जीवन की कई परेशानियां अपने आप छोटे लगने लगती है। सखियो,
1: तो आइए बहनों कुछ पल साथ में बिताते हैं, कुछ नई बातें जानते हैं, कुछ पुराने अनुभवों को याद करते हैं और अपने जीवन को थोड़ा और सुंदर बनाने का प्रयास करते हैं। इसी सुंदर सोच के साथ आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं हमारे सुंदर से और प्यारे से जीवन साथी के लिए ये प्यारा सा गीत।

0: सखियों, कुछ लोग अपने लिए जीते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो पूरी मानवता के लिए मिसाल बन जाते हैं।
1: तो आज हम बात कर रहे हैं ऐसे ही एक महान व्यक्तित्व की जिन्होंने अन्याय के सामने कभी हार नहीं मानी और 27 वर्षों तक कारावास सहा, लेकिन जेल से निकलकर भी बदले नहीं बल्कि क्षमा, समानता और मेल मिलाप की राह चुनी। तो दोनों अब समझ ही गए होंगे कि हमारा इशारा किस तरफ जा रहा है। हम बात कर रहे हैं दक्षिण अफ्रीका के महान नेता डॉक्टर मंडेला की, जिनकी जयंती पर हर वर्ष 18 जुलाई को पूरी दुनिया में प्रेरणा दिवस के रूप में मनाया जाता है।
0: बिल्कुल वीना, डॉक्टर नेल्सन मंडेला का जीवन हमें हमेशा सिखाता है कि सच्चा नेतृत्व सत्ता से नहीं बल्कि सेवा, धैर्य और मानवीय मूल्यों से बनता है। संयुक्त राष्ट्र ने भी उनकी प्रेरणा को सम्मान देते हुए 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया है। आइए आज उनके जीवन, संघर्ष और प्रेरणादायक विचारों को करीब से जानते हैं।
1: तो बहनों, डॉक्टर नेल्सन मंडेला केवल दक्षिण अफ्रीका के नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए आशा

0: का समानता और मानवता के प्रतीक है। उन्होंने रंग भेद जैसी अमानवीय व्यवस्था के खिलाफ पूरी दृढ़ता के साथ संघर्ष किया।
1: साथ ही सखियों, सबसे प्रेरणादायक बात यह है कि उन्होंने अपने जीवन के 27 वर्ष, जी हाँ 27 वर्ष जेल में बिताए, लेकिन उनके मन में कभी भी किसी से बदला लेने की भावना नहीं जागी। जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने देश को जोड़ने और क्षमा का संदेश दिया।
0: यही कारण है कि उन्हें शांति का दूत कहा जाता है। वर्ष 1993 में उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया और बाद में वे दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने।
1: साथ ही सखियों, मंडेला जी का मानना था कि शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार होता है जिससे दुनिया को बदला जा सकता है। उनका यह विचार आज भी युवाओं के लिए सच में बहुत ही प्रेरणादायक है।
0: और आज जब समाज में आपसी सौहार्द, समानता और भाईचारे की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक है, तब मंडेला जी के विचार हमें एक दूसरे का सम्मान करना और मिलकर आगे बढ़ना सिखाते हैं। और संयुक्त राष्ट्र में 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। बहनों, हम इस बात पर इसलिए जोर दे रहे हैं क्योंकि इस दिन लोगों से कम 67 मिनट तक समाज सेवा करने का आग्रह किया जाता है और ये 67 मिनट मंडेला जी के 67 वर्षों की सेवा का प्रतीक है।
1: कितनी सुंदर पहल है ना। यदि हम भी सखियों अपने जीवन में थोड़ा समय किसी जरूरतमंद की सहायता, शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण या सामाजिक सेवा के लिए निकाले बिना, तो यह उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी।
0: बिल्कुल, तो आइए बहनों, नेल्सन मंडेला जयंती पर हम संकल्प लें कि भेदभाव नहीं समानता अपनाएंगे और घृणा नहीं प्रेम फैलाएंगे और समाज में सकारात्मक परिवर्तन के लिए अपना योगदान देंगे।

0: कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
3: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
2: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
3: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
2: बस आइए करणी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में
3: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
2: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक।
3: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का।

0: चौथे रविवार को सुबह 8:30 बजे सुनिए कार्यक्रम हेल्दी बीकाना आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल की प्रस्तुति।
1: बचपन की खुशबू खेलों में है, मिट्टी की सुंडी महक में है और मोबाइल की दुनिया थोड़ी दूर की असली मुस्कान तो अपनों के संग में है। तो बहनों आज हम बात करेंगे उस विषय की जो लगभग हर घर की चिंता बन चुका है। तो बहनों आप समझ ही गई होंगी कि हमारी सबकी चिंता आज बच्चों को लेकर क्या है कि बच्चों का बढ़ता

0: स्क्रीन टाइम।
1: वीना, आपने बहुत अच्छा आज टॉपिक ये लिया है। आजकल ना वैसे भी कई घरों में सुबह उठते ही बच्चे सबसे पहले, या लगभग ये कहूँ कि सभी घरों में बच्चे सुबह उठते ही सबसे पहले पूछते हैं कि मम्मी मेरा मोबाइल फोन कहाँ है।
0: बिल्कुल।
1: पहले बच्चे सखियों गेंद के पीछे, पतंग के पीछे, लुका छुपी और साइकिल के पीछे भागते थे, आज वे स्क्रीन पर दौड़ रहे हैं।
0: सही कहा, क्योंकि एक बात तो हम सभी ने ये महसूस भी की है कि जब बच्चे छोटे होते हैं, जब बच्चे जैसे हम कह सकते हैं 1 साल के 1.5 साल के, और जब वो रोते हैं या किसी चीज को लेकर परेशान करते हैं, तो हम उन्हें चुप कराने के लिए हम उन्हें मोबाइल दे देते हैं, और या खाना नहीं खाते हैं तो उनको मोबाइल दिखा के हम उन्हें खाना खिलाते हैं। लेकिन जब ये धीरे धीरे ये जो आदतें हैं मोबाइल की, वो उनकी जीवन में शामिल हो जाती है और उनकी एक आदत सी बन जाती है।
1: बिल्कुल, और ये आदत धीरे धीरे लत में बदल जाती है। पता ही नहीं चलता सखियों कि ज्यादा स्क्रीन देखने से आंखों में कम बच्चों के जलन शुरू हो जाती है, सिर दर्द शुरू हो जाता है, नींद की कमी, पढ़ाई में मन नहीं लगना या जी चुराना, और स्वभाव में चिड़चिड़ापन जैसी बहुत सी समस्याएं हम धीरे धीरे आजकल अपने बच्चों में देख रहे हैं।
0: लेकिन सखियों, इसका मतलब ये नहीं है कि सारा दोष मोबाइल का ही है और मोबाइल ही हमारा दुश्मन है। इस दुश्मन को हमने खुद ने न्योता दिया है और हमने खुद ने बच्चों पर इसको हावी होने दिया है। बहनों, अगर सही समय, सही उद्देश्य और सीमित उपयोग के साथ अगर इसे सीखने का माध्यम बना ले, तो ये बहुत ही हमारा एक अच्छा साथी भी बन सकता है।
1: बिल्कुल, अगर बच्चा आधा घंटा मोबाइल पर पढ़ाई करे और फिर 1 घंटा खेल ले, तो उसका शारीरिक विकास भी होगा और साथ में बिना उसका मानसिक विकास ना, दोनों अच्छे से होंगे।
0: बिल्कुल संध्या, तुमने सही बात कही, क्योंकि हम बच्चों हर चीज का हम अपने जीवन में सखियों से भी कहते हैं और हम खुद भी यही बातें करते हैं कि हमें हर चीज का नकारात्मक पहलू नहीं बल्कि सकारात्मक पहलू देखना चाहिए। मोबाइल की कई कमियां हैं, वो बच्चे उसको ज्यादा देखते हैं या बच्चों पर ये हावी हो रहा है, लेकिन इसका सकारात्मक पहलू ये है कि आज के समय में मोबाइल है वो पढ़ाई के लिए और जानकारी का एक अच्छा साधन भी बन गया है, बस जरूरत है इसके संतुलित उपयोग की।
1: सखियों, सबसे पहले ना घर में मोबाइल का एक समय तय कर ले आप सभी। पढ़ाई, भोजन और सोने से पहले मोबाइल बिल्कुल भी हम खुद भी ना देखें और बच्चों को भी ना दें।
0: और दूसरा कि बच्चों को खेलने, चित्र बनाने, किताबें पढ़ने, जिसमें बच्चों की रुचि हो, बागवानी में या संगीत में, जैसी भी गतिविधियां हैं, अपने बच्चों को व्यस्त रखें। अगर वो व्यस्त होंगे और उन्हें अच्छे मजेदार विकल्प मिलेंगे, तो वो मोबाइल अपने आप ही उनका कम हो जाएगा।
1: और सबसे जरूरी बात, माता पिता भी मोबाइल का सीमित उपयोग करें, क्योंकि बच्चे वही सीखते हैं जो वो है घर में या हम सभी को करता दिखते हैं।
0: तुम्हारी इस बात पर मुझे एक छोटी सी कहानी याद आ रही है ना, कि जैसे तुमने बहनों को कहा कि बच्चों, माता पिता को भी मोबाइल कम देखना चाहिए, है ना। तो एक छोटी सी कहानी है कि एक माता है, वो अपने बच्चे को महात्मा गांधी जी के पास लेके जाती है और उन्हें कहती है कि आप इसे मिठाई की आदत छुड़वा दीजिए, ये बहुत मीठा खाती है और ये बहुत बुरी आदत है, इसके पेट में दर्द रहता है, इसके दांत में दर्द रहता है, तो आप इसके आइडल हो, तो आप इसे समझाओगे तो ये इस चीज को जरूर मान जाएगी। तो गांधी जी एकदम से सहम जाते हैं, चुप रोकते हैं और माता जी को कहते हैं कि आप बच्चे को 1 हफ्ते के बाद मेरे पास लेके आइए। तो माता जी कहती है ठीक है, वो बच्चे को घर ले जाती है और 1 हफ्ते के बाद वापस लेके आती है, और गांधी जी उन्हें अपने पास बिठाते हैं और उन्हें समझाते हैं कि बेटा, मीठा आपको नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ज्यादा मीठा खाना एक बुरी आदत है, इससे आपका मतलब दांत भी खराब होंगे, आपका पेट भी खराब होगा, ये नहीं करना चाहिए। तो माता जी बड़ी आश्चर्यचकित हो जाती है और गांधी जी से थोड़ी सी नाराजगी जताते हुए कहती है कि ये इतनी सी तो बात समझानी थी, तो आप इसको 1 हफ्ते पहले ही समझा देते, इसके लिए आपने इतना समय क्यों खराब किया, आप इतने समझदार हो और आपने इसका 1 हफ्ता खराब कर दिया। तो गांधी जी ने कहा माता जी को मुस्कुराते हुए कि मैं 1 हफ्ते पहले इसको इसलिए नहीं समझाया क्योंकि 1 हफ्ते पहले मैं खुद भी मीठा बहुत ज्यादा खाता था, तो 1 हफ्ते में मैंने अपनी इस आदत का सुधार किया है, फिर मैंने इस बच्चे को ज्ञान दिया है। वैसे ही ये बात हमारे ऊपर भी लागू होती है, अगर हम खुद भी ज्यादा मोबाइल देखेंगे और बच्चों को कहेंगे कि बेटा मोबाइल मत देखिए, हम खुद उसका ज्यादा यूज करेंगे और बच्चों को मना करेंगे, तो बच्चों को लगेगा कि शायद ये ऐसे ही कह रहे हैं। अगर हम खुद नहीं देखेंगे और बच्चों को कहेंगे कि नहीं देखना है, तो इसका इफेक्ट पड़ेगा, तो बच्चे वही बात सुनेंगे जो देखेंगे, है ना।
1: बिल्कुल, बच्चे वही सीखते हैं सखियों, जो हमारा आचरण होता है उसे ज्यादातर बच्चे देखकर सीखने वाली चीजें ज्यादा जल्दी से अडॉप्ट कर लेते हैं। लेकिन सखियों, एक बहुत ही अच्छी सी बात है कि अगर हम भी खुद भी ये सब फोन साइड में रख के अगर अपने बच्चों के साथ ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत करेंगे, तो बच्चों से हम जो एक भावनात्मक जुड़ाव है वो बहुत ज्यादा और ज्यादा गहरा हो जाता है। बच्चे हमारे हैं, हमारा परिवार है, लेकिन जो जुड़ाव होता है ना, जिसकी आजकल कहते हैं कि जो दूरियां आती जा रही है मोबाइल की वजह से, वो कम होती है। आप आपस में और ज्यादा गहरे

0: रिश्ते हो जाते हैं, साथ ही आपका खुद का स्वास्थ्य भी तो उतना अच्छा हो जाता है, और मानसिक जो कहते हैं फोन देखने से ना दिमाग सुस्त हो जाता है, है ना?
1: बिल्कुल,
0: ये चीज हम सभी ने महसूस की है। तो सुस्ती को
1: बहनों आज हम एक छोटा सा संकल्प लेते हैं कि रोज एक घंटा जो पूरा परिवार बिना मोबाइल के साथ बैठेगा, साथ में बातें करेगा और साथ में मुस्कुराएगा, ये एक छोटा सा संकल्प लेते हैं। क्योंकि बहनों बचपन दोबारा नहीं आएगा, आज हम बच्चों को समय देंगे तो कल वही बच्चे जीवन भर रिश्तों की अहमियत को समझेंगे, और हम समझ रहे हैं आपके समय की अहमियत को और आपके मनोरंजन की अहमियत को, इसीलिए सुनाते हैं आपको ये प्यारा सा गीत।

0: महिला महिला जगत में बात कर रही हैं तो हम बात करेंगे महिलाओं से जुड़ी ही, है ना। कुछ महिलाएं घर पर बैठी हैं और वो परेशान हो जाती हैं कि हम काम कैसे कर सकते हैं। तो आप काम और गृहस्थ को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, व्यवस्थित कर सकते हैं, इसीलिए हम लेकर आए हैं आपके लिए इसी से जुड़ी हुई वार्ता सुनाते हैं आज आपको, जिसका विषय है कामकाजी महिलाएं, गृहस्थी और काम में सामंजस्य। और वार्ताकार है श्रीमती निर्मला शर्मा।
1: बहनों, समय के साथ साथ भारतीय समाज का ढांचा भी बदला है। आज महंगाई के युग में औरत मात्र गृहिणी बनकर रहे तो आर्थिक स्वतंत्रता कम हो सकती है। विकास के साथ साथ हमारी आवश्यकताएं भी बढ़ी है। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए महिलाओं का पुरुष के साथ साथ काम करना भी जरूरी हो गया है। आज के समय में बच्चों की महंगी पढ़ाई, लग्जरी सामानों की आवश्यकता और अन्य कारणों से पति पत्नी दोनों का काम करना जरूरी सा हो गया है। इससे भी अधिक आज के समय में महिलाओं ने शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। इस कारण आज नौकरी करने वाली महिलाओं की संख्या में भारी बढ़ोतरी हुई है। आज समाज की सोच में भी अंतर आया है। पूर्व में जहां कामकाजी महिलाओं को संदेह की दृष्टि से देखा जाता था, आज समाज उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि समाज में महिला की आर्थिक स्वतंत्रता और नौकरी करने को मान्यता दे दी है। यह सब क्यों हुआ, आइए पहले इसे जानने का प्रयास करते हैं। दरअसल पूरे समाज की सोच करियर ओरिएंटेड हो गई है। आज समाज में लड़कों के साथ साथ लड़कियों को भी करियर से जुड़ी शिक्षा देने के लिए कंजूसी नहीं की जाती है। ऐसे में भारत में बड़ी संख्या में लड़कियां व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त कर रही है। इतनी शिक्षा के लेने के बाद वह घर पर ही रहे और चूल्हे चौके में उलझ जाए तो उनकी शिक्षा बेमानी साबित होगी। महिलाओं को रोजगार से जोड़ने की सरकार की पहल ने भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज नौकरीशुदा महिला को हेय दृष्टि से नहीं देखा जाता है और न ही उनकी कमाई को हीन समझा जाता है। बहनों, ये बात भी है कि भारत जैसे प्रगतिशील देश में जितना मानवीय श्रम बढ़ेगा उतना ही देश विकास की दौड़ में आगे को बढ़ेगा। ऐसे में आधी आबादी की उपेक्षा कर देश की प्रगति का सपना देखना बेमानी सा लगता है। आज किसी भी क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी नहीं हो ऐसा नहीं है। हवाई जहाज उड़ाने से लेकर सेना की कठिन तम कार्य क्षेत्र में महिलाएं अपनी भूमिका बखूबी निभा रही हैं। खैर, बात कोई भी हो, यह विवाद लंबे समय से कायम है कि कामकाजी महिला अपने घर के साथ सही न्याय नहीं कर पाती। लगभग तभी से जब बहुत कम स्त्री

अपनी आर्थिक आत्मनिर्भरता के बारे में सोचती थी या किसी व्यवस्था के तहत अपना परिवार चलाने के लिए घर से बाहर निकलकर धन अर्जित करती थी। आज जब हर दूसरी महिला स्वयं सिद्धा होना चाहती है, तब भी यह प्रश्न कायम है, क्या नौकरी के साथ घर चलाया जा सकता है। कुछ अतिरिक्त उत्साही और सक्षम महिलाओं के तपाक से उत्तर मिलते हैं, हाँ हाँ क्यों नहीं। कुछ महिलाएं कहती है, हाँ मुश्किल तो होती है पर चलाना पड़ता है। खैर प्रश्न कोई भी हो, इस बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता कि कामकाजी महिलाओं को अतिरिक्त काम करना ही पड़ता है, लेकिन कामकाजी होने से महिला अपनी गृहस्थी से मुख नहीं मोड़ सकती। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि यदि आप नौकरी करती हैं, तो उस नौकरी की अपनी मांग और जिम्मेदारियां हैं। अपना घर तो अपने आप में एक फुल टाइम जॉब है, कैसे सामंजस्य हो, दोनों मोर्चों में समन्वय कैसे रखा जाए। कुछ छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखें तो कामकाजी बहनें दोनों मोर्चों में अपनी भूमिका बखूबी निभा सकती है। यदि आप कामकाजी हैं या कामकाजी महिला बनना चाहती हैं, तो आपको कुछ बातें अपने जहन में रखनी चाहिए। यदि हम कामकाजी महिला नहीं है और भविष्य में कामकाजी बनना चाहती हैं, तो सबसे पहले हमें इतना आत्मविश्वास होना चाहिए कि हम गृहिणी होने के साथ साथ अपनी नौकरी को भी बखूबी निभा सकती हैं। यानी हमें शारीरिक और मानसिक रूप से अपने काम को मजबूत अपने आप को मजबूत करने की आवश्यकता होती है। जब तक आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वयं को बहुत मजबूत नहीं बना लेती, तब तक आपका आत्मविश्वास डगमगाता रहेगा। ऐसे में सामंजस्य नहीं बैठेगा और अनावश्यक तनावों से अपने आप को ग्रसित कर लेंगी। लेकिन इतना आत्मविश्वास हो तभी इस दिशा में जाना चाहिए। स्त्री सुलभ ईर्ष्या हम महिलाओं का मूल स्वभाव है। जॉब करने के मामले में कभी कभी ऐसा भी होता है, हम बहनें दूसरों की देखा देखी करती हैं, देखा देखी में जबरदस्ती कामकाजी बनने को उतारू भी होती हैं। परंतु बहनों हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें कोई भी जॉब लेने से पहले उसके आगे पीछे की पूरी जांच कर लेनी चाहिए। सीधी बात है कि हमें अपनी प्रतिष्ठा के विरुद्ध कोई भी काम नहीं करना है। आप पूरे परिवार की सहमति से ही काम करें। अगर विवाह पूर्व से जॉब में हैं, तो इसके लिए अपने आगामी परिवार की सहमति ले लें। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि विवाह पूर्व कामकाजी महिला का विवाह के बाद परिस्थितियों के चलते काम करना संभव नहीं हो पाता है, लेकिन वह अपनी आर्थिक स्वतंत्रता की जिद नहीं छोड़ पाती, जिससे अनावश्यक कलह पैदा होता है और ऐसा होना काम और परिवार दोनों को प्रभावित करता है। ऐसी स्थिति में बड़े धैर्य से काम लेते हुए आप अपने परिजनों को समझाइए, उन्हें अपनी जॉब के बारे में खुलकर बताइए और यह समझाने का प्रयास करें कि आपके कामकाज से उनकी पारिवारिक जिंदगी में कोई दखल पैदा नहीं होगा, वरन परिवार में आर्थिक मजबूती रहेगी। अगर इस तरह की समस्या कम समय के लिए हो, तो ऐसे में हम छुट्टी लेकर भी दोनों भूमिकाओं को बखूबी निभा सकती हैं। चलो ये बातें हुई कि आप यदि कामकाजी बनना चाहती हैं, तो प्रथम दृष्टया आपको क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है। अब जरा उस पर भी बात कर लें कि यदि आप कामकाजी हैं, तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आप गृहस्थी और अपनी जॉब के साथ समन्वय बिठा सके। यदि आप कामकाजी महिला हैं, महत्वपूर्ण बात समय नियोजन की आती है। अपनी नौकरी के समय को कम या ज्यादा करना हमारे हाथ में नहीं है। वैसे भी नौकरी पर रोज लेट जाना या वहां से जल्दी घर आ जाना आपके करियर और आपकी छवि पर विपरीत प्रभाव डालता है। साथ ही सहकर्मियों और बॉस की अनावश्यक ताने भी सुनने पड़ सकते हैं। ऐसे में अब हमारे पास यही उपाय बचता है कि घर के काम को समय से करें। इसके लिए आप अपने पतिदेव व बच्चों को उठने के बाद बिस्तर समेटना, अपने कपड़े प्रेस करना, अपने बैग या अन्य सहायक सामानों को स्वयं संभालना इत्यादि छोटे छोटे काम स्वयं करने की आदत दें। इससे आपका काफी समय बच सकता है। एक काम यह भी हो सकता है कि यदि आपकी आर्थिक स्थिति सहयोग करती है, तो आप घर के कुछ कामों के लिए सेवक या सेविका रख सकती है। यदि संभव हो सके तो समय बचाने के लिए आप अपने उपयोगी उपकरण भी खरीद सकती हैं। इससे हमारे समय की बचत हो सकती है। यानी बहनों समय का नियोजन बहुत महत्वपूर्ण है। यदि इसमें हम

0: सफल रहती हैं तो हम कई तरह के अनावश्यक तनावों से मुक्त हो जाती हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कामकाजी बहनें अपने नौकरी को अपने ऊपर इतना हावी कर लेती हैं कि न चाहते हुए भी वे घर के कामों की उपेक्षा करने लगती हैं। बहनों, इस बात का ध्यान रखें कि अपने घर के कामों की उपेक्षा न करें, वरन उन्हें प्राथमिकता दें। हमें अपने जॉब और घर में इतनी प्राथमिकताओं का निर्धारण करना पड़ेगा। यदि हम अपने नौकरी के काम का ज्यादा तनाव पाल लें तो हमारे व्यवहार में चिड़चिड़ापन आ जाएगा। ऐसे में तनाव के कारण बहुत अधिक थकान महसूस होगी। अंततः यह चिड़चिड़ापन हमारे अपने परिवार पर ही निकलता है। साथ ही थकान के कारण अपने घर के कामों की उपेक्षा या पेंडिंग होने लगती है। इसलिए जरूरी है कि हम घर और ऑफिस के कामों में संतुलन बैठाएं ताकि दोनों ही जगह पेंडेंसी नहीं हो। बहनों, हम नौकरी अपने परिवार के लिए करते हैं, इसलिए एक बात और ध्यान रखने की है कि कभी भी अपनी इस आर्थिक सबलता और स्वतंत्रता को उचित दिखावा या अभिमान न करें। ऐसा करने से आपके सगे संबंधी और आपका अपना परिवार आपके खिलाफ हो सकता है। यदि ऐसा होता है तो आपके पारिवारिक संबंधों में अनावश्यक तनाव हो सकता है। बहनों, कामकाजी महिलाएं निश्चित रूप से अपने घर परिवार को अन्यों की तुलना में समय कम दे पाती है। समय कम देना हमारी मजबूरी है, परंतु इसकी क्षतिपूर्ति अपने स्नेहपूर्ण व्यवहार से कर सकती हैं। कभी कभी हम अपनी थकान की वजह से पारिवारिक और मित्रों के सामाजिक उत्सवों में भाग नहीं लेते। ऐसे में हमारे ऊपर घमंडी होने की छाप भी लग सकती है। अतः बहनों, यह ध्यान रखें कि इस तरह के क्रियाकलापों से भागे नहीं और न ही अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और मेहमानों की उपेक्षा करें। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जॉब में रहने के कारण आपके परिवार के लोग कतिपय मुद्दों या आपके साथ काम करने वाले लोगों के प्रति संशय की अवधारणा बना ले। ऐसे में पारिवारिक जीवन में गहरे मतभेद बन सकते हैं। इस तरह की गलतफहमियों को या तो बंद ही न दे या फिर समय पर दूर कर दें। बहनों, एक बात और ध्यान रखें कि अपने साथ काम करने वालों तथा सीनियर्स के साथ सही संतुलन तथा मधुर व्यवहार बना रखें। किसी को अनावश्यक छूट न दें। अपने व्यवहार में मधुरता के साथ आवश्यक कठोरता भी रखें। ऑफिसों व कार्यस्थलों यदि आपके साथ गलत व्यवहार हो तो उस पर कोताही नहीं बरतें। आपकी चुप्पी असामाजिक तत्वों को बढ़ावा दे सकती है। ऐसी घटनाओं का जिक्र अपने परिवार से कर लें ताकि आपको कभी अनावश्यक संशय की दृष्टि से नहीं देखा जा सके। बहनों, इस बात के साथ साथ आपके परिवार का दायित्व भी है कि वे आपसे पूर्ण उदारता रखें, सहयोग करें और विश्वास रखें। हाँ, एक बात और कि गृहस्थी और जॉब के चक्कर में हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान भी रखें। बहनों, इस मामले में हमें अत्यधिक सतर्क रहना चाहिए। पौष्टिक भोजन, नियमित व्यायाम के बगैर हम गृहस्थी और नौकरी के कामों को मजबूती से नहीं कर पाएंगे। इस बात का विशेष ध्यान हमें रखना है। बहनों, कामकाजी महिलाओं के लिए आदर्श स्थिति यह है कि वह अपने दाम्पत्य जीवन, अपने बच्चों, रिश्तेदारों और समाज और अपने कार्यक्षेत्र सहयोगियों को समान रूप से संतुष्ट रखें। हालांकि ऐसा करना अत्यंत दुष्कर कार्य है। आखिर दो मोर्चों को एक साथ संभालना कोई आसान काम तो नहीं। फिर भी हिम्मत नहीं हारें। पूर्ण आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यस्थल और घर पर काम करें। बहनों, नौकरी के साथ गृहस्थी में सामंजस्य रहेगा तभी आप सुखी रहेंगी, स्वस्थ रहेंगी और आर्थिक आजादी का आनंद ले सकेंगी।
1: सखियों, अभी आपने सुनी वार्ता जिसका विषय था कामकाजी महिला गृहस्थी और काम में सामंजस्य, और वार्ताकार थी श्रीमती निर्मला शर्मा। अब वक्त हो चला है हमारी भारतीय सेना से संबंधित गीत सुनने का। जी हाँ, कैलाश खेर ने अपनी आवाज़ में बहुत ही खूबसूरत सा गीत गाया है हमारे देश के जवानों के लिए, हमारे लिए और हमारी देशभक्ति के लिए।
2: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय

0: सेना जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारत।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

सखी वो मेले जगत में हर तरह की बातें करते हैं, घर परिवार की, बच्चों की और जानकारी की। तो हमारा ये भी एक पार्ट होता है कार्यक्रम का कि हम स्वास्थ्य के बारे में भी बात करें। तो सखियों, आज एक ऐसी ही आजकल की एक ऐसी ही समस्या है जो सभी में आम होती जा रही है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ यूरिक एसिड की। अक्सर हमें लगता है कि ये पुरुषों की बीमारी है, लेकिन महिलाएं भी इसके मामले में भी इसके मामले तेजी से बढ़ रही है।

0: आज हम जानेंगे कि यह क्या है, इसे कैसे पहचाने और अपनी रसोई से इसे कैसे हम नियंत्रित कर सकते हैं।
1: तो सबसे पहले समझते हैं कि जो यूरिक एसिड है वो हमारे शरीर में बनता कैसे है। सखियो, जब हम यूरिन युक्त आहार लेते हैं तो हमारे शरीर उसे तोड़कर यूरिक एसिड बनाता है। अगर किडनी इसे सही से शरीर से बाहर न निकाल पाए तो यह जोड़ों में क्रिस्टल बनकर जमा होने लग जाते हैं।
0: अब बात करते हैं सखियों इसके लक्षणों की, जिन्हें अनदेखा हम नहीं कर सकते। जैसे पैरों के अंगूठों में या जोड़ों में आपको अचानक से तेज दर्द शुरू हो जाए और आपके पैरों में अंगूठों में सूजन आ जाए या जोड़ों में अकड़न महसूस हो, होना भी ना इसका एक लक्षण है, खासकर सुबह उठते समय। या फिर अगर यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और बार बार यूरिन आने लगता है या यूरिन के वक्त आपको जलन होती है, तो ये एक बहुत बड़ा संकेत है जिससे आपको पता लगेगा कि आपका यूरिक एसिड बढ़ गया है।
1: अब सखियो, हम ध्यान दें कि अगर खान पान में हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए कि जिससे कि हमारी हम इस बीमारी से बच सकते हैं, तो हमें अरहर की दाल, राजमा, छोले और सोयाबीन का उपयोग सीमित करना चाहिए।

0: और बार बार यूरिन आने लगता है या यूरिन में यूरिन के वक्त आपको जलन होती है, तो ये एक बहुत बड़ा संकेत है जिससे आपको पता लगेगा कि आपका यूरिक एसिड बढ़ गया है।
1: अब सखियों, हम ध्यान दें कि अगर खान पान में हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए कि जिससे कि हमारी हम इस बीमारी से बच सकते हैं, तो हमें अरहर की दाल, राजमा, छोले और सोयाबीन का उपयोग सीमित करना चाहिए। इनमें प्यूरिन अधिक होता है और बाजार में मिलने वाले डिब्बा बंद जूस और कोल्ड ड्रिंक में भी से भी हमें बचना चाहिए, क्योंकि इनमें फ्रुक्टोज होता है जो कि हमारे शरीर में यूरिक एसिड को तुरंत बढ़ावा देता है।
0: अगर सखियों आपको यूरिक एसिड की परेशानी है तो खट्टी चीजें भी आपको बिल्कुल नहीं खाने चाहिए, इन्हें खाने से बचें। और अब बात आती है अमृतमयी पानी की। जी हाँ, पानी सबसे जरूरी है, खूब पानी पिए। कम से कम आप 3-4 लीटर पानी तो जरूर पिए, क्योंकि पानी शरीर से एसिड को बाहर निकालने में मदद करता है। रोजाना वॉक करें, ओट्स खाएं, ब्राउन राइस खाएं, फाइबर से युक्त भोजन का सेवन जितना ज्यादा हो उतना करें।
1: तो सखियों, सुबह खाली पेट गुनगुने पानी में थोड़ा सी अजवाइन डालकर पीने से भी आपको इससे बहुत फायदा मिलेगा। सही समय पर खान पान बदलकर हम इस समस्या को जड़ से खत्म कर सकते हैं और ज्यादा दर्द होने पर हमें डॉक्टर से सलाह भी अवश्य ले लेनी चाहिए। तो बहनों, अपना और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। जब तक हम सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

0: सखियों, आज कार्यक्रम में बहुत सी बातें हमने आपसे की और बहुत सी जानकारियां आपके लिए लेकर आए। आशा करते हैं कि आपको सभी जानकारियां पसंद आई होंगी। इसी के साथ अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, तो संध्या ओझा को
1: और वीणा ओझा का स्वीकार कीजिए प्यार भरा नमस्कार।

महिलाओं ने सुना अपना कार्यक्रम महिला जगत। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलो हर्ट्ज और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत का पहला निजी कंपनी द्वारा विकसित ऑर्बिटर रॉकेट विक्रम 1 श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रक्षेपण के लिए स्काईरूट एयरोस्पेस की टीम को बधाई दी और इसे भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक महत्वपूर्ण क्षण बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की भारत की नीति सिर्फ एक बयान नहीं है बल्कि दृढ़ कार्रवाई का सूचक भी है। पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में कल तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट और पीवी सिंधु टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। भारत का ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 सफलतापूर्वक आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया है। ये प्रक्षेपण आज दोपहर 12:05 पर हुआ। इसे हैदराबाद की एक निजी कंपनी स्काईरूट एयरोस्पेस ने बनाया है। एक रिपोर्ट।
1: भारत में निजी क्षेत्र की कंपनी स्काईरूट एयरोस्पेस द्वारा अंतरिक्ष में पेलोड स्थापित करने की क्षमता भी हासिल कर ली है। भारत ये उपलब्धि हासिल करने वाला विश्व का तीसरा देश बन गया है। विक्रम 1 भारत का पहला निजी तौर पर विकसित कक्षीय प्रक्षेपण यान है। इसे हैदराबाद स्थित एयरोस्पेस स्टार्टअप स्काईरूट एयरोस्पेस द्वारा डिजाइन और विनिर्मित किया गया है। आगमन मिशन के अंतर्गत विकसित ये रॉकेट छोटे उपग्रहों के लिए किफायती प्रक्षेपण सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर बनाए गए विक्रम 1 में 3 ठोस प्रणोदक चरण और 1 तरल ईंधन वाला रमन इंजन लगाया गया है। यह अंतरिक्ष की सबसे निचली कक्षा में पेलोड स्थापित करने में सक्षम है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस उपलब्धि के लिए स्काईरूट एयरोस्पेस को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह ऐतिहासिक उपलब्धि देश के युवाओं को आगे आकर नवाचार में योगदान देने के लिए प्रेरित करेगी।
2: भारत और पूरी टीम बहुत बहुत बधाई। दो काम किए हैं, एक तो आसमान में नए पौधे गाड़ दिए हैं और दूसरा जमीन में भी उस रूप को आपने मजबूती दी है जो देश के नौजवानों को आगे आने की प्रेरणा देगी। और मुझे ये सफलता के लिए तो आनंद होना ही होना था, लेकिन आप लोगों ने जिस कमिटमेंट के साथ मेहनत की, मैं आपको आपकी पूरी टीम को इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए और महत्वपूर्ण सफलता के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने विक्रम 1 की टीम को उनसे मिलने का निमंत्रण भी दिया। उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये ऐतिहासिक उपलब्धि भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक नया अध्याय जोड़ती है। उन्होंने कहा कि निजी अंतरिक्ष क्षेत्र की बढ़ती ताकत स्वदेशी नवाचार को बढ़ावा देने और वैश्विक अंतरिक्ष शक्ति के रूप में भारत की बढ़ती शक्ति का प्रतीक है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ने कहा कि यह अभियान भारत में अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में निजी कंपनियों के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि उपलब्धि अंतरिक्ष अन्वेषण में वैश्विक शक्ति के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है।
3: Congratulations in space for facilitating
1: इन स्पेस और इसरो को इस शानदार सार्वजनिक निजी भागीदारी और सफल प्रक्षेपण के लिए बहुत बहुत बधाई। इस सहयोग को अनुकूलित करने के लिए इसरो को बधाई। आज के सफल प्रक्षेपण ने वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में भारत की स्थिति को और मजबूत कर दिया है।
3: इन द हाईली कॉम्पिटिटिव एरिना ऑफ स्पेस इकोनॉमी।
0: केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि उपलब्धि भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में हुए सुधारों, स्वदेशी नवाचार और उद्यमशीलता की भावना की मजबूती को दर्शाती है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज वर्चुअल माध्यम से नई रामनगर देहरादून एक्सप्रेस रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस नई रेल सेवा के शुरू होने से उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश

0: के बीच रेल संपर्क को और मजबूती मिलेगी। ये रेलगाड़ी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान आने वाले पर्यटकों और वन्य जीव प्रेमियों के साथ साथ रामनगर के निकट स्थित मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी लाभदायक होगी। रेल मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में कहा कि ये रेलगाड़ी सप्ताह में दो दिन संचालित होगी और उत्तराखंड के कुमाऊं तथा गढ़वाल क्षेत्रों के बीच बेहतर रेल संपर्क उपलब्ध कराएगी।
1: कुमाऊं और गढ़वाल उत्तराखंड के दो बहुत ही मजबूत पोल्स हैं। इन दोनों पिलर्स को जोड़ने वाली ये आज की गाड़ी है जो कुमाऊं और गढ़वाल को जोड़ेगी। इसका ये एक नया सेतु बनेगी कुमाऊं और गढ़वाल के बीच में, और इसके लिए प्रयास लगातार होता रहा है। और आज इन प्रयासों का एक जो फल निकला है वो ये है कि आज कम से कम हफ्ते में दो दिन ये गाड़ी स्टार्ट हो पा रही है। बहुत अच्छी बात है। कुमाऊं के लोग आराम से गढ़वाल जा पाएंगे, देहरादून कैपिटल तक जा पाएंगे और कई तरह के जो काम राजधानी में ही होते हैं वो सब यहाँ पर कर पाएंगे।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर और हमारे वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की भारत करने थे केवल एक बयान मात्र नहीं है, बल्कि ये आतंकवाद के खिलाफ भारत की दृढ़ कार्रवाई का सूचक भी है। नई दिल्ली में आज फोर्सेस फर्स्ट कॉन्क्लेव में श्री सिंह ने कहा कि भारत न केवल अपनी सीमाओं पर ही आतंकवादियों पर हमला करेगा बल्कि आवश्यकता पड़ने पर उनके ठिकानों में घुसकर भी उन्हें मारेगा।
2: आतंकवाद के खिलाफ भी हमारी गवर्नमेंट ने पूरी दुनिया के सामने अपने बदले हुए नजरिए को स्पष्ट किया है। आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारे लिए केवल एक स्टेटमेंट नहीं है बल्कि लाइन ऑफ एक्शन है। आतंकवाद के खिलाफ हम दरवाजे पर नहीं बल्कि घर में घुसकर मारेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सारी दुनिया ने यह देख लिया, हमारी सेनाओं का पराक्रम तो हमेशा ही अद्भुत रहा है।
0: श्री सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर तकनीकी युद्ध का एक उल्लेखनीय उदाहरण है।
2: ऑपरेशन सिंदूर अपने आप में टेक्नोलॉजिकल वारफेयर का एक शानदार नमूना था। इस ऑपरेशन में आकाश तीर, आकाश मिसाइल सिस्टम और ब्रह्मोस जैसी एडवांस्ड मिसाइल सिस्टम के साथ साथ अनेक लेटेस्ट इक्विपमेंट का भी उपयोग किया गया। इसने साबित किया है कि हमारी सेनाएं बदलाव को समझ भी रही हैं और उसे आत्मविश्वास के साथ उसका उपयोग भी कर रही हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता भारत के उद्योगों पर विश्वास का प्रमाण है।
0: श्री सिंह ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत के रक्षा तंत्र को मजबूत करने को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बनाया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने देश की रक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आयात पर निर्भरता को कम करने का भी संकल्प लिया है।
2: नई डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर के माध्यम से बाई इंडियन आईडीडीएम जैसी व्यवस्था को भी प्राथमिकता दी गई। सेनाओं के आधुनिकरण के लिए निर्धारित बजट का 75% भाग भारतीय उद्योगों से खरीद के लिए सुरक्षित किया गया। इस साल हम नया डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर लेकर आ रहे हैं जिसके कारण देश में डिफेंस प्रोडक्शन को एक नई रफ्तार मिलेगी और एक नई ताकत भी मिलेगी।
0: गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित सीमा सुरक्षा बल की 18वीं बटालियन की जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे सीमा सुरक्षा बल के जवानों से संवाद करेंगे, प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे और पौधारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा बल से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। 3 दिन के दौरे पर श्री शाह आज सिलीगुड़ी में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का संयुक्त रूप से शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं पर 16,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग की अपील करेगी। संसद का मॉनसून सत्र सोमवार से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित किए जाने की संभावना है। पनामा के विदेश मंत्री हाविएर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केस 5 दिन की यात्रा पर कल भारत आ रहे हैं। वे सोमवार को केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और हैदराबाद हाउस में विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर से मिलेंगे। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में

0: ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लगभग 2030 किलोग्राम गांजा जब्त किया है। इस कार्रवाई में दो अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने करीब 4,25,00,000 रुपए मूल्य के मादक पदार्थ जब्त किए हैं। उनके खिलाफ एनजीपीएस अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस आरोपियों से तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के बारे में पूछताछ कर रही है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सर गारफील्ड सोबर्स के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने शोक संतप्त परिवार और दुनिया भर में क्रिकेट जगत के उनके प्रशंसकों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सूचना और प्रसारण तथा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को उनके जन्मदिवस पर शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि श्री वैष्णव देश के प्रमुख बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ बनाने में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं, जो विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देगा। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कार्यालय ने भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के सहयोग से युवा शोधार्थियों के लिए एक देशव्यापी शोध लेख प्रतियोगिता आयोजित करने की घोषणा की है। ये पहल 28 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित की जाएगी। इसका उद्देश्य महालेखा परीक्षक की ऑडिट रिपोर्टों के आधार पर छात्रों को मौलिक शोध के लिए प्रोत्साहित करते हुए सार्वजनिक वित्त, सुशासन, वित्तीय संघवाद, सामाजिक क्षेत्र के व्यय और सतत विकास जैसे विषयों पर शोध एवं सार्थक विमर्श को बढ़ावा देना है। संचार मंत्रालय के डाक विभाग ने इनोवेट इंडिया माईगव मंच पर इंडिया पोस्ट शुभंकर डिजाइन प्रतियोगिता शुरू की है। प्रतिभागियों को माईगव पोर्टल के माध्यम से एक मौलिक शुभंकर डिजाइन, उसके लिए उपयुक्त नाम और संक्षिप्त अवधारणा पत्र जमा करना होगा। प्रतियोगिता में प्रविष्टियां भेजने की अंतिम तिथि 15 अगस्त है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है और अब खेल खबरों के साथ है अक्षित वैद्यान।
1: पीवी सिंधु टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई हैं। सेमीफाइनल में सिंधु ने चीन की चेन यू फी के खिलाफ पहला सेट 21-19 से जीता। दूसरे सेट में चेन यू फी ने चोट के कारण मुकाबले से हटने का निर्णय लिया। फाइनल में पहुंचने के साथ ही पीवी सिंधु विश्व की 9वें नंबर की खिलाड़ी बन गई हैं। 31 वर्षीय सिंधु ने वर्ष 2026 की शुरुआत विश्व रैंकिंग में 18वें स्थान से की थी। महिला सिंगल्स के फाइनल में कल पीवी सिंधु का मुकाबला जापान की अकाने यामागुची से होगा। फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज फ्रांस और इंग्लैंड की टीम आमने सामने होंगी। मियामी स्टेडियम में यह मुकाबला भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 पर शुरू होगा। स्पेन से हार के बाद फ्रांस का विश्व कप अभियान समाप्त हो गया। हालांकि किलियन एम्बाप्पे ने 8 गोल और 3 असिस्ट के साथ शानदार प्रदर्शन किया है। विश्व कप का फाइनल कल रात न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में अर्जेंटीना और स्पेन के बीच खेला जाएगा। यह मुकाबला भारतीय समय अनुसार रात 12:30 पर शुरू होगा।
0: मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में कल तक मूसलाधार वर्षा तथा कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में आज कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान है। बिहार, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरलम, माहे, ओडिशा तथा पूर्वोत्तर के राज्यों में भी आज तेज बारिश की संभावना है। विभाग ने तटीय आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में कल तक अलग अलग स्थानों पर गरज चमक के साथ बिजली गिरने की भी संभावना व्यक्त की है। इस बीच दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आज गर्म तथा उमस भरा मौसम रहने का अनुमान है। ईरान ने आज कुवैत पर मिसाइलों और ड्रोन से बड़े पैमाने पर हमले किए। हमलों के बाद कुवैत ने अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया और सभी उड़ान सेवाएं निलंबित कर दी। ईरान से दागी गई मिसाइलों के कुवैती हवाई क्षेत्र में प्रवेश के बाद अधिकारियों ने लोगों को घरों के अंदर रहने तथा सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने की सलाह दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत का पहला निजी कंपनी द्वारा विकसित ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रक्षेपण के लिए स्काईरूट एयरोस्पेस की टीम को बधाई दी और इसे भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक महत्वपूर्ण क्षण बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की भारत की नीति सिर्फ एक बयान नहीं है बल्कि दृढ़ कार्रवाई का सूचक भी है। पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में कल तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट और पीवी सिंधु टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन

0: बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। दोपहर के 2:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। कार्यक्रम में पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं कुमार सानू और साधना सरगम की आवाजों में। फिल्म का नाम है जुर्म। गीत को लिखा है इंदिवन ने, संगीत दिया है राजेश रोशन ने।

कुमार सानू और साधना सरगम की आवाजों में जुर्म फिल्म का गीत अभी आपने सुना। गीत को लिखा था इंदिवर ने, संगीत दिया था राजेश रोशन ने। आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। लीजिए सुनिए कार्यक्रम के लिए प्रस्तुति उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में। फिल्म का नाम है ड्यूप्लीकेट। गीत को लिखा है जावेद अख्तर ने, संगीत दिया है अनु मलिक ने।

उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में डुप्लीकेट फिल्म का गीत अभी आपने सुना। गीत को लिखा था जावेद अख्तर ने, संगीत था अनु मलिक का। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम हम आपको सुनवा रहे हैं आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। कार्यक्रम में अगली प्रस्तुति लीजिए सुनिए, उदित नारायण और अलका याग्निक की ही आवाजों में। फिल्म का नाम है चोरी चोरी चुपके चुपके, संगीत है अनु मलिक का।

उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में आपने सुना चोरी चोरी चुपके चुपके फिल्म का ये गीत। संगीत था अनु मलिक का। आप सुन रहे हैं फिल्म गीतों का कार्यक्रम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत मोहित चौहान की आवाज में। फिल्म का नाम है दिल्ली सिक्स।

मोहित चौहान की आवाज में आपने सुना दिल्ली सिक्स फिल्म का ये गीत। आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए अगला गीत। अखिल धर्मी भानुशाली और भृगु पराशर की आवाजों में फिल्म का नाम है लुका छुपे। गीत के बोल हैं कुणाल वर्मा के, संगीत है अभिजीत वघानी का।

अखिल धनी भानुशाली और भृगु पराशर की आवाजों में गाए लुका छुपी फिल्म के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत यही समाप्त होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। दोपहर के 3 बज रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज पर हमारी पहली सभा अब यही समाप्त होती है। FM 101.6 मेगाहर्ट्ज पर हमारी सभा जारी रहेगी। ये प्रोग्राम हमारे DRM चैनल 1386 किलोहर्ट्ज पर भी उपलब्ध थे। शाम 4:58 पर अपनी दूसरी सभा के साथ हम आपकी सेवा में फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए।

0: ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोलामारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। संध्या के 5 बजने वाले हैं। हमारी आज की दूसरी सभा अब आरंभ होती है। इस सभा में सबसे पहले सुनिए हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। भारत का ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है। यह प्रक्षेपण आज आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से दोपहर 12:05 पर हुआ। इस रॉकेट का निर्माण हैदराबाद की निजी कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस ने किया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत में निजी क्षेत्र के पहले कक्षीय प्रक्षेपण यान विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण पर स्काईरूट एरोस्पेस को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि ऐतिहासिक उपलब्धि से भारत की अंतरिक्ष यात्रा में नया अध्याय जुड़ गया है। उन्होंने कहा कि ये निजी अंतरिक्ष क्षेत्र की बढ़ती ताकत स्वदेशी नवाचार को बढ़ावा देने और वैश्विक अंतरिक्ष शक्ति के रूप में भारत की बढ़ती शक्ति का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये ऐतिहासिक उपलब्धि देश के युवाओं को आगे आकर नवाचार में योगदान देने के लिए प्रेरित करेगी।
2: भारत और पूरी टीम बहुत बहुत बधाई। दो काम किए हैं, एक तो आसमान में नए पौधे गाड़ दिए हैं और दूसरा जमीन में भी उस रूप को आपने मजबूती दी है जो देश

0: आने की प्रेरणा देगी। और मुझे ये सफलता के लिए तो आनंद होना ही होना था, लेकिन आप लोगों ने जिस कमिटमेंट के साथ मेहनत की, मैं आपको, आपकी पूरी टीम को इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए और महत्वपूर्ण सफलता के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
1: श्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये अभियान भारत में अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में निजी कंपनियों के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि ये उपलब्धि अंतरिक्ष अन्वेषण में वैश्विक शक्ति के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण को भारत के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। श्री जयशंकर ने कहा कि ये प्रमाण है कि जब भारत के युवाओं के नवाचार और उद्यमशीलता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साहसिक सुधारों का समर्थन मिलता है तो क्या हासिल किया जा सकता है। गृह मंत्री अमित शाह ने भारत के पहले निजी तौर पर विकसित प्रक्षेपण यान विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण पर स्काईरूट एरोस्पेस को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि ये अंतरिक्ष को अधिक सुलभ बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि ये ऐतिहासिक उपलब्धि भारत की अंतरिक्ष यात्रा में परिवर्तनकारी अध्याय की शुरुआत है। श्री बिरला ने कहा कि विक्रम 1 के सफल के साथ भारत के निजी अंतरिक्ष क्षेत्र ने अपनी बढ़ती तकनीकी उत्कृष्टता, नवाचार और वैश्विक प्रतिस्पर्धा का प्रदर्शन किया है। संसद का मॉनसून अधिवेशन 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। इससे पहले सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग की अपील करेगी। मॉनसून अधिवेशन 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित किए जाने की संभावना है। संचार मंत्रालय के डाक विभाग ने इनोवेट इंडिया माईगॉव मंच पर इंडिया पोस्ट शुभंकर डिजाइन प्रतियोगिता शुरू की है। इसका उद्देश्य इंडिया पोस्ट के लिए ऐसा आधिकारिक शुभंकर तैयार करना है जो संगठन के विश्वास, विश्वसनीयता, सेवा और डिजिटल नवाचार जैसे मूल्यों का प्रभावी प्रतिनिधित्व करे। ये प्रतियोगिता सभी नागरिकों के लिए है। प्रतिभागियों को माईगॉव पोर्टल के माध्यम से मौलिक शुभंकर डिजाइन, उसके लिए उपयुक्त नाम और संक्षिप्त अवधारणा पत्र जमा करना होगा। प्रतियोगिता में प्रविष्टियां भेजने की अंतिम तिथि 15 अगस्त है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में तीसरे स्थान के प्लेऑफ मैच में आज फ्रांस का सामना इंग्लैंड से होगा। ये मैच देर रात 2:30 बजे अमेरिका के मियामी स्टेडियम में खेला जाएगा। पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई हैं। महिला सिंगल सेमीफाइनल में आज सिंधु ने चीन की चेन यूफी को पहले गेम में हराया। दूसरे गेम में चेन यूफी को चोट के कारण सिंधु को वॉकओवर मिला। प्रतियोगिता के फाइनल में कल सिंधु का सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोलामारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज पर और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। संध्या के 5:05 होते हैं। मध्यम पड़ती समय की चाल अलसाती सांझ में सुबह बुलंद हौसले और नई सोच और असीमित संभावना का एक नया स्वर लेकर के, जहां कड़वे मीठे सामाजिक सरोकारों के साथ गूंजेंगी मधुर संगीत की धुनें, मिलेगी सच्ची दोस्ती की महक और भविष्य को संवारने वाली हर जरूरी खबर। युवा तरंगों के सजे इस विशेष कार्यक्रम युवाणी को आज अपनी आवाज से संवार रही हैं शारदा नैन और निशा शर्मा। विचारों के इस जीवंत और बेबाक प्रवाह में आपका सभी का स्वागत है। चलिए सुनते हैं आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से कार्यक्रम युवाणी।

काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। संत कबीरदास जी का यह दोहा केवल शब्द नहीं बल्कि जीवन का ऐसा संदेश है जो हर युग में हमें जागरूक करते हैं। बीता हुआ कल लौट कर नहीं आता और आने वाला कल कैसा होगा ये कोई नहीं जानता। इसलिए जो भी करना है पूरे मन, पूरी लगन और बिना टाले आज ही करना चाहिए। इसलिए दोस्तों, समय की महत्ता को समझते हुए हम एक बार फिर हाजिर हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी लेकर। नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं आपकी दोस्त निशा शर्मा।

0: और मैं हूं आपकी दोस्त शारदा। आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। निशा, जीवन में कुछ चीजें ऐसी होती है ना जिन्हें हम खोकर भी वापस पा सकते हैं, लेकिन एक ऐसी अनमोल धरोहर भी होती है जो एक बार हाथ से निकल जाए तो फिर कभी लौट कर नहीं आती।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने शारदा, यही वो अनमोल पूंजी है जो अमीर गरीब छोटे बड़े हर इंसान को समान रूप से मिलती है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई इसकी कीमत समझ लेता है तो कोई इसे यूं ही गंवा देता है।
0: बिल्कुल सही कहा निशा, और यही अनमोल धरोहर तय करती है कि कौन अपने सपनों को साकार करेगा और कौन अवसरों को हाथ से निकल जाने देगा।
1: शारदा, अक्सर लोग कहते हैं समय ही नहीं मिलता, लेकिन सच तो ये है कि समय सबको बराबर मिलता है, दिन के पूरे 24 घंटे।
0: बिल्कुल, फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उन्हें 24 घंटों का सही उपयोग करके अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है तो कोई समय को यूं ही व्यर्थ गवा देता है।
1: दोस्तों, समय जो है वो एक ऐसी संपत्ति है जिसे ना तो खरीदा जा सकता है और ना ही खो जाने के बाद वापस पाया जा सकता है। इसलिए कहा गया है, बीता हुआ समय और निकले हुए शब्द कभी वापस नहीं आते।
0: क्या बात है निशा, और वैसे तो निशा, विद्यार्थियों के लिए समय का महत्व और भी अधिक है। यदि वे नियमित अध्ययन करें और अनुशासन बनाए रखें तो परीक्षा के समय तनाव कम होता है और सफलता मिलने की संभावना और भी बढ़ जाती है।
1: शारदा, केवल विद्यार्थी ही नहीं, हर वर्ग के लोगों के लिए समय का सही उपयोग आवश्यक है। किसान समय पर खेती करता है, डॉक्टर समय पर मरीज का इलाज करता है, खिलाड़ी समय पर अभ्यास करता है और कलाकार समय पर अपनी कला को निखारता है।
0: सही का, इतिहास गवाह है कि जिन्होंने समय का सम्मान किया है उन्होंने दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई है। सफलता कभी अचानक नहीं मिलती है दोस्तों, बल्कि समय से सही निवेश का परिणाम होती है।
1: दोस्तों, आज के डिजिटल युग में सबसे बड़ी चुनौती है समय की बर्बादी। घंटों सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करना, बिना कारण मोबाइल चलाना और अनावश्यक वीडियो देखना हमारे कीमती समय को चुपचाप निगल जाता है।
0: दोस्तों देखो, टेक्नोलॉजी बुरी नहीं है, लेकिन उसका संतुलित उपयोग बहुत ही जरूरी है। यदि हम मोबाइल का उपयोग सीखने, नई जानकारी प्राप्त करने या अपने कौशल को बढ़ने में समय का उपयोग करें तो वही टेक्नोलॉजी हमारे विकास का माध्यम बन सकती है।
1: शारदा, मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। दो मित्र थे।
0: हाँ।
1: एक हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ता था जबकि दूसरा कहता था अभी बहुत समय है। परीक्षा आई तो पहले मित्र ने आत्मविश्वास के साथ परीक्षा दी और दूसरा घबरा गया। परिणाम आया तो पहले मित्र ने उत्कृष्ट अंक प्राप्त किए और ये अंतर केवल समय के सदुपयोग का था।
0: सही है, कितनी सुंदर सीख है। वास्तव में हर दिन के छोटे छोटे प्रयास ही बड़े सपनों को साकार करते हैं।
1: शारदा, समय प्रबंधन का अर्थ केवल व्यस्त रहना नहीं है बल्कि सही कार्य को सही समय पर करना है। यदि हम पूरे दिन व्यस्त रहे लेकिन महत्वपूर्ण कार्य न करें तो वह समय का सदुपयोग नहीं कहलाएगा।
0: सही कहा निशा, हमें यह भी सीखना चाहिए दोस्तों कि ना कब कहना है। अनावश्यक कार्यों और बेवजह की चर्चाओं में समय नष्ट ना करें, बजाय अपने लक्ष्य पर ध्यान दें।
1: दोस्तों, वक्त की कीमत जिसने जानी है उसने जीवन की राह पहचानी है। हर पल को बेहतर काम में लगाओ, सफलता की मंजिल खुद ब खुद पाओ। याद रखिए दोस्तों, समय आपका सबसे बड़ा मित्र है और ये सबसे बड़ा शिक्षक भी है।

0: दोस्तों ज्ञान वो दीपक है जो जितना जलता है उतना ही अज्ञान का अंधेरा मिटाता है। तो चलिए दोस्तों, समय है अपने ज्ञान और बुद्धिमता की परीक्षा को जानने का, यानी कि क्विज टाइम का। हमारा आज का पहला प्रश्न है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इलेक्शंस मीडिया एंड वोटर एजुकेशन का आयोजन कहाँ किया गया है।
1: और दोस्तों आज का दूसरा सवाल है, पूर्व सांसद गज सिंह को किस देश की संसद के उच्च सदन में सम्मानित किया गया।
2: बदलो बदलो आदत बदलो,
3: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या।
2: बदलो बदलो आदत बदलो, अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: जो अपने लिए जीते हैं वो एक दिन भुला दिए जाते हैं, लेकिन जो मानवता के लिए जीते हैं वो इतिहास बन जाते हैं।
1: वाह निशा, क्या बात कही है। दोस्तों आज नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, तो हम बात करेंगे एक ऐसे महान व्यक्तित्व की जिन्होंने अन्याय, भेदभाव और घृणा के विरुद्ध प्रेम, समानता और मानव अधिकार की मिसाल चलाए रखी।
0: दोस्तों हर वर्ष 18 जुलाई को पूरी दुनिया में नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। यह दिन केवल एक महान नेता का जन्मदिन नहीं, बल्कि मानवता, सेवा, समानता और शांति के प्रति समर्पण का

0: प्रतीक है।
1: नेल्सन मंडेला का जन्म 18 जुलाई 1918 को दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। वे बचपन से ही न्यायप्रिय और साहसी थे। उन्होंने अश्वेत लोगों के साथ हो रहे नस्लीय भेदभाव के खिलाफ संघर्ष का रास्ता चुना।
0: साथियों, मंडेला जी ने रंगभेद की नीति के खिलाफ आवाज उठाई। इसके कारण उन्हें 27 वर्षों तक जेल रहना पड़ा, लेकिन इतनी लंबी कैद भी उनके हौसले को नहीं तोड़ सकी।
1: दोस्तों, 1990 में उनकी रिहाई हुई और 1994 में वे दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। उन्होंने बदले की भावना नहीं बल्कि मेल मिलाप और भाईचारे का संदेश दिया।
0: और शायदा यही कारण है कि 2009 में संयुक्त राष्ट्र ने 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया और इस दिन लोगों को समाज के लिए कम से कम 67 मिनट सेवा करने के लिए प्रेरित किया जाता है। ये 67 मिनट उनके 67 वर्षों की जनसेवा का प्रतीक है।
1: दोस्तों, सेवा का अर्थ केवल धन देना नहीं होता। किसी जरूरतमंद की सहायता करना, बच्चों को पढ़ाना, पौधे लगाना, बुजुर्गों का सम्मान करना या स्वच्छता अभियान में भी भाग लेना सेवा है।
0: दोस्तों, नेल्सन मंडेला का प्रसिद्ध कथन है, शिक्षा दुनिया का सबसे शक्तिशाली हथियार है जिससे आप दुनिया को बदल सकते हैं। यानी शिक्षा ही समाज में वास्तविक परिवर्तन ला सकती है।
1: बिल्कुल सही कहा ऋषा। आज के समय में जब दुनिया हिंसा, भेदभाव और कई चुनौतियों का सामना कर रही है, तब मंडेला के विचार पहले से भी अधिक प्रासंगिक हो जाते हैं।
0: दोस्तों, याद रखिए, इतिहास उन्हीं का बनता है जो दूसरों के लिए जीते हैं। आइए आज से हम भी नफरत नहीं, मोहब्बत बांटेंगे, भेदभाव नहीं, बराबरी का संदेश देंगे और जहां भी रहेंगे मानवता की मिसाल बनाएंगे।
1: निशा, नेल्सन मंडेला का जीवन हमें यह भी तो सिखाता है ना कि सच्चा नेतृत्व तो सत्ता नहीं बल्कि सेवा, त्याग और धैर्य से जन्म लेता है। उन्होंने कभी अपने विरोधियों से बदले लेने की बात नहीं की, बल्कि उन्हें भी साथ लेकर एक नए दक्षिण अफ्रीका के निर्माण का सपना देखा।
0: बिल्कुल शारदा, और आज जब हम छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, तब मंडेला जी का जीवन हमें संवाद, सहिष्णुता और क्षमा का महत्व समझाता है। यदि हम अपने परिवार, समाज और कार्यस्थल पर इन मूल्यों को अपनाएं तो अनेक समस्याएं स्वयं ही समाप्त हो सकती हैं।
1: बिल्कुल, संयुक्त राष्ट्र भी यही संदेश देता है कि हर व्यक्ति बदलाव ला सकता है। दोस्तों, किसी बच्चे को शिक्षा देना, किसी बुजुर्ग का सहारा बनना, पर्यावरण की रक्षा करना या किसी जरूरतमंद का हाथ थामना, ये छोटे छोटे कार्य मिलकर समाज में बड़ा परिवर्तन लाते हैं।

0: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक आइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़े आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।

0: चौथे रविवार को सुबह 8:30 बजे सुनिए कार्यक्रम हेल्दी बीकाना आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल की प्रस्तुति।
1: शारदा, जब भी दुनिया के अलग अलग महाद्वीपों की बात होती है तो यूरोप का नाम जरूर आता है। आखिर ऐसा क्या है जो इस महाद्वीप को इतना खास बनाता है?
2: निशा, वजह तो कई है। यूरोप क्षेत्रफल के हिसाब से भले ही दुनिया का दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप क्यों ना हो, लेकिन इतिहास, संस्कृति, शिक्षा और विज्ञान के क्षेत्र में इसका योगदान बहुत बड़ा है।
1: बिल्कुल, और यही कारण है कि दुनिया के कई बड़े ऐतिहासिक बदलाव और वैज्ञानिक खोजें यूरोप से जुड़ी हुई हैं। औद्योगिक क्रांति हो या आधुनिक विज्ञान का विकास, यूरोप ने हर दौर में अपनी अलग पहचान बनाई है।
2: बिल्कुल, और दोस्तों अगर देशों की बात करें तो यूरोप में लगभग 44 देश है। फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, स्विट्जरलैंड, ग्रीस और नॉर्वे जैसे देश अपनी संस्कृति और खूबसूरती के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं।
1: शारदा, मुझे यूरोप की सबसे दिलचस्प बात इसकी विविधता लगती है। कुछ ही घंटों की यात्रा में भाषा बदल जाती है, खान पान बदल जाता है और लोगों की जीवन शैली भी बिल्कुल अलग दिखाई देती है।
2: यही विविधता यूरोप को इतना आकर्षक बनाती है। दिशा, कोई देश अपनी ऐतिहासिक इमारतों के लिए मशहूर है तो कई अपने शानदार संग्रहालयों के लिए, वहीं कुछ देश अपनी प्राकृतिक सुंदरता से लोगों का मन मोह लेते हैं।
1: दोस्तों, प्राकृतिक सुंदरता की बात करें तो स्विट्जरलैंड की बर्फ से ढकी पहाड़ियां, नॉर्वे के फ्योर्ड्स और अल्पस माउंटेन रेंज दुनिया भर के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं।
2: और यही रही दोस्तों, यूरोप में कई ऐसी जगह है जिन्हें यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का दर्जा मिला हुआ है। हर साल लाखों लोग इन ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों को देखने पहुंचते हैं।
1: वैसे शारदा, खेलों के क्षेत्र में भी यूरोप की अपनी अलग पहचान है। अगर फुटबॉल की बात करें तो दुनिया के कई प्रसिद्ध क्लब और खिलाड़ी यहीं से आते हैं।
2: बिल्कुल निशा, इसके अलावा विंबलडन जैसी प्रतिष्ठित टेनिस टूर्नामेंट और कई अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताएं भी यूरोप में आयोजित होती है, और इसीलिए खेल प्रेमियों के लिए भी यह महाद्वीप काफी खास माना जाता है।
1: और साथियों, शिक्षा की बात करें तो दुनिया की कई प्रसिद्ध यूनिवर्सिटीज भी यूरोप में हैं।

0: हर साल हजारों विद्यार्थी यहाँ उच्च शिक्षा के लिए आते हैं।
1: बिल्कुल, स्वास्थ्य सेवाओं और रिसर्च के क्षेत्र में भी कई यूरोपीय देश दुनिया में अग्रणी देशों में गिने जाते हैं, और यही वजह है कि यहाँ इनोवेशन और रिसर्च पर काफी ध्यान दिया जाता है।
0: हालांकि यूरोप ने अपने इतिहास में कई कठिन दौर भी देखे हैं शारदा, जिनमें दोनों विश्व युद्ध शामिल हैं, लेकिन उन चुनौतियों से सीखते हुए आज वहाँ के कई देश मिलकर शांति और विकास की दिशा में काम कर रहे हैं।
1: बिल्कुल, और शायद इसी सोच का एक उदाहरण है यूरोपियन यूनियन, जहाँ कई देश आर्थिक और सामाजिक सहयोग के साथ मिलकर आगे बढ़ रहे हैं।
0: अगर एक लाइन में यूरोप को समझना हो तो मैं कहूँगी ये एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ इतिहास भी है, आधुनिकता भी है और प्रकृति की खूबसूरती भी है।
1: और शायद यही कारण है कि यूरोप आज भी दुनिया के सबसे लोकप्रिय पर्यटन, शिक्षा और सांस्कृतिक केंद्रों में अपनी खास पहचान बनाए हुए है।

0: शारदा, भारत अपनी संस्कृति और इतिहास के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। हमारे देश में कई ऐसे किले, मंदिर, स्मारक और ऐतिहासिक स्थल हैं जो हमारी समृद्ध विरासत की पहचान हैं।
1: सही कहा निशा तुमने, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन ऐतिहासिक धरोहरों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होती है? हमारे संविधान में इसके लिए भी एक विशेष प्रावधान किया गया है
0: जिसे अनुच्छेद 49 कहा जाता है। दोस्तों, अनुच्छेद 49 के अनुसार राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, पुरातात्विक स्थलों और ऐतिहासिक धरोहरों की रक्षा और संरक्षण करना राज्य की जिम्मेदारी है।
1: दोस्तों, यानी सरकार यह सुनिश्चित करती है कि हमारी ऐतिहासिक धरोहरों को किसी तरह का नुकसान ना पहुंचे और आने वाली पीढ़ियां भी इन्हें उसी रूप में देख सके।
0: शारदा, अगर हम अपने आसपास देखें तो ताजमहल, कुतुब मीनार, लाल किला, कोणार्क का सूर्य मंदिर और सांची स्तूप जैसे कई ऐतिहासिक स्थल हमारी पहचान है।
1: बिल्कुल,
0: ये सिर्फ पर्यटन स्थल नहीं है बल्कि हमारे इतिहास के जीवंत प्रमाण भी हैं।
1: सही कहा निशा, इन धरोहरों से हमें अपने इतिहास, कला, वास्तुकला और संस्कृति के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसीलिए इनका संरक्षण केवल सरकार की ही नहीं बल्कि हम सबकी भी जिम्मेदारी बनती है।
0: साथियों, कई बार अनजाने में लोग ऐतिहासिक स्मारकों की दीवारों पर नाम लिख देते हैं या उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसा करना न केवल गलत है बल्कि यह हमारी सांस्कृतिक विरासत के प्रति असम्मान भी है।
1: इसीलिए समय समय पर लोगों को जागरूक किया जाता है कि जब भी किसी ऐतिहासिक स्थल पर जाए तो उसकी स्वच्छता और सुरक्षा का पूरा ध्यान रखें।
0: दोस्तों, अनुच्छेद 49 हमें ये संदेश देता है कि विरासत केवल अतीत की निशानी नहीं होती बल्कि ये आने वाले भविष्य के लिए भी एक अमूल्य धरोहर होती है।
1: बिल्कुल, और जब हम अपनी ऐतिहासिक धरोहरों का सम्मान करते हैं तो हम अपने इतिहास, अपनी संस्कृति और अपनी पहचान का भी सम्मान करते हैं।
0: और दोस्तों, इसीलिए अगली बार जब आप किसी ऐतिहासिक स्मारक को देखने जाएं तो केवल उसकी सुंदरता ही नहीं बल्कि उसके महत्व को समझने की कोशिश करें,
1: क्योंकि हमारी विरासत जितनी सुरक्षित रहेगी हमारी पहचान भी उतनी ही मजबूत बनेगी। और यही संदेश हमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 49 से मिलता है।
2: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
3: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारत।

0: पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह है ये।

0: दिशा, आजकल अगर किसी के हाथ में मोबाइल हो तो सबसे ज्यादा समय किस चीज पर बिताया जाता है? शायद इसका जवाब होगा रील्स।
1: बिल्कुल, कुछ सेकंड की ये छोटी छोटी वीडियो मनोरंजन तो करती हैं, लेकिन कई बार हम ये भूल जाते हैं कि रील और रियल लाइफ में काफी फर्क होता है।
0: बिल्कुल सही कहा निशा तुमने। सोशल मीडिया पर जो दिखाई देता है वह हमेशा पूरी सच्चाई नहीं होती। कई वीडियो पहले से प्लान किए जाते हैं, उन्हें कई बार शूट किया जाता है और फिर एडिटिंग के बाद हमारे सामने लाया जाता है।
1: और शायद यही वजह है कि किसी की रील देखकर अपनी जिंदगी से तुलना करना सही नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया पर लोग अक्सर अपनी सबसे अच्छी यादें, सबसे अच्छी तस्वीरें और सबसे अच्छे पल ही साझा करते हैं।
0: बिल्कुल निशा, और अगर हम हर समय दूसरों की जिंदगी को देखकर खुद को ओकने लगे तो धीरे धीरे हमारा आत्मविश्वास भी प्रभावित हो सकता है।
1: बिल्कुल शारदा, इसलिए विशेषज्ञ भी कहते हैं कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें लेकिन उसे अपनी असली जिंदगी का पैमाना ना बनाएं।
0: दोस्तों, रील्स से हमें नई जानकारी मिल सकती है, कुछ नया सीखने का मौका भी मिल सकता है और मनोरंजन भी हो सकता है, लेकिन ये तभी तक अच्छा है जब तक इसका उपयोग संतुलित तरीके से किया जाता है।
1: सही कहा तुमने, कई लोग शिक्षा, स्वास्थ्य, कला और करियर से जुड़ी उपयोगी जानकारी भी रील्स के माध्यम से साझा करते हैं, इसलिए हर रील केवल मनोरंजन के लिए नहीं होती है।
0: बिल्कुल, लेकिन किसी भी जानकारी पर भरोसा करने

0: पहले दोस्तों उसकी सच्चाई जानना भी जरूरी होता है। आजकल कई बार अधूरी या गलत जानकारी भी सोशल मीडिया पर तेजी से फैल जाती है।
1: एक और बात जिस पर ध्यान देना जरूरी है वो है स्क्रीन टाइम। अगर हमारा ज्यादातर समय मोबाइल पर ही बीतने लगे तो पढ़ाई, काम और परिवार के लिए समय निकालना बहुत मुश्किल हो सकता है।
0: बिल्कुल, और इसीलिए समय समय पर मोबाइल से थोड़ा ब्रेक लेना, अपने शौक पूरे करना और परिवार व दोस्तों के साथ समय बिताना भी उतना ही जरूरी है। दोस्तों,
1: आखिरकार असली मुस्कान, असली दोस्ती और असली अनुभव किसी स्क्रीन पर नहीं बल्कि हमारी रियल लाइफ में ही मिलते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा रिशा। तो दोस्तों, रील्स देखिए, उनसे सीखिए, मनोरंजन भी कीजिए, लेकिन हमेशा ये याद रखिए कि स्क्रीन पर दिखने वाली दुनिया और वास्तविक जीवन में बहुत फर्क होता है, क्योंकि जिंदगी की सबसे खूबसूरत यादें कमरे में ही, कैमरे में नहीं बल्कि दिल से बनती है। इसीलिए रील का आनंद लीजिए, लेकिन रियल को जीना कभी मत भूलिए।

0: दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत में हमने आपसे दो प्रश्न पूछे थे, आइए उनके जवाब जानते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न था, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इलेक्शंस मीडिया एंड वोटर एजुकेशन का आयोजन कहाँ किया गया, और इसका सही जवाब है जयपुर।
1: और दोस्तों, आज का दूसरा सवाल था, पूर्व सांसद गज सिंह को किस देश की संसद के उच्च सदन में सम्मानित किया गया, तो इसका सही जवाब है ब्रिटेन।
0: उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति, कार्याणि न मनोरथे, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। दोस्तों, केवल इच्छाओं से नहीं बल्कि परिश्रम से सफलता मिलती है, इसी विश्वास के साथ आइए जानते हैं आज की रोजगार सूचना। दोस्तों, राजस्थान हाई कोर्ट ने स्टेनोग्राफर के 163 पदों पर सीधी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।
1: इसके ऑनलाइन आवेदन 22 जुलाई 2026 से शुरू होंगे और अंतिम तिथि 10 अगस्त 2026 है। आवेदन की आयु सीमा 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए।

0: दोस्तों, जिंदगी एक किताब की तरह है। हर दिन एक नया पन्ना लिखने का मौका देता है, इसलिए हर दिन कुछ नया सीखिए, कुछ अच्छा कीजिए और मुस्कुराते रहिए, क्योंकि आपकी एक छोटी सी सकारात्मक सोच किसी की पूरी दुनिया बदल सकती है। फिर मुलाकात होगी एक नए विषय, नई जानकारी और नए जोश के साथ आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। इन्हीं खूबसूरत विचारों के साथ दीजिए इजाजत अपनी दोस्त निशा शर्मा को
1: और शारदा डैड को।
0: नमस्कार।

अभी युवा श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज पर और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। सांध्य किरणों की पहली दस्तक के साथ मर्दुना की इस पावन सांस्कृतिक धरा से मैं आपका हम सफर आज की शाम का, आज की सुहानी सांध्यकालीन सभा में आप सभी का दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूं। साहित्य की सुगंध, संगीत की सरगम और सूचनाओं के इस त्रिवेणी में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ज्ञान, मनोरंजन और सरोकारों की बेहद खास श्रृंखला। तो आइए नजर डालते हैं आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के खूबसूरत सफरनामे पर।

संध्या 6 बजे सबसे पहले रुख करेंगे देश की धड़कन का। आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे हिंदी में समाचार। संध्या 6:05 खबरों के तुरंत बाद फिजाओं में घुलेगी मधुर सुरों की मिठास। सजने जा रही है सदाबहार फिल्म संगीत की महफिल, जहां गूंजेंगे चुनिंदा शीर्षक के गीत। संध्या 6:30 पर हम चलेंगे पिंक सिटी यानी जयपुर के केंद्र की ओर, जहां प्रसारित होंगे प्रादेशिक समाचार हिंदी में। 6:40 पर समय रहेगा आपके लिए पेश किया जाएगा विशेष संप जिले की चिट्ठी। 6:45 पर मरुधरा की अपनी माटी की बोली में सुनिए प्रादेशिक समाचार राजस्थानी में।

और 7 बजे अब वक्त होगा हमारे ग्रामीण अंचल के प्यारे श्रोताओं के चहेते शो का। ग्रामीण जगत में सुनेंगे गूंजे गांव गुआड़, आपके स्नेह भरे फरमाइशी पत्र और ईमेल से सजेगी लोक संगीत के इस सतरंगी खंड में। आपके साथ आज लाइव जुड़ेंगे मुक्ता जैन और कुंजीलाल स्वामी। संध्या 7:45 दिन भर की

आगे जुड़ेंगे मुक्ता जैन और कुंजीलाल स्वामी। संध्या 7:45 दिन भर की थकान मिटाने के लिए मन को सुकून देने आ रहा है रसमयी सुगम संगीत, और ठीक रात बजे 8 बजे हाजिर होगा हमारे शहर की साहित्यिक और सांस्कृतिक हलचलों का साप्ताहिक आईना बीकानेर दर्पण। आज इसमें आप सुनेंगे 153वां अंक। इस विशेष अंक की रचनाकार है श्रीमती पुनीत विश्नोई। इसे अपनी मखमली आवाज दे रहे हैं श्री महेश उपाध्याय, और कार्यक्रम का कुशल संयोजन किया है श्री अमित सिंह ने।

आपको पुनः याद दिला दें कि ठीक रात 8 बजे हाजिर होगी हमारे शहर की साहित्यिक और सांस्कृतिक हलचलों का साप्ताहिक आईना बीकानेर दर्पण। आज इसमें आप सुनेंगे 153वां अंक। रचनाकार श्रीमती पुनीत बिश्नोई से अपनी मखमली आवाज दे रहे हैं महेश उपाध्याय और कार्यक्रम का कुशल संयोजन किया है अमित सिंह ने। रात्रि 8:45 पर देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित होगी समाचार संध्या और रात्रि 9 बजे News@9 9:15 पर रात के सन्नाटे में सुरों का जादू जगाने के लिए एक बार फिर से सजेगी फिल्म संगीत की महफिल और इसके बाद रात्रि 9:30 पर दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा चित्र भारती। रात्रि 10 बजे शास्त्रीय संगीत के रसिकों के लिए शुरू होगा सुर साधना का शिखर संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। आज की सभा के आमंत्रित कलाकार हैं देश के सुप्रसिद्ध शास्त्रीय साधक कलाकार देवव्रत मिश्रा। इसमें आज आप सुनेंगे इनसे बजाया सितार वादन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। भारत का ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है। यह प्रक्षेपण आज दोपहर 12:05 पर हुआ। इस रॉकेट का निर्माण हैदराबाद की निजी कंपनी स्काई रूट एयरोस्पेस ने किया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में निजी क्षेत्र के पहले कक्षीय प्रक्षेपण यान विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण पर स्काई रूट एयरोस्पेस को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि इस ऐतिहासिक उपलब्धि से भारत की अंतरिक्ष यात्रा में नया अध्याय जुड़ गया है। उन्होंने कहा कि यह निजी अंतरिक्ष क्षेत्र की बढ़ती ताकत स्वदेशी नवाचार को बढ़ावा देने और वैश्विक अंतरिक्ष शक्ति के रूप में भारत की बढ़ती शक्ति का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह ऐतिहासिक उपलब्धि देश के युवाओं को आगे आकर नवाचार में योगदान देने के लिए प्रेरित करेगी।
1: भारत और पूरी टीम बहुत बहुत बधाई, दो काम किए हैं। एक तो आसमान में नए पौधे गाड़ दिए हैं और दूसरा जमीन में भी उस रूप को आपने मजबूती दी है जो देश के नौजवानों को आगे आने की प्रेरणा देगी। और मुझे ये सफलता के लिए तो आनंद होना ही होना था, लेकिन आप लोगों ने जिस कमिटमेंट के साथ मेहनत की, मैं आपको आपकी पूरी टीम को इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए और महत्वपूर्ण सफलता के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, विदेश मंत्री एस जयशंकर, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी इस उपलब्धि पर स्काई रूट एयरोस्पेस को बधाई दी है।

0: गुजरात के अहमदाबाद में पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग लगने से 8 लोगों की मौत हो गई और 10 घायल हो गए। यह हादसा रामोल गात्राड रोड पर मौजूद फैक्ट्री में हुआ। सूचना मिलते ही त्वरित कार्रवाई बल और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने के साथ बचाव अभियान में जुट गई। हादसे में घायल लोगों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। संसद का मॉनसून अधिवेशन 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। इससे पहले सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग की अपील करेगी। मॉनसून अधिवेशन 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होने और उन्हें पारित किए जाने की संभावना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी के जुमागाछा स्थित सीमा सुरक्षा बल शिविर का दौरा किया और बीएसएफ कर्मियों से बातचीत की। श्री शाह ने पौधा भी लगाया और प्रहरी सम्मेलन में भाग लिया। इस दौरान सीमावर्ती क्षेत्रों को सुदृढ़ करने, जन्म और मृत्यु पंजीकरण तथा कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा पर भी चर्चा हुई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज नई रामनगर देहरादून एक्सप्रेस रेलगाड़ी को वर्चुअल माध्यम से झंडी दिखाकर रवाना किया। रेल मंत्री ने कहा कि यह रेलगाड़ी सप्ताह में 2 दिन संचालित होगी और उत्तराखंड के कुमाऊं तथा गढ़वाल क्षेत्रों के बीच बेहतर रेल संपर्क उपलब्ध कराएगी। श्री वैष्णव ने बताया कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना का कार्य भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की आज घोषणा की गई। सर्वश्रेष्ठ फिल्म समीक्षक का पुरस्कार संजीव श्रीवास्तव को दिया जाएगा। गैर फीचर फिल्म श्रेणी में शिवपाल सिंह कांग को परात 41 डिग्री चया मगावर के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का पुरस्कार मिलेगा। बेस्ट डायरेक्शन का पुरस्कार आनंद एल रॉय को स्टैचू ऑफ यूनिटी एकता का प्रतीक के लिए दिया जाएगा। और खेलों में पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई है। महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में आज सिंधु ने चीन की चेन यू फी को पहले गेम में हराया। दूसरे गेम में चेन यू फी की चोट के कारण सिंधु को वॉकओवर मिला। प्रतियोगिता के फाइनल में कल सिंधु का सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। उधर फीफा फुटबॉल विश्व कप के तीसरे स्थान के प्लेऑफ मैच में आज फ्रांस का सामना इंग्लैंड से होगा। यह मैच भारतीय समयानुसार देर रात 2:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: अभी आप सुन रहे थे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। यह आकाशवाणी बीकानेर का ढुला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज पर और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। समय के 6:05 होते हैं। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत। श्रोताओं, फिल्म संगीत कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत अभिवादन। सांध्य किरणों की विदाई और रात के इस बढ़ते सन्नाटे के बीच सुरों का जादू जगाने एक बार फिर से सजेगी महफिल फिल्म संगीत की। यह खास महफिल है। मैं हूं आपका साथी और आज हमारी इस महफिल का जो रंग है, जो मिजाज है, उसे सिर्फ एक लफ्ज में बयां किया जा सकता है। पहचानने की कोशिश करेंगे? जी हाँ, ये लफ्ज है, ये शब्द है, दीवाना।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: आंगनशोन बीकानेर का एक खूबसूरत बीकानेर का ढूंढ मारू चैनल है और आप सुन रहे हैं हमारे सायंकालीन सभा के प्रसारण। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी बीकानेर का ढूंढ मारू चैनल। 24:05 से आप जुड़े हुए हैं फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं शीर्षक संगीत में दीवाना की। एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही जहन में चाहत का वो समंदर उमड़ आता है, जहां ना कोई बंदिश होती है ना कोई दायरा, जो दिल के किसी कोने में संगीत और मोहब्बत का संगम हो जाता है तो हर इंसान थोड़ा बहुत दीवाना जरूर हो जाता है। कोई सुरों का दीवाना, कोई किसी की नजरों का दीवाना, तो कोई जिंदगी के इस खूबसूरत सफर का दीवाना। तभी तो बशीर बद्र साहब ने क्या खूब लिखा है, लोग हर मोड़ पर रुक रुक के संभलते क्यों हैं, लोग हर मोड़ पर रुक रुक के संभलते क्यों हैं, इतना डरते हैं तो फिर घर से निकलते क्यों हैं।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बीकानेर से फिल्म संगीत कार्यक्रम, जिसमें शीर्षक संगीत में आप सुन पा रहे हैं शीर्षक दीवाने पर बातचीत। लेकिन सच में जो दीवाने होते हैं ना, वो रास्तों की परवाह नहीं करते और नहीं मंजिल की, वो बस सुरों के धागे में बंधकर बहते चले जाते हैं। होश वालों को बिना क्या खबर कि बेखुदी क्या चीज है। दीवानगी दरअसल वो आईना है जिसमें इंसान को सिर्फ वही नजर आता है जिससे वो बे

इंतहा मोहब्बत करता है। हमारी हिंदी सिनेमा ने भी इस दीवानगी को बेहद खूबसूरत गानों और जज्बातों में पिरोया है। आइए एक और झलकी लेते हैं दीवानगी की।

देखे ये दीवानी कभी हंसाती है कभी रुलाती है तो कभी तनहाई में गुनगुनाने का बहाना देती है, और जब शाम ढल रही हो ठंडी हवा के झोंके खिड़की से दस्तक दे रहे हो ऐसे में इन गानों का अंदाज कुछ और ही आता है।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।
0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: यहाँ पर हम इजाजत लेना चाहेंगे फिल्म संगीत कार्यक्रम से संपन्न करने के लिए। 6:30 होते हैं, आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ पर। इस समय है हमारे जयपुर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचारों का। इसके पश्चात आप सुनेंगे जिले की चिट्ठी और उसके पश्चात होंगे राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार। कृपया सुनते रहिए आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल।
4: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने साइबर अपराध की रोकथाम के लिए हेल्पलाइन को प्रभावी और मजबूत बनाने को कहा। भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण पर स्काईरूट एरोस्पेस की सराहना की। राजस्थान और मध्य प्रदेश के वन क्षेत्रों को आपस में जोड़ने की महत्वाकांक्षी चीता कॉरिडोर परियोजना पर दोनों राज्यों की सहमति। और प्रदेश में मॉनसून सुस्त, अब तक सामान्य से कम बरसात हुई। समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज जयपुर में पुलिस हेडक्वार्टर में साइबर क्राइम और डिजिटल अरेस्ट को लेकर बैठक की। मुख्यमंत्री ने साइबर ठगी और संगठित अपराधों के पूरे नेटवर्क को जड़ से खत्म करने पर जोर दिया। उन्होंने अपराधियों के वित्तीय लेन देन और सोशल नेटवर्क को तोड़ने की बात कही। बैठक के दौरान साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए राजस्थान साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर R4C की प्रगति की समीक्षा की गई। गौरतलब है कि ये केंद्र राज्य में ऑनलाइन ठगी और डिजिटल अरेस्ट को रोकने के लिए बनाया गया है। इसके तहत 1930 हेल्पलाइन के विस्तार और 24/7 संचालन के लिए काम किया जाएगा। साथ ही राज्य के सभी जिलों में साइबर पुलिस थाने संचालित किए जा रहे हैं। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास की अध्यक्षता में राज्य में प्रसूताओं की मृत्यु और खराब स्वास्थ्य के मामले

0: करने पर उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई। मुख्य सचिव ने आज जयपुर के स्वास्थ्य भवन से ये वर्चुअल बैठक की। उन्होंने प्रसूताओं के स्वास्थ्य की सघन निगरानी के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान की जानकारी ली। साथ ही गर्भावस्था के अधिक जोखिम वाले मामलों की पहचान करने तथा उनका अलग रिकॉर्ड रखने के निर्देश दिए गए। मुख्य सचिव ने सभी अस्पतालों में लेबर रूम में पर्याप्त जीवन रक्षक दवाइयां और अन्य व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। बैठक में सभी जिला अस्पतालों के अधीक्षक और स्वास्थ्य अधिकारी तथा मेडिकल कॉलेजों के प्राचार्य जुड़े। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कहा है कि किसी भी शिक्षण संस्थान में पढ़ने वाले विद्यार्थियों से सेफ्टी टैंक की सफाई करवाना जोखिम भरा और गंभीर लापरवाही का मामला है। श्री बेढम ने डीग जिले के मीलखेड़ा स्थित मदरसे में सेफ्टी टैंक की सफाई के दौरान हुए हादसे को अत्यंत दुखद बताया है। आज भरतपुर सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत में गृह राज्य मंत्री ने कहा कि घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन ने तत्काल राहत और बचाव कार्य शुरू किया। हालांकि सेफ्टी टैंक में जहरीली गैस से एक छात्रा की मौत हो गई, वहीं एक घायल छात्रा का अलवर के अस्पताल में इलाज करवाया जा रहा है।
1: तो बच्चे हमारे यहाँ अध्ययन के लिए आते हैं और अध्ययन के लिए आने वाले बच्चों को इस तरह के काम कराया जाना, मैं समझ सकता हूँ कि व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। पुलिस ने रात को FIR दर्ज कर ली है, जो भी कानून सम्मत कार्रवाइयाँ होंगी वो निश्चित रूप से करेंगे। हमारी प्राथमिकता है कि बच्चे सुरक्षित रहें, बच्चे शिक्षण ग्रहण करें, उनकी उचित व्यवस्थाएं हो, तो उन सारी चीजों को देखते हुए सरकार ने तुरंत संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि पहली प्राथमिकता बच्चों की जान बचाना, उनको सुरक्षित रखना, अच्छी शिक्षा मिले। लेकिन इस तरह का कृत्य कोई करता है तो वो शर्मनाक है और कानून में जो बनेगा निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी।
0: सीकर जिले के कटराथल स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय में आज शेखावाटी ज्ञान सभा आयोजित की गई। ज्ञान सभा का उद्देश्य शिक्षा जगत, युवाओं और समाज के बीच राष्ट्र निर्माण से जुड़े विचारों पर संवाद स्थापित करना और इसे आगे बढ़ाना है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़ी ने कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आर्थिक प्रगति के साथ ही शिक्षा और संस्कारों पर जोर दिया।
2: आजादी के 100 वर्ष पूर्ण होने को हम एक औपचारिक समारोह तक सीमित नहीं करके विश्व भर में विकसित भारत के रूप में अपने आप को स्थापित करने मनाने की दृष्टि पर कार्य कर रहा है। अपना उद्देश्य की 2027 में हम निश्चित रूप से शिक्षा के और विकसित भारत के दृष्टि से देश के सबसे आगे जाएंगे।
0: विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने इस अवसर पर कहा कि सभी को भारतीय मूल्यों पर आधारित विकास की दिशा में बढ़ना चाहिए। केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने पेंशन संबंधी विवादों का समाधान प्रशासनिक तौर पर किए जाने की बात कही है। वे आज नई दिल्ली में पेंशन संबंधी मुकदमेबाजी पर राष्ट्रीय कार्यशाला में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि इससे पेंशनधारियों को अदालत जाने के लिए मजबूत नहीं होना पड़ेगा। डॉक्टर सिंह ने कहा कि पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने कई तरह के सुधार किए हैं। प्रक्रिया में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के लिए ऑनलाइन प्रणाली के जरिए पेंशन सुविधाएं शुरू की गई हैं। इस अवसर पर अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी ने शून्य पेंशन मुकदमेबाजी के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समन्वित प्रयासों की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने कहा कि लंबे समय तक चलने वाले मुकदमेबाजी के बजाय बेहतर नीति, प्रौद्योगिकी और संस्थागत तंत्रों के जरिए विवादों का समाधान किया जाना चाहिए। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। देश का पहला निजी कंपनी द्वारा विकसित ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण पर देश भर में उत्साह है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई नेताओं ने इस महत्वपूर्ण सफलता पर स्काईरूट एरोस्पेस को बधाई दी है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने विक्रम 1 टीम की इस ऐतिहासिक उपलब्धि की सराहना करते हुए कहा कि ये कामयाबी देश के युवाओं को नवाचार में योगदान देने के लिए प्रेरित करेगी।
3: सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई
4: सर। We are very, very privileged to have you.
3: Skyroot ने दो काम किए हैं।

0: आसमान में नए पौधे गाड़ दिए हैं और दूसरा जमीन में भी उस रूट्स को आपने मजबूती दी है जो देश के नौजवानों को आगे आने की प्रेरणा देगी। कब से मेरा ध्यान जो गया, आपकी पूरी टीम 25-30 साल की दिखती है। आपका जो कुछ भी मिशन है, मैं इसको एक प्रकार से वंदे मातरम मिशन ही देखता हूँ। ये भारत माँ की गरिमा को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाना, नई पीढ़ी को टेक्नोलॉजी को लाभ देना और नई पीढ़ी को टेक्नोलॉजी में आने के लिए प्रेरित करना।
1: केंद्रीय विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये सफलता अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में भारत की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है, साथ ही वैश्विक शक्ति के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करती है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण को देश के अंतरिक्ष इतिहास का स्वर्णिम अध्याय बताया है। उन्होंने इसे भारतीय वैज्ञानिकों की तकनीकी आत्मनिर्भरता और नवाचार का प्रतीक बताते हुए कहा कि इस पर हर देशवासी को गर्व है। ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 का प्रक्षेपण आज दोपहर 12:05 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया गया। ये भारत का निजी तौर पर विकसित प्रक्षेपण यान है। इसे हैदराबाद के एरोस्पेस स्टार्टअप स्काईरूट ने बनाया है। इस ऐतिहासिक मिशन को आगमन नाम दिया गया है, जो अंतरिक्ष में निजी क्षेत्र के प्रवेश के नए युग का प्रतीक है। इस सफल प्रक्षेपण के साथ ही भारत ये उपलब्धि हासिल करने वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया है। राजस्थान और मध्य प्रदेश के वन क्षेत्रों को आपस में जोड़ने के महत्वाकांक्षी चीता कॉरिडोर प्रोजेक्ट पर दोनों राज्यों के बीच सैद्धांतिक सहमति बन गई है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA के विशेषज्ञों के दल ने कोटा और रावत भाटा क्षेत्रों के जंगलों का निरीक्षण करने के बाद पूरे क्षेत्र को चीतों के स्थायी पुनर्वास के लिए अनुकूल माना है। ये कॉरिडोर राजस्थान के मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व और मध्य प्रदेश के गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य के बीच प्रस्तावित है। मध्य प्रदेश के कुनू नेशनल पार्क में चीतों की बढ़ती तादाद को देखते हुए इस विशेष कॉरिडोर की जरूरत महसूस की जा रही है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के निर्देश और दोनों राज्यों की उच्च स्तरीय बैठकों के बाद इस परियोजना की दिशा में प्रयास तेज हो गए हैं। इस कॉरिडोर के विकसित होने से रावत भाटा और आसपास के करीब 400 किलोमीटर के क्षेत्र को चीतों के प्राकृतिक आवास के रूप में काम में लिया जा सकेगा। कांग्रेस नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने आज जयपुर के छात्रों की गूंज अभियान के तहत छात्र संविधान संवाद कार्यक्रम में शिरकत की। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुए कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ भी शामिल हुए। इस दौरान श्री पायलट ने बढ़ती बेरोजगारी और पेपर लीक के मुद्दों को लेकर विद्यार्थियों के भविष्य पर चिंता जताई।
2: आप कोचिंग करो, ट्यूशन करो, किराया दो, बस का किराया दो, खाने का, किताबों का, लाखों रुपए गरीब परिवार में पेट काट के उस पूंजी बोर्ड के बच्चे बच्चों को पैसे लगाता है, उसके बाद पेपर लीक हो जाता है। आपके पास जिम्मेदारी इस बात की है कि निष्पक्ष पारदर्शी आप परीक्षा कराएं, लेकिन मुद्दा यह है कि जवाबदेही किसकी है। लेकिन ये छात्र घर में एक या दो हो सकते हैं, लेकिन भविष्य पूरे परिवार का है। ऐसा कोई बाप नहीं है, ऐसी कोई माँ नहीं है जो नहीं चाहती कि हमारे बच्चे उसे आगे बढ़े।
1: और अब मौसम। राज्य में मॉनसून फिलहाल सुस्त बना हुआ है और अधिकतर स्थानों पर गर्मी और उमस का असर है। जल संसाधन विभाग ने अब तक हुई बारिश के आंकड़े जारी करते हुए बताया है कि इस मॉनसून सीजन के दौरान सामान्य से कम बरसात दर्ज की गई है। किसी भी जिले में अब तक असामान्य वर्षा नहीं हुई है। वहीं बीकानेर, चूरू, डीडवाना, कुचामन और सलूम्बर में अधिक बारिश हुई है। 16 जिलों में सामान्य और 21 जिलों में सामान्य से कम पानी बरसा है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 21 जुलाई से मॉनसून के एक बार फिर से सक्रिय होकर रफ्तार पकड़ने के आसार हैं। इस बीच आज राज्य के 10 जिलों में हल्की बरसात हो सकती है। वहीं बीते 24 घंटों में डूंगरपुर, कोटा और अलवर में हुई बरसात से लोगों को उमस से राहत मिली है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति केवल एक बयान नहीं है, बल्कि भारत की दृढ़ कार्यवाही की सूचक है। श्री सिंह आज नई दिल्ली में फोर्सेस फर्स्ट कॉन्क्लेव में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत केवल अपनी सीमाओं पर ही आतंकवादियों पर हमला नहीं करेगा, बल्कि जरूरत पड़ने पर उनके ठिकानों में घुसकर भी उन्हें नष्ट करेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री भजनलाल

0: ने साइबर अपराध की रोकथाम के लिए हेल्पलाइन को प्रभावी और मजबूत बनाने को कहा। भारत की अंतरिक्ष क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण पर स्काईरूट एरोस्पेस की सराहना की। राजस्थान और मध्य प्रदेश के वन क्षेत्रों को आपस में जोड़ने की महत्वाकांक्षी चीता कॉरिडोर परियोजना पर दोनों राज्यों की सहमति और प्रदेश में मॉनसून सुस्त, अब तक सामान्य से कम बरसात हुई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से सलूम्बर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख कमलेश कुमार झड़ूला ने तैयार किया है। पिछले एक महीने में सलूम्बर जिले में विकास, जन कल्याण, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल और पर्यावरण से जुड़े कई बड़े काम हुए। जिला प्रशासन ने गांव-गांव जाकर ग्रामीण सेवा शिविर लगाए, जहां लोगों की वर्षों पुरानी समस्याओं का मौके पर समाधान किया गया। इस दौरान मौसम में भी बड़ा बदलाव देखने को मिला। जून के आखिर तक भीषण गर्मी और उमस से लोग परेशान थे, लेकिन जुलाई की शुरुआत से ही मॉनसून ने जोर पकड़ लिया। जिले के कई इलाकों में अच्छी बारिश हुई, जिससे खेतों में नमी आई और खरीफ फसलों की बुवाई तेज हो गई। हालांकि एक बार फिर मॉनसून की रफ्तार कम होने से लोगों को बारिश का इंतजार होने लगा है। पिछले एक महीने में जिले की सबसे बड़ी पहल ग्रामीण सेवा शिविर 2026 रही। इन शिविरों के माध्यम से लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने से राहत मिली। गांव में ही अधिकारियों ने लोगों की समस्याएं सुनी और मौके पर समाधान किया। कई ग्राम पंचायतों में आवासीय पट्टे, आबादी भूमि के पट्टे, नाम शुद्धिकरण, भूमि बंटवारा, सीमांकन, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, जन्म प्रमाण पत्र, प्रॉपर्टी कार्ड, जॉब कार्ड और मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए गए। डिंगरी ग्राम पंचायत में 20 परिवारों को आवासीय पट्टे दिए गए। चंद्रूडा में कालबेलिया समाज के परिवारों को आवासीय भूमि उपलब्ध कराई गई। पहाड़ी, टोडा और अन्य ग्राम पंचायतों में भी पात्र परिवारों को भूमि के अधिकार मिले। सराड़ा ग्राम पंचायत के प्रसाद में एक बुजुर्ग महिला की सामाजिक सुरक्षा पेंशन शिविर में ही स्वीकृत की गई। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को आर्थिक सहायता मिली। टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत जयसमंद के देवपुरा में पोर्टेबल डिजिटल एक्सरे मशीन से 80 ग्रामीणों की जांच की गई, जिनमें से 10 लोग टीबी संदिग्ध पाए गए। उन्हें आगे की जांच और इलाज के लिए भेजा गया। ग्रामीणों को टीबी, मानसिक स्वास्थ्य और अन्य बीमारियों के बारे में जानकारी भी दी गई। जिले में 11 से 18 जुलाई तक विश्व जनसंख्या सप्ताह मनाया गया और परिवार नियोजन को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया। इस क्षेत्र में बेहतर काम के लिए सलूम्बर जिले को राज्य स्तर पर तीसरा स्थान मिला। जिले के 50 किसानों का दल बांस की आधुनिक खेती का प्रशिक्षण लेने उदयपुर, कोटड़ा और सिरोही गया। कृषि विभाग और टैफे जे फार्म सर्विसेज के बीच हुए समझौते के बाद किसानों को डिजिटल प्लेटफॉर्म से ट्रैक्टर और कृषि यंत्र किराए पर उपलब्ध कराने की नई व्यवस्था शुरू की गई। वहीं खेलों के मद को बढ़ावा देने के लिए DMFT मद से स्टार्स योजना शुरू की गई। इस योजना के तहत करीब 50 लाख रुपए खर्च करके खिलाड़ियों को खेल सामग्री, खेल पोशाक, आधुनिक मैदान और प्रशिक्षण की सुविधा दी जाएगी। जिले में मिशन सलूम्बर 100 और मिशन ज्ञान वैन शुरू किए गए हैं। इनके माध्यम से विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं और करियर की जानकारी दी जाएगी। वीरपुरा की 58 वर्षीय आंगनबाड़ी कार्यकर्ता राधा देवी ने राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल से 10वीं पास कर जिले के लिए प्रेरणादायक उदाहरण पेश किया है। वहीं अगर रोजगार की बात करें तो जिले के 342 युवाओं को विभिन्न विभागों में नियुक्ति पत्र और वेलकम किट दिए गए। इससे युवाओं में नई उम्मीद जगी और सरकारी सेवाओं में उनका कदम बढ़ा। खाद्य सुरक्षा विभाग ने अदकालिया की एक फर्म पर कार्रवाई करते हुए करीब 7000 किलो एक्सपायर्ड चाय की पत्ती जब्त की है, जिसकी कीमत 19 लाख रुपए बताई गई है। साथ ही विवाह समारोह और बड़े आयोजनों में अब केवल FSSAI लाइसेंस वाले केटररों को ही भोजन बनाने और परोसने की अनुमति देने के निर्देश जारी किए गए हैं। बरसात के मौसम को देखते हुए जुलाई महीने को एंटी डेंगू माह घोषित किया गया है।

0: स्वास्थ्य विभाग ने घर घर जाकर लार्वा सर्वे किया और चेक क्लीन एंड कवर अभियान चलाकर लोगों को डेंगू से बचाव के उपाय बताए। इसी के साथ सलूम्बर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर में पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा राज्य में साइबर अपराधानी रोकथाम सारू हेल्पलाइन असरदार और मजबूत बनावन बाबत कहो। भारत री अंतरिक्ष हल्का माय खास उपलब्धि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश माय गैर सरकारी हल्का रो पहलो ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 कामयाबी सागर छोड़न पर अंतरिक्ष कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस री सराहना कीनी। राजस्थान और मध्य प्रदेश रा जंगलात हल्का एक दूजा जोड़वारी चीता कॉरिडोर परियोजना माथे दोनों राज्यों री सहमति। प्रदेश में चौमासा री बिरखा मंद पड़ी, हाल ताई सामान्य कम बरसात हुई। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर, अरब समाचार विगतवार। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज जयपुर रा पुलिस मुख्यालय में साइबर अपराध और डिजिटल अरेस्ट रा मुद्दा माथे विचार सारू अहलकार सागे मीटिंग कीनी। इन दौरान साइबर अपराधानी रोकथाम बाबत राजस्थान साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर R4C रा कामकाज रोई जायजो लियो चियो। ध्यान जोग है कि राज्य में ऑनलाइन ठगी और डिजिटल अरेस्ट री वारदाता रोकण सारू राजस्थान साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर बनाई चियो है। इन अतीत 1930 हेल्पलाइन ने और बधावण और इन 7 दिन 24 घंटा काम करण लायक बनावण सारू जतन करिया जावेला। फिलहाल राज्य रा सगला जिला में साइबर पुलिस थाना काम कर रहा है। मीटिंग पाछे पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा खबर नवीसा सागे बातचीत करता था का जनताओं रकम माए तेजी बढ़ोतरी रो झांसो देवन वाला और ई भांतरा दूजा लोभ देवन वाला बचबारी अरज कीनी। राज्य में लाडला दिना झपा वाली कुछ लुगाइया री मौत वेवन और कुछ री तबियत खराब वेवन रे मामला माए मुख्य सचिव वी श्रीनिवास री सदारत माए आज जयपुर माए वर्चुअल तरीका आला दर्जा री मीटिंग राखी छी। वे झपा वाली लुगाइया री तबियत री पूरी निगरानी राखण सारू चलाया जा रहा खास अभियान रे बारा माए जानकारी लीनी। मीटिंग में झपा वाली लुगाइया री तबियत री पूरी निगरानी रखण और बत्ता जोखिम वाला मामला री पिछाण कर वारो न्यारो रिकॉर्ड रखण रा हुकम दिया चिया। इसागे सगला अस्पताल में झपा रा कमरा में जरूरी दवाइयां और दूजी व्यवस्थावां ते करण सारू कही चियो। मीटिंग में सगला जिला अस्पताल रा सुप्रिंटेंडेंट और स्वास्थ्य अधिकारी और मेडिकल कॉलेज रा प्रिंसिपल शामिल थिया। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढन कहो है कि शिक्षण संस्थान में पढ़वा वाला विद्यार्थियों सेफ्टी टैंक री सफाई कराने जोखिम भरियो और गंभीर लापरवाही रो मामलो है। श्री बेढन डीग जिला रा मीलखेड़ा रा मदरसा में सेफ्टी टैंक री सफाई रे दौरान हुए हादसा ने घणो दुख देवन वालो बतायो। आज भरतपुर में खबर नवीसा सागे बातचीत करता था गृह राज्य मंत्री कहो के वाकया री जानकारी मिलता ही प्रशासन तुरंत जरूरी जतन कीना पर सेफ्टी टैंक में जहरीली गैस हो एक टाबरी री मौत वेगी जदके जख्मी हुई दूजी टाबरी रो अलवर रा अस्पताल में इलाज चल रियो है।
2: तो बच्चे हमारे यहाँ अध्ययन के लिए आते हैं और अध्ययन के लिए आने वाले बच्चों को इस तरह के काम कराए जाना मैं समझ सकता हूँ कि व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। पुलिस ने रात को FIR दर्ज कर ली है, जो भी कानून सम्मत कार्रवाइयाँ होंगी वो निश्चित रूप से करेंगे। हमारी प्राथमिकता है कि बच्चे सुरक्षित रहें, बच्चे शिक्षण ग्रहण करें, उनकी उचित व्यवस्थाएं हो, तो उन सारी चीजों को देखते हुए सरकार ने तुरंत संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि पहली प्राथमिकता बच्चों की जान बचाना, उनको सुरक्षित रखना, अच्छी शिक्षा मिले। लेकिन इस तरह का कृत्य कोई करता है तो वो शर्मनाक है और कानून में जो बनेगा निश्चित रूप से
1: बनावन सारू भुनाई लिखाई और संस्कार माथे जोर तीनो। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी कहो के सगला ने देशी मूल्य माथे आधारित विकास

0: की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह पेंशन से जुड़े झगड़ा रो निपटारो प्रशासनिक तौर करण बाबत कहो है। वे आज नई दिल्ली में पेंशन से जुड़ी मुकदमेबाजी रे बारे में राखी जी राष्ट्रीय कार्यशाला में बोल रहा हा। डॉक्टर सिंह कहो कि पेंशन से जुड़िया काम में साफ कोई लावण सागे दक्षता बढ़ावण सारो ऑनलाइन सिस्टम रे जरिए पेंशन रो सुबितो शुरू करी चियो है। ई मौके अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी पेंशन से जुड़ी मुकदमेबाजी खत्म करण सारू मिलर कोशिशा करण री जरूरत माथे जोर दीनो। समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। देश में किणी गैर सरकारी कंपनी कानियो बनाई जो पहलो ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम वन ने कामयाबी सागे छोड़ी चियो है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई नेता इस खास कामयाबी सारू गैर सरकारी कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने बधाई देनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विक्रम वन टीम री ई ऐतिहासिक उपलब्धि री सराहना करता थका कहो कि आ कामयाबी देश रा नौजवाना ने नुआ काम करण में योगदान देवन री सीख देवेला।
1: सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई
2: सर। वी आर वेरी वेरी प्रिविलेज्ड टू हियर यू।
1: स्काई रूट ने दो काम किए हैं, एक तो आसमान में नए पौधे गाड़ दिए हैं और दूसरा जमीन में भी उस रूट्स को आपने मजबूती दी है जो देश के नौजवानों को आगे आने की प्रेरणा देगी। कब से मेरा ध्यान जो गया, आपकी पूरी टीम 25-30 साल की दिखती है। आपका जो कुछ भी मिशन है, मैं इसको एक प्रकार से वंदे मातरम मिशन ही देखता हूँ कि भारत माँ की गरिमा को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाना, नई पीढ़ी को टेक्नोलॉजी को लाभ देना और नई पीढ़ी को टेक्नोलॉजी में आने के लिए प्रेरित करना।
0: ई मौके केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह कहो कि आ कामयाबी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में भारत रा बढ़ता बूता रो दर्शाव करे है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्माई ई कामयाबी ने देश रा अंतरिक्ष इतिहास रो सोना रो अध्याय बतायो है। वह इन्हें भारत रा वैज्ञानिका रे तकनीकी हलका माए खुद रे पाण उबावेवण और नवाचार री निशानी बताता थका कहो के ई कामयाबी माथे देश रा हर रहवासी ने नाज है। ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम वन ने आज दोपहर पाछे 12:05 पर आंध्र प्रदेश माए श्री हरिकोटा रा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र छोड़ी चियो। इसागे भारत ओ बूतो हासिल करण वालो तीजो देश बन गयो है। राजस्थान और मध्य प्रदेश रा जंगलात हलका ने एक दूजा जोड़ बारी खास चीता कॉरिडोर परियोजना रा बारा माए दोनों राज्यों बीच एक राय बन गई है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA रा जानकारा री टीम कोटा और रावत भाटा हलका रा जंगलों रो दौरो करिया पाछे पूरा हलका ने चीता ने हमेशा सारू बसावण बाबत ठीक मान्यो है। वो कॉरिडोर राजस्थान रा मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व और मध्य प्रदेश रा गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य बीच बनावण रो प्रस्ताव है। मध्य प्रदेश रा कूनो नेशनल पार्क में चीता री बढ़ती तादाद ने ध्यान रखता थका ई खास कॉरिडोर री जरूरत महसूस करी जा रही ही। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला रा हुकम और दोनों राज्यों रा आला अहलकारा री मीटिंग पाछे ई परियोजना रा काम में तेजी लावण री कोशिशा बध की है। ओ कॉरिडोर विकसित वेवणु रावत भाटा और RSRA रा करीब 400 किलोमीटर हलका माए चीता ने कुदरती घर माए बसाया जा सकेला। कांग्रेस रा आला नेता और राज्य रा पहली वाला उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट छात्रों की गूंज अभियान रातेत आज जयपुर माए राखी जिया छात्र संविधान संवाद कार्यक्रम माए शामिल भया। इन माए विधानसभा माए विपक्षरा नेता टीकाराम जूली और छात्र संगठन NSUI रा राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ी भेड़ा भया। इस दौरान श्री पायलट बढ़ती बेरोजगारी और पेपर लीक रा मुद्दा नो जिक्र करता थका विद्यार्थियों रा भविष्य जुड़ी चिंता जताई।
3: आप कोचिंग करो, ट्यूशन करो, किराया दो, मेस का किराया दो, खाने का, किताबों का, लाखों रुपए गरीब परिवार में पेट काट के उस पूंजी बोर्ड के बच्चे बच्चों को बच्चे लगाता है, उसके बाद पेपर लीक हो जाता है। आपके पास जिम्मेदारी इस बात की है कि

0: पक्ष पारदर्शी आप परीक्षा कराएं, लेकिन मुद्दा यह है कि जवाबदेही किसकी है। लेकिन ये छात्र घर में एक या दो हो सकते हैं, लेकिन भविष्य पूरे परिवार का है। ऐसा कोई बाप नहीं है, ऐसी कोई माँ नहीं है जो नहीं चाहती कि हमारे बच्चे उसे आगे बढ़े।
1: मौसम राज्य में चौमासारी बिरखा फिलहाल सुस्त प्रचावण रे कारण घनखर थोड़ा गर्मी और उमस रो असर बनियो रहो है। जल संसाधन विभाग कानू मिली जानकारी रे मुजब इन चौमासा में फिलहाल सामान्य कम बिरखा भी है। बीकानेर, चूरू।

0: थोड़ा गर्मी और उमस रो असर बनियोडो है। जल संसाधन विभाग कानू मिली जानकारी रे मुजब इन चौमासा माए फिलहाल सामान्य कम बिरखा भी है। बीकानेर चूरू डीडवाना कुचामन और सलुम्बर माए सामान्य बत्तो में बरसियो जबकि 16 जिला सामान्य और 21 जिला माए सामान्य कम बरसात भी। मौसम विभाग रे मुजब राज्य माए 21 जुलाई उजू बिरखा वेवन रा आसार है। ये बीचे आज प्रदेश रा 10 जिला माए हल्की बरसात री संभावना है। सरकार संसद रा सोमवार न शुरू होवन वाला पावस सत्र पहली काल सगली सियासी पार्टियां रा नुमाइंदा ने मीटिंग बुलाई है। इनमें सगली सियासी पार्टियां दोनों सदना री कार्रवाई ठीक ढंग चलावन में मदद री अपील करी जावेला। 13 अगस्त तक चलन वाला इन सत्र रे दौरान कई खास बिला माथे चर्चा होवन और वन पास करावन रे संभावना है। आखिर में खास समाचार एक कर फिर सुन ले रहो। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राज्य में साइबर अपराधारी रोकथाम सारू हेल्पलाइन ने असरदार और मजबूत बनावन बाबत कहो। भारत री अंतरिक्ष हल्का माए खास उपलब्धि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश माए गैर सरकारी हल्का रो पहलो ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 कामयाबी सागर छोड़न पर अंतरिक्ष कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस री सराहना कीनी। राजस्थान और मध्य प्रदेश रा जंगलात हल्का एक दूजा जोड़बारी चीता कॉरिडोर परियोजना मथे दोनों राज्य री सहमति। और प्रदेश माए चौमासा री बिरखा मंद पड़ी हाल ताई सामान्य कम बरसात हुई। इस आगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भियो। नमस्कार।
1: यह आकाशवाणी बीकानेर का ढोलामारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज पर और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी बीकानेर का ढोलामारू चैनल। संध्या की सभा में आप सुन रहे हैं कार्यक्रम। संध्या के 7 बज चुके हैं। ढलते सूरज की लाली और पनघट और चौपालों की गूंज लेकर आ गया है कार्यक्रम ग्रामीण जगत, ग्रामीण संस्कृति का आईना। इसमें आज आप सुनेंगे गूंजे गांव गुआड़। तो वक्त हो चला है आपके सबसे प्रिय और लोकप्रिय लोकगीतों के फरमाइशी कार्यक्रम गीत गूंजे गांव गुआड़ का। एक ऐसा सुरीला मंच जहां लोक संस्कृति खुद थिरक उठती है। इसमें समाया है राजस्थानी की मिट्टी का गौरव, खेतों की सौंधी सौगात, बरखा की खुशबू, बुजुर्गों की कहावतों का ज्ञान। ये धुन है उन पसीनों की, उन खेतों की जो इस देश का पेट भरते हैं। हर सुर में आपको अपनी मातृभूमि के अपनत्व का एहसास कराती हुई आपके ईमेल और स्नेह भरे फरमाइश पत्रों से सजे इस कार्यक्रम में आज स्टूडियो में आपके साथ हैं मुक्ता जैन और कुंजीलाल स्वामी। आइए डूब जाते हैं लोक संगीत के समंदर में। प्रस्तुत है ग्रामीण जगत।

0: कार्यक्रम रो पहलो गीत है वो निजर करा और बीरे पछे आपा सुनावा भाई लोग इन्हें कुन कुन सुनो चाहता
1: तो पहलो गीत सुनने वास्ते माने कागज लिखे है सुराना मुल्ला बीकानेर शु क्रांतिलाल सुराना शरद सुराना मयंक सुराना बिमल अबानी लालेंद्र होलेंद्र आचार्य रोनी जैन और रामसिंहपुरा जिला श्रीगंगानगर सु अशोक बबर पवन राजेश बबर अजय राहुल और मनु बबर।
0: तो चलो भाई देखो मुक्ता बहन थे पहली सुना बता रिया हो तो मैं भी बता दूं कि मारखने के कागदिया है कमला कॉलोनी बीकानेर सु सुभाष खत्री तरुण खत्री वर्षा खत्री जोय खत्री आर बेरवाला खुद सु बलवंत जाखड़ ममता प्रिया नैना हिमानी जाखड़ और परमिलागंज अलोट जिला रतलाम मध्य प्रदेश हूँ बलवंत कुमार राजूबाई माया वर्मा शोभा वर्मा राहुल ज्योति और अतुल।
1: और ये सागर सागर एक कागज और आयो है जय नारायण व्यास कॉलोनी बीकानेर शु अशोक कुमार शाही श्रीमती संतोष शाही राशि गौरव शाही और ए बने ओ फरमाइशी गीत लिखे और सुना सा ओ गीतड़ लो।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: मुसीबतें और जरूरतें कभी बता के नहीं आती, ऐसे में मणप्पुरम फाइनेंस के साथ लीजिए एक स्मार्ट डिसीजन ताकि आप मुश्किलों का सामना कर सकें।
2: आपके हर फाइनेंशियल इमरजेंसी में आपके साथ मणप्पुरम फाइनेंस जो लाए हैं इजी गोल्ड स्कीम, जिसमें जितने दिनों का होगा लोन उतना ही होगा इंटरेस्ट।
1: अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें नजदीकी मणप्पुरम फाइनेंस शाखा में या टोल फ्री नंबर 1800-420-2233 पर कॉल करें।

0: तथ्य रविवार को सुबह 8:30 बजे सुनिए कार्यक्रम हेल्दी बीकाना आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल की प्रस्तुति।
1: मुसीबतें और जरूरतें कभी बता के नहीं आती, ऐसे में मनापुरम फाइनेंस के साथ लीजिए एक स्मार्ट डिसीजन ताकि आप मुश्किलों का सामना कर सकें।
2: आपके हर फाइनेंशियल इमरजेंसी में आपके साथ मनापुरम फाइनेंस जो लाए हैं इजी गोल्ड स्कीम, जिसमें जितने दिनों का होगा लोन उतना ही होगा इंटरेस्ट।
1: अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें नजदीकी मनापुरम फाइनेंस शाखा में या टोल फ्री नंबर 1800420223 पर कॉल करें।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
1: मुसीबतें और जरूरतें कभी बता के नहीं आती, ऐसे में मनापुरम फाइनेंस के साथ लीजिए एक स्मार्ट डिसीजन ताकि आप मुश्किलों का सामना कर सकें।
2: आपके हर फाइनेंशियल इमरजेंसी में आपके साथ मनापुरम फाइनेंस जो लाए हैं इजी गोल्ड स्कीम, जिसमें जितने दिनों का होगा लोन उतना ही होगा इंटरेस्ट।
1: अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें नजदीकी मनापुरम फाइनेंस शाखा में या टोल फ्री नंबर 1800420223 पर कॉल करें।
5: तो देखो सुनियो आपा सीमा मिश्रा और साथिया ने गैडो गीत और बीरे बाद में आपा सुनिया संदेशा। संदेशा भी देखो बड़ा काम रहा आया करे, जानकारी पूरी मिल जाया करे कई तरह की सरकारी योजना में रही और भी कई तरह रहा। और अब जी की बात है नी मुक्ता बहन की आपारो जी को धोरा धरती है जंगल मंगल देश है ई रो कोई गीतर लो सुनो चावरिया है जंगल मंगल देश अच्छो लागे सरिता गोस्वामी गैडो है इन्हें सुनो चावरिया है पटेल नगर मलोट पंजाब सुन डॉक्टर रमेश कुमार जजूरिया गीता रानी गगनदीप बेबी आरजू जजूरिया गांधी चौक रोपड़ पंजाब सु हरदेव मीका बलविंदर बीरक जेतक मीका बीरक आर आशीर्वाद भवन बल्लभ गार्डन बीकानेर सु एलसी शहजादा कमला देवी पंवार गीता रानी राजकुमार मयंक सत्यनारायण लालचंद वंशिका पंवार आर अनन्य पावर।
6: और देखो कुंजीलाल भाई अपन कने मेल भी आ रहा है और अब एक मेल आयो है दत्रेगी भाटापारा छत्तीसगढ़ सु हीरामणि वर्मा पारस मणि वर्मा पुष्पेंद्र।

और इन अलावा एक और मेल आया गोविंद देवनाथजी वाला श्री करमपुर राजस्थान से, राजू टुटेजा, खुशहाल टुटेजा, मनोहर टुटेजा, गुड्डू जिन्हू शिव सेठी और अभी और भी तो सुनना चाह रहे हैं। इन सागे सागे एक मेल और आयो है अपन खाने गांव पंजेरिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश में सत्येंद्र कुमार चंदोलिया आदर्श सार्थक अलौकिक चंदोलिया, तो साहु फरमाइशी गीत सुनना चाह रहे हैं जंगल मंगल देश, तो सुना साहु मीठो सो गीत।

0: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
1: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
2: यह संदेश यूनेस्को और आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है। जलवायु और भूख, यह एक संदेश है यूनेस्को की तरफ से। जलवायु परिवर्तन दुनिया भर की खाद्य प्रणालियों को बाधित करता है, उत्पादन से लेकर उपलब्धता तक, और इससे भूख का खतरा बढ़ता है। कुछ इलाकों को शायद थोड़ा फायदा हो, लेकिन ज्यादातर जगह पर खराब मौसम, कम फसल और बढ़ती कीमतों के कारण खाद्य की कमी होने लगती है। सबसे ज्यादा असर पड़ता है गरीब लोगों पर। साथ ही अस्थिर खाद्य प्रणालियां खुद भी जलवायु परिवर्तन को बढ़ाती है। इसलिए अब हम जलवायु परिवर्तनों का सामना करने वाली खाद्य प्रणालियों पर ध्यान दे रहे हैं, ताकि भूख और जलवायु की समस्याओं से बचा जा सके। और इससे भी बड़ी बात, अशांत खाद्य प्रणालियां खुद भी जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा देती हैं। इसलिए आज जरूरत है उन खाद्य प्रणालियों पर ध्यान देने की जो क्लाइमेट के बदलाव से जूझ सकती हैं, ताकि भूख और जलवायु दोनों संकट से निपटा जा सके। यह एक दिलचस्प तथ्य है, 2020 में दुनिया की लगभग 10% आबादी को निरंतर कुपोषण का सामना करना पड़ा।

0: मुक्ताबेन देखो कई मेल और एउटा है गीत सुनन सारू और अब जी को गीत है वो है ढोला थारो बंगलो बड़ो न्यारो लागिया करे सा और गायोड़ो है दीपाली साठेरो और इन्हें सुनो चावरिया है लेवाई सु गुलाब दास मानिकपुरी लक्षणपुर सु विश्वनाथ साहू रिंगनी सु दिनेश वर्मा बिलाई सु मुकेश शर्मा दतरंगे सु भागवत वर्मा
1: और इन्हें सुनने वास्ते मैंने कागज लिखे है बाबा रामदेव रोड गंगा शहर बीकानेर सु दिव्या सारस्वत मुरली मनोहर सारस्वत तथा लता सारस्वत दादा बाबू रोड गिरिड झारखंड सु मोहम्मद यासीन अंजान साइमा नवाज हसन नवाज बाबू अहद निफ्रा नाज बेबी चाहत और चक 15 पीएस जिला श्री गंगानगर राजस्थान सु सरवजीत सिंह जोसन सरजीत कौर जोसन रोविन और सिडनी ऑस्ट्रेलिया सु भी देखो अपना कितना श्रोता है जिका अपने बार सु भी पसंद कर रहे अपने प्रोग्राम और इनके अलावा रायपुर छत्तीसगढ़ सु विनोद बंडलकर वीना बंडलकर विविधा बंडलकर
0: और एक दो मेल और आयोड़ा छत्तीसगढ़ भाटापारा सु दतरंगे सु द्वारिका प्रसाद किशोर कुमार दीपक कुमार जावेंद्र कुमार महादेव घाट अमलेश्वर सु डोमन ठाकुर सुमन मिथिलेश तारनी सूरज सुजला ज्योति और रयांश ठाकुर तो ए सब सुनो चावरिया है दीपाली साठेरो ढोला थारो बंगलो
1: तो सुना सर

0: तो देखो सुनियो आपा दीपाली साठे यार साथियां रे गयोड़ो गीत और अबे जिको अगलो गीत है बिने सुनन सारू जी का मेल करियोड़ा है मुक्ता बहन बताओ देखानी कौन कौन इनमें सुनने चावरिया है।
1: देखो इन्हें भोपालगढ़ राजस्थान सु धर्मेंद्र शिंपा कपिल शिंपा पूजा परिहार और मुजफ्फरपुर बिहार सु आर्यन राज रोहित राज हैप्पी आनंद और इरे सागे सागे मने एक कागज और मिले है गोविंद पुरा सु दातार सिंह संगीता तुषार सिंह रिंकी शेखावत और ई अलावा देखो तोलाराम भाई एक और मार्कन कागज आयो है गांव जाखोद राजस्थान सु शंभु दयाल खटक बिमला देवी अमरजीत खटक सुंदरलाल खटक योगेश कुमार खटक दीपक कुमार खटक और कुमारी पूजा खटक।
0: बिल्कुल देखो और साधु सर सुनो चावरिया है ओम प्रकाश मनु प्रकाश शिव प्रकाश वेद प्रकाश सुहान आदर्श नगर मलोट सु राज शर्मा मीना शर्मा योगेश शर्मा मेंडी सौरव साइना आर निवान शर्मा मोहम्मद सरबास डूंगरगढ़ सु मोहम्मद असगर पवार मोहम्मद अकबर पवार राबिया मुन्नी बरकत गुलजार अजीज और असगर भाई कनेरा मोहला पटियाला सु देखो बत्ता परिवार है मुकेश नीलम नितिन पलक किरण गीतू निहारिका और वंश बत्ता।
1: और तो तोलाराम भाई हरजस सुनना चाहे है और अपा सुनावा ने मिठो सो हरजस।
0: बिल्कुल

0: तो साहब भी आप मीठे स्वर्जस्व हो और अब आप अगर आप मैंने आपका फरमाइशी प्रोग्राम गीत सुनना चाहो हो, आपकी कोई फरमाइश करनी चाहो तो आप मैंने फरमाइश भेज सको हो। और भी रोटी काणो है ग्रामीण जगत बीकानेर @gmail.com।
1: तो आज रे कार्यक्रम रो भगत हो रही है पूरो मुक्ताबेन लेवा पाइलोगा सु सीख घना घना मोकला मोकला राम राम।

अभी श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम ग्रामीण जगत। यह आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज पर और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं हमारे सांध्यकालीन सभा के प्रसारण। स्टूडियो घड़ी में 7:45:10 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है सुगम संगीत की श्रृंखला में आपको सुनवाते हैं। सबसे पहले संध्या काल का समय है तो ये आवश्यक है कि हम इस संध्या काल में प्रभु स्मरण करें। तो हिंदू श्लोकों के आधार पर इस सुगम संगीत कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं।

आनंद कुमार की आवाज़ में अभी आपने और उनके साथियों की आवाज़ में अभी आपने ये हनुमान जी की आरती सुनी। सुगम संगीत का यह कार्यक्रम आप आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में जय जय हे शनि राजदेव, साथ में है सुरेश वाडेकर।

आनंद कुमार और उनके साथियों की आवाज में अभी आपने जो श्लोक सुना, इसके साथ ही सुगम संगीत का एक कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज पर, FM 101.6 मेगा हर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं हमारे सांध्यकालीन सभा के प्रसारण। मरुधरा के माटी का गौरव और बीकाना की संस्कृति सांस्कृतिक सुगंध लेकर हाजिर है बीकानेर दर्पण का अब शानदार 153वां अंक। आदरणीय श्रोताओं, यहाँ की हवेलियों के कंगूरे जहां इतिहास की गौरव गाथा कहते हैं, वहीं यहाँ का आधुनिक साहित्य आने वाले कल की नई इबारत लिखता है। कला और संस्कृति के इस अनूठे संगम को समेटे आज हम आपको रूबरू करवाएंगे शहर की साहित्यिक और सांस्कृतिक फिजाओं में तैरती नई तरंगों से। विरासत को सहेजने और संवारने के सिलसिले में आइए हम सब हम सफर बनते हैं। आज के इस विशेष सफर के इस रसमय यात्रा की रचनाकार हैं, प्रस्तुति है श्रीमती पुनीत बिश्नोई की। इन शब्दों को जीवंत कर रहे हैं अपने स्वर देकर श्री महेश उपाध्याय और सूत्रधार की भूमिका में संयोजन किया है श्री अमित सिंह ने। तो दिल थामिए और आनंद लीजिए बीकानेर की इस सुरीली दास्ता का। अंक लेकर हाजिर हो रहे हैं महेश उपाध्याय। कार्यक्रम का नाम है बीकानेर दर्पण। लीजिए, आपकी सेवा में हाजिर।

0: कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को महेश उपाध्याय का नमस्कार। बीकानेर दर्पण के इस अंक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। श्रोताओं, पिछले सप्ताह बीकानेर में हुए आयोजनों गतिविधियों में से कुछ कार्यक्रमों से हम आपको इस अंक में रूबरू करवाएंगे, जिसमें धार्मिक आस्था परंपराओं के साथ साथ नारी शक्ति के कदम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने की बात भी करेंगे। सबसे पहले हम आपको लिए चलते हैं जगन्नाथ जी की यात्रा में। जी हाँ, दिनांक 16 जुलाई को स्थानीय राजकीय अणसाबाई हॉस्पिटल के सामने स्थित जगन्नाथ जी के पौराणिक मंदिर से रथ यात्रा रवाना होकर बीकानेर के विभिन्न मार्गों से होते हुए स्थानीय रतन बिहारी पार्क स्थित मंदिर में पहुंची। इसी दिन से ये 9 दिवसीय उत्सव आरंभ हो गया, जिसके तहत विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन होंगे। अधिक जानकारी के लिए हमने बात की देवस्थान विभाग बीकानेर के उपायुक्त श्री गौरव सोनी से।
1: आकाशवाणी बीकानेर की ओर से आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। बीकानेर के अंदर एक बहुत बड़ा उत्सव, अभी जिसको हम धार्मिक उत्सव कहें, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा को लेकर के। हालांकि अगर हम पूरे देश की बात करें तो एक नाम जैसे जगन्नाथ जी का लेते हैं तो जगन्नाथपुरी का नाम आता है, उड़ीसा में जहाँ स्थित है एक बहुत बड़ा मंदिर, विश्व प्रसिद्ध है। लेकिन बीकानेर का इतिहास भी कम नहीं रहा है। यहाँ भी जगन्नाथ जी का मंदिर को लेकर के और एक आस्था का जो फैलाव है वो बहुत ही शानदार है। यहाँ अभी आज से एक जो है रथ यात्रा को लेकर कार्यक्रम हो रहा है, महाउत्सव हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की तैयारियाँ हैं और क्या क्या इसमें होने वाला है?
2: जी नमस्कार, मैं सभी आकाशवाणी के प्रबुद्ध श्रोताओं को देवस्थान विभाग की तरफ से, मैं सहायक आयुक्त गौरव सोनी, सभी को नमस्कार कहता हूँ। जी बताना चाहूँगा कि ये जो रथ यात्रा महोत्सव है ये अपने उड़ीसा में जो जगन्नाथपुरी में प्रतिवर्ष एक भव्य रूप में पूरे विश्व भर का सबसे बड़े धार्मिक उत्सवों में से एक है, बिल्कुल उसी की तर्ज पर पूरे भारतवर्ष में जहाँ जहाँ पे भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर हैं और उसी क्रम में बीकानेर में भी जो यहाँ पर राजकीय आत्मनिर्भर श्रेणी का देवस्थान विभाग का मंदिर है भगवान जगन्नाथ जी का, यहाँ से ये यात्रा का कार्यक्रम शुरू होता है जो इस साल जो है 16 से लेके 24 जुलाई तक लगभग 9 दिन का

0: ये कार्यक्रम रहेगा और बड़ा ही भव्य और सुंदर आयोजन बीकानेर की परंपरा में होता है। इसके पीछे भी एक किंवदंती है। कहा जाता है कि तत्कालीन समय एक बार बड़े अकाल की स्थिति थी बीकानेर राज्य में, तब मरुस्थल का बड़ा प्रसार हुआ और उस समय यहाँ के राज दरबार बड़े चिंतित थे और उसी समय संयोगवश जो है उड़ीसा से कुछ पंडे पुजारी भगवान जगन्नाथ जी, सुभद्रा जी और बलभद्र जी की मूर्तियाँ लेकर के यहाँ से प्रवास पर थे। तो जैसे इन्होंने नगर में प्रवेश किया तो लगातार 3 दिन तक बताते हैं मूसलाधार बारिश हुई और इतनी बारिश हुई कि सारा अकाल जो है वो समाप्त हो गया और धन धान्य शस्य श्यामलाम वाली स्थिति हो गई। तो भगवान जगन्नाथ जी के प्रति जो यहाँ के राज दरबार थे तत्कालीन, उन्होंने बड़ी श्रद्धा प्रकट की और भगवान के निमित्त ये जमीन दान में दी और इस मंदिर की स्थापना की। इस प्रकार लगभग 200 वर्ष के करीब पुराना ये मंदिर है जिसका जो है पूरा प्रबंधन आज की दिनांक में देवस्थान विभाग राजस्थान सरकार का विभाग करता है। तो ये जो कार्यक्रम है 9 दिवसीय, इसमें भगवान जगन्नाथ जी की पूरे जोश और खरोश के साथ पूरे शहरवासी, इसमें सभी समाज के प्रबुद्ध जन, बाल बच्चे, महिला पुरुष, धर्म प्रेमी जन, साधु संत और राजनीतिज्ञ लोग इत्यादि सभी लोग इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं और एक भव्य समारोह के रूप में वहाँ से लगभग शाम को 5 बजे ये यात्रा शुरू होके और शहर के प्रमुख मार्ग से होते हुए कोर्ट गेट इत्यादि से होते हुए KEM रोड होते हुए और रतन बिहारी पार्क स्थित भगवान रतन बिहारी जी का जो मंदिर है यानी देवस्थान विभाग का यहाँ कार्यालय है यहाँ तक आएगी। और कहा जाता है कि भगवान इस समय जो है अपने मौसी के घर जो है घूमने जाते हैं, बिल्कुल उसी तर्ज पर भगवान यहाँ पधारेंगे और फिर यहीं इनका प्रवास रहेगा। 9 दिन तक यहीं विराजेंगे भगवान। उन 9 दिनों में डेली जो है सुबह शाम दोनों समय भव्य आरती, भगवान का पूजन, बहुत ही विशेष श्रृंगार और विशेष भोग की जो है ये व्यवस्था और कार्यक्रम रहेगा। भजन इत्यादि के कार्यक्रम होते रहेंगे। बहुत ही उत्साह और उमंग का एक माहौल पूरे शहर में रहेगा। शहर भर से लोग यहाँ, एक बड़ा अच्छा रेला सा बना हुआ रहेगा, दिन भर चहल पहल रहेगी, लोग बाग आएंगे, भजन कीर्तन इत्यादि करेंगे और एक एन्जॉय के रूप में मतलब बड़ा ही अच्छा माहौल देखने को मिलेगा। धर्म और संस्कृति और कला और इसकी एक त्रिवेणी पूरी एक प्रवाहित होने लगेगी। इस प्रकार का यह भव्य कार्यक्रम रहता है। यहाँ देवस्थान विभाग के अधिकारी कर्मचारी भगवान का पूरी व्यवस्था श्रृंगार और स्वागत करेंगे और उसके 9 दिन के उपरांत इस प्रकार ये कार्यक्रम संपन्न होगा।
1: श्रोताओं, अब बात करते हैं भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा को देखने आई भक्तगणों से।
2: संतोष अग्रवाल।
3: संतोष जी, मैं देख रहा हूँ यहाँ रतन बिहारी पार्क में जो मंदिर है यहाँ रथ यात्रा आने वाली है, आप भी पूरा जो है दर्शन करने के लिए देखने के लिए आए, कैसा लग रहा है?
2: बहुत अच्छा लग रहा है, हम तो सदियों से आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है रथ यात्रा जाने के लिए, इसलिए हम यहाँ आए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। रथ यात्रा तो इतना होता है भगवान का, इतना दिव्य दर्शन होता है यहाँ पर, सब लोग दूर दूर से आते हैं, इतनी भीड़ होती है, सब कुछ होता है यहाँ, इतनी अच्छी व्यवस्था है पानी की और सब व्यवस्था है, सब अच्छा अच्छा है।
3: एक जगन्नाथपुरी में है मंदिर उड़ीसा में, वैसे ही रथ यात्रा ये हो रही है, तो एक अपने बीकानेर के लिए बड़ी बात,
2: ये बड़ी बात है। हमारे सब वहाँ पे जगन्नाथपुरी में होती है वैसे की वैसी होती है, बहुत आनंद आता है यहाँ पे, बहुत आनंद आता है।
3: क्या नाम आपका?
2: कृष्णा कुमार।
3: मैं देख रहा हूँ यहाँ रथ यात्रा आने वाली है और आप भी बहुत ही उत्साह से आए हुए, कैसा लग रहा है?
4: अच्छा लग रहा है, हम यात्रा देखने के लिए आए हैं अभी और अच्छा लग रहा है, जैसे सारे इकट्ठे हो रहे हैं, सारा मंदिर और सजा हुआ है, अच्छा आनंद आ रहा है, बढ़िया।
5: नवरत्न तिवारी, सेटेलाइट में सेवा करता हूँ, सेवा भगवान की।
3: बताइए कैसा लग रहा है?
5: हर साल बहुत बहुत बहुत अच्छा लगता है, हर साल आता हूँ मैं दर्शन करने, भगवान की कृपा है। जगन्नाथ जी की
6: दीपिका राठी। जगन्नाथ चक्का नैन नीलांचल वाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। जगन्नाथ चक्का नैन नीलांचल वाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ओ मेरी नैया है अब तो तेरे हवाले, ओ मेरी नैया है अब तो तेरे हवाले। जगन्नाथ चक्का नैन नीलांचल वाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। जगन्नाथ चक्का नैन नीलांचल वाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। जगन्नाथ चक्का नैन नीलांचल वाले।

0: तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, वो मेरी नैया है अब तो तेरे हवाले, वो मेरी नैया है अब तो तेरे हवाले, जगन्नाथ चक्का ने नीलांचल वाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले।
1: बोले माताराम, क्या नाम आपका?
2: मेरा नाम रंबा है।
1: कैसा लग रहा है यहाँ?
2: बहुत अच्छा है।
3: तारा
1: जी, मैं देख रहा हूँ जगन्नाथ जी की यात्रा आने वाली है, रथ यात्रा आने वाली है, कैसा लग रहा है?
2: अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है।
1: बीकानेर में उड़ीसा की तरह ही प्रोग्राम
4: होना चाहिए।
5: रामेश्वर लाल सोनी, जय श्री जगन्नाथ महाप्रभु जी, जय श्री बलभद्र भैया जी और सुदर्शन चक्र सहित सुभद्रा मैया जी की भी जय हो। बीकानेर में ये भगवान जगन्नाथ जी का बहुत प्राचीन मंदिर है, लगभग 200-225 साल पुराना, और बड़ी भगवान की कृपा है। और जब भी ये रथ यात्रा साल में एक बार निकलती है तो खूब आनंद आ जाता है। तो आज मैं रोज़ तो उसके साथ आता हूँ, लेकिन आज नहीं आ पाया। आज वहाँ वो रामचरितमानस चल रहा था खरनाड़ा मैदान में, तो लेट हो गया, तो मैंने कहा इधर चल के फिर आनंद लेंगे, इधर से रथ यात्रा का स्वागत करेंगे इधर से। तो जगन्नाथ महाप्रभु जी की बहुत बहुत जय।
2: नाम मेरा मालती गहलोत। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही उत्साह है, सब घर के काम छोड़कर हम यहाँ जल्दी से आए हैं यहाँ पे, ताकि मेरी रथ यात्रा का आनंद लें। और उत्साह तो ये बहुत बरसों से चल रहा है, आज से है नहीं, हम जब भी शादी होकर आए तब से लेकर आज तक हमेशा ही आते हैं यहाँ पे। बहुत ही आनंद आता है, बहुत ही अच्छा लगता है
6: यहाँ पर। देखो हमारे फ्रेंड्स भी मिल जाते हैं मंदिर वाले, जो भजन गाने आते हैं सुबह सुबह आते हैं, जो मेरे से भी कई टाइम से आया नहीं जाता। बाकी भगवान के आने का सुना जब उत्साह हो गया मन में आपको जैसे, और सबसे मिल ही लें, भगवान के दर्शन भी कर लें, सब कुछ हो जाता है काम। और बाकी ये रथ यात्रा आने वाली है, सबको आप उत्साह देख ही रहे हो, लोगों का देख लो, बाकी बहुत अच्छा लगता है।
1: जगन्नाथपुरी यहाँ जो है उड़ीसा में है, पुरी में, तो वहाँ जैसा होता है वैसा ही लगता है आपको?
6: हाँ, मैं वहाँ तो मैं गई थी, लेकिन इन दिनों में नहीं गई मैं। हाँ, आगे पीछे होया हुआ है, बाकी उत्साह वही वाला है, उत्साह वही वाला है। वहाँ मंदिर में वीडियो हमने देखे हैं अभी मोबाइल में, जो वहाँ पर वैसे ही वीडियो डाल रखे जैसे वहाँ होता है, बहुत अच्छा लगता है। भगवान को वैसे ही तैयार किया हुआ है, वैसे ही जनता आगे पीछे हो रही है उनके, भाई हम पहले दर्शन करें, हम पहले करें, ऐसे बहुत ही अच्छा लगता है हमें,
7: बहुत अच्छा है। आज भगवान का दर्शन हो रहा है, इतना बड़ा जगन्नाथ भगवान एक साथ से आ रहे हैं, बहुत बढ़िया लगा उत्सव।
0: हमारा एक हाथ ही जगन्नाथ है, बोलो जय जगन्नाथ,
1: जय जगन्नाथ।
8: और अब सुनिए मंदिर में भजन प्रस्तुति की एक झलक। श्रोताओं, यहाँ भक्तों के लिए सेवाएं भी लगी थी, क्या कहते हैं ये सेवादार?
9: ये जगन्नाथ जी की यात्रा आ रही है, उसके उपलक्ष्य में हमारे राज रतन बिहारी जी के मित्र मंडल जो है उन्हों की तरफ से मिल्क रोज का प्रोग्राम रखा गया है।
1: ये हर साल होता है?
9: हर साल होता है, आते टाइम भी हम मिल्क रोज पिलाते हैं, या कभी कुछ और आइटम है, वापसी ये 24 तारीख को यहाँ से वापिस जाएंगे, उस टाइम में भी हम कोई ना कोई सेवा लगाते हैं।
1: कितने भक्त आते हैं, क्या कोई आइडिया?
9: भक्त कम से कम 500-600, रथ के साथ में 500-700 आदमी आ जाते हैं। ऐसा है, हर महीने की अमावस को हम यहाँ पर भोजन और मिठाई का भंडारा भी रखते हैं, और निर्जला 11 है या जो भी वार त्यौहार आते हैं उसमें कुछ ना कुछ हम प्रोग्राम यहाँ पर अपनी मित्र मंडली द्वारा रखा जाता है। पूरा ग्रुप है 10-15-20 आदमियों का, सब रिटायर्ड कर्मचारी है या दुकान वाले हैं।
1: बिल्कुल निस्वार्थ भाव से जो बीकानेर की परंपरा संस्कृति है उसको आप निभा रहे हैं।
9: इस प्रोग्राम को करते हमको कम से कम 4 या 5 साल हो गए हैं। बिल्कुल निस्वार्थ सेवा की जाती है, कोई भी प्रोग्राम हो, निर्जला एकादशी को है,
10: रथ यात्रा आती है, यथरथा जाती है, और साल में 11 महीने हम यहाँ पर अमोस को भंडारा करते हैं। एक दिवाली का नहीं होता, 11 महीने नॉन स्टॉप होती है। हाँ, लगभग 250-300 आदमी और गरीब लोग और जो चलते तो कोई भी आता है उसमें ये नहीं कहते अमोस का भंडारा ठाकुर जी का है, हम ठाकुर जी के दरबार में रहते हैं और ठाकुर जी का भंडारा करते रहते हैं।
8: श्रोताओं, इस भीड़ में से एक बच्चा

0: मेरे पास आकर बोलता है कि मेरी भी रिकॉर्डिंग करो, मैं एक संदेश देना चाहता हूँ। सुनिए इस बच्चे ने बड़ों को क्या संदेश दिया।
1: हेलो भाई, मेरा नाम है देवेश भाटी, मैं हूँ बैंक देवता पुरानी की नानी हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप कोई भी भक्त हो, बस प्रसाद मत छोड़ो। मैं चाहता हूँ, बस इतना चाहता हूँ, भगवान के प्रसाद मत छोड़ो। पता नहीं क्या क्या करता है भगवान के प्रसाद का अपमान क्यों होता है, अपमान होता है क्यों होता है? भगवान के प्रसाद को अपन को अपमान करना चाहिए, आप बताओ।
2: नहीं होना, बिल्कुल अपमान नहीं करना चाहिए।
1: तो कुछ जने कहते हैं ऐसा,
2: कैसे?
1: जैसे भगवान की थालियां फेंक देते बचा कर, ऐसे और ऐसे
2: झूठा है ना, झूठा छोड़ देते।
1: हाँ, यही बुजुर्ग जानवर खाते फिर ये झूठा। ऐसा अच्छा लगता है कि इंडिया में ऐसा होना चाहिए क्या?
2: नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए।
1: मैं आकाशवाणी से बोल रहा हूँ, मेरा नाम देवीशी है। मैं चाहता हूँ कि भगवान का प्रसाद कोई भी अपमान ना करे, बस मैं इतना चाहता हूँ, बस थैंक यू।
0: और अब रथ यात्रा की एक झलक जो जगन्नाथ मंदिर से रतन बिहारी पार्क तक आई, सुनिए ये झलक।

0: श्रोताओं, अब चलते हैं झूलेलाल मंदिर। जी हाँ, सिंधी समाज के आराध्य देव झूलेलाल मंदिर जो बीकानेर के रथ खाना में स्थित है, यहाँ श्रद्धा और उल्लास के साथ 16 जुलाई से 40 पाठ महोत्सव आरंभ हुआ। पहले दिन मंदिर को सजाया गया, अलौकिक श्रृंगार किया गया। पंडित मनोज उपाध्याय ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण कर 40 दिवसीय चालीसा महोत्सव का शुभारंभ किया। मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री सतीश रिजवानी से हमने बात की, तब आपने बताया।
1: सतीश रिजवानी, अमरलाल मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष।
2: भैया, देख रहा हूँ कि झूलेलाल जी के मंदिर में हम बैठे हैं और अभी एक विशेष प्रकार के उत्सव आयोजन यहाँ आपके संचालित हो रहे हैं, क्या कहेंगे और इस मंदिर के बारे में भी, क्योंकि झूलेलाल जी का मंदिर बीकानेर में बहुत कम है, तो इसकी भी अगर आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बता पाएं और अभी के उत्सव के बारे में।
1: झूलेलाल मंदिर रथखाना कॉलोनी में ये 70 साल से ज़्यादा समय से ये झूलेलाल का मंदिर है और ये मंदिर इतना मतलब प्रचलित है सिंधी समाज के लिए कि इस मंदिर में दूर दूर से लोग, हमारे सिंधी समाज के लोग और अन्य जो पंजाबी और समुदाय के जो बीकानेर के लोग इस झूलेलाल मंदिर में दर्शन करने आ रहे हैं।
2: अभी जो आयोजन चल रहे हैं सर, उसके बारे में आप बताएं।
1: चालिया महोत्सव जो आज इतने समय से, आज ये कम से कम देखा जाए तो जिस समय अखंड भारत, जिस समय भारत और पाकिस्तान एक थे, तब से सिंध से ये चालिया महोत्सव मनाया जा रहा है। उसी आयोजन को आज भारत में जहाँ जहाँ सिंधी समाज, चाहे हिंदुस्तान में हो चाहे विदेशों में हो, जहाँ जहाँ सिंधी समाज है, ये चालिया महोत्सव 40 दिन का झूलेलाल साईं का उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है।
2: जी, अभी जो प्रतिदिन कार्यक्रम चल रहे हैं और कितने दिन के कार्यक्रम हैं और उसमें क्या क्या हो रहे हैं?
1: अभी 16 जुलाई से 24 अगस्त तक ये चालिया महोत्सव सिंधी समाज जहाँ जहाँ बीकानेर क्या पूरे भारत में जहाँ जहाँ होगा मनाया जाता है। सुबह का 6 बजे से लेकर 6:30-7 बजे तक आरती और इसके अलावा आयोजन होते हैं। शाम को प्रतिदिन 40 ही दिन मातृशक्ति और हमारे अमरलाल मंदिर ट्रस्ट के बैराना मंडली, कलाकार, भजन कीर्तन और ये आयोजन होता है।
2: कितने श्रद्धालु यहाँ दिन भर आ जाते हैं सुबह शाम?
1: सिंधी समाज के जितने भी परिवार हैं सुबह या शाम अपनी हाजिरी झूलेलाल मंदिर में आस्था के प्रतीक में जरूर लगाते हैं। 40 दिन

0: का ये आयोजन इतना उत्साह और उमंग से मनाया जाता है कि एक समय में सिंधी समाज इसके इतना मतलब इंतजार करता है कि कब 16 जुलाई और 24 अगस्त आए तो चालिया महोत्सव धूमधाम से मनाएं।
1: बीकानेर अपने आप में जो है धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं को लेकर चलने वाला शहर है और यहाँ सभी धर्मों के लोग भी एक साथ मिलते हैं। हम देखते हैं कि सभी जगह हर धर्म के लोग भी, तो क्या सिंधी समाज के अलावा भी यहाँ जो भक्तगण आते हैं?
0: बिल्कुल सही कहा आपने, यहाँ पूरे रथखाने में जितने भी सिंधी समाज के अलावा अन्य जितनी भी जातियाँ हैं, चाहे हमारे पंजाबी के हैं या इसके अलावा अदर कास्ट में जैसे जटिया परिवार या और जो भी समुदाय के लोग हैं, बिल्कुल आस्था से इस झूलेलाल मंदिर में आज नहीं 70 सालों से इस पर इनके यहाँ आस्था रही है और झूलेलाल साई उनकी हर मनोकामनाएँ पूरी करते रहे हैं।
1: धार्मिक परंपराओं के बाद आपको लिए चलते हैं गंगा शहर स्थित तेरापंथ भवन। जी हाँ, तेरापंथ महिला मंडल गंगा शहर की ओर से 3 दिवसीय श्री उत्सव 2026 का श्री गणेश हुआ। यह उत्सव नारी शक्ति को आर्थिक संबलता प्रदान करने के अलावा मनोरंजन और जीवन कौशलता का उद्देश्य भी पूरा कर रहा है। यह उत्सव दिनांक 17 जुलाई से 19 जुलाई तक गंगा शहर स्थित तेरापंथ भवन में जारी रहेगा। इसमें विभिन्न सामानों की दुकानें लगी हैं, जहां अधिकतर महिलाएं ही कार्य कर रही हैं। आइए बात करते हैं तेरापंथ महिला मंडल की मंत्री श्रीमती रेखा चोरडिया से।
2: मेरा नाम रेखा चोरडिया, मंत्री तेरापंथ महिला मंडल गंगा शहर।
1: रेखा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत आकाशवाणी की ओर से। और मैं ये देख रहा हूँ कि तेरापंथ भवन में एक रौनक सी लगी हुई है और खासतौर से नारी शक्ति की, तो नारी शक्ति कुछ भी कर सकती है। तो आप अपना जो है इस संस्थान के बारे में, कौन सी संस्था है, क्या ये कर रही है और क्या उद्देश्य है आप?
2: तेरापंथ महिला मंडल गंगा शहर, जो कि अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल के निर्देशन में साल भर के सारी गतिविधियों को संपादित करता है, जिसमें शिक्षा से रिलेटेड भी काम होते हैं, सामाजिक स्तर पर भी होते हैं, आध्यात्मिक स्तर पर भी होते हैं। जैसा हमें केंद्र से निर्देश होता है उसके अकॉर्डिंग हमारी महिलाएं काम करती है। अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल के निर्देशन में 500 से भी ज़्यादा शाखाएं हैं, जिसमें मोर देन 70,000 लेडीज़ वर्क कर रही है और ये एक NGO के रूप में काम कर रहा है और इसमें हमारे परम पावन आचार्य श्री महाश्रमण जी और साध्वी प्रमुखा विश्रुत विभाजी के निर्देशन में सारी गतिविधियाँ, सारे निर्देश हमें मिलते हैं और उनके इंगित को देखकर महिला मंडल सारे काम करती है।
1: यहाँ कितने स्टॉल्स लगी हुई है और हालांकि जो है अलग अलग तरह के बहुत से सामान हैं, कुछ अगर आप बता पाएं तो?
2: बिल्कुल, श्री उत्सव 2026 तेरापंथ महिला मंडल गंगा शहर में यह आयोजित हुआ है। यहाँ पर मोर देन 70 स्टॉल्स हैं, जिसमें इमिटेशन ज्वेलरी, टॉयज, क्लोथिंग, बेडशीट हब, पर्स, फुटवेयर और सारी कैटेगरी जो लेडीज स्पेशली शॉपिंग करना चाहती है, होममेड फूड प्रोडक्ट्स। और इसका हमारा मेन मोटो ये रहता है, जो हमारे इसकी लेडीज है उनको हम प्रायोरिटी देते हैं, जो घर से काम करती है, और महिला उद्यमिता को प्रोत्साहन करने का हमारा ये कदम रहता है और सबके सहयोग से, सभी सभा संस्थाओं के सहयोग से हम इसको संपादित करते हैं।
1: हमारे देश के प्रधानमंत्री भी नारी शक्ति को बहुत मानते हैं, उन्होंने एक स्वयं सहायता समूह नाम से एक स्कीम भी शुरू कर रखी है। खासतौर से वो आपका जो मैं ये देख रहा हूँ यहाँ पर, ये वही रूप है कहीं ना कहीं, तो क्या कहना चाहेंगे कि देश के आर्थिक विकास में नारी शक्ति का बहुत बड़ा योगदान है?
2: बिल्कुल, जैसा कि हम जानते हैं जिस तरह पुरुष का रोल भी समाज में इम्पोर्टेंट है, वैसे नारी भी, आज की नारी, सशक्त नारी जिनको मैं कहूँ, जो अबला नहीं सबला के रूप में आज समाज में उपस्थित है, बिल्कुल उसका एक कहीं ना कहीं योगदान है। और हम समाज में देखते हैं सभी सभा संस्थाओं में, पहले शायद पुरुषों के समाज होते थे, लेकिन उस हर वर्ग में हमने एक महिला विंग, एक लेडीज विंग का निर्माण किया है, इसी दृष्टिकोण में ध्यान में रखते हुए कि महिलाएं भी बहुत बेहतर कर सकती है और उनके होने से समाज में एक नया रूप और एक सुंदर रूप और हर तरह से, चाहे वो सामाजिक हो चाहे आर्थिक हो, हर पक्ष को वो सुंदर रूप से संपादित करते हुए समाज को नई गति प्रगति दे सकती है।
1: 3 दिन यहाँ अलग अलग तरह के कार्यक्रम भी होने, स्टॉल में तो चलो सेल या जो भी हो रहा है, लेकिन कुछ खास कार्यक्रम आपने जो है महिलाओं के लिए लगाए हैं और शाम को भी कुछ एक्टिविटीज होनी है, वो आप बताइए।
2: बिल्कुल, हमारे इस एग्जीबिशन में इतनी सारी शॉप्स है कि शॉपिंग इज नॉट मोर इम्पोर्टेंट, कनेक्टिविटी इज मोर इम्पोर्टेंट। और हमने इसके साथ साथ वर्कशॉप भी अरेंज की है, ताकि हम जानते हैं कि दोपहर का विजिट थोड़ा कम रहता है, तो उस टाइम का हम कैसे सदुपयोग करें, तो उसके लिए हमने बेकिंग की क्लास, गिफ्ट पैकिंग की क्लास एंड हेयर स्टाइल

0: की क्लास नॉमिनल चार्ज 100 रुपीज रजिस्ट्रेशन फीस पर, जिसमें आज हमारी बेकिंग की क्लास हो गई है और कल परसों हेयर स्टाइल और गिफ्ट पैकिंग की है। इसके साथ हमने अट्रैक्शन पॉइंट के लिए इवनिंग इवेंट्स का भी आयोजन किया है, जिसमें फन फिएस्टा जो गेम जोन की तरह, ताकि वो बच्चों के लेडीज को और विजिटर्स को इन्वॉल्व करने के लिए, उनके उनसे कनेक्ट होने के लिए। और नेक्स्ट डे हमारा कवि सम्मेलन है, जिसमें हमने महिला कवित्री मनीषा जी आर्य को बुलाया है और हमारी बहनें भी उसमें प्रस्तुति देंगी। और थर्ड डे हमारा फाइनल डे मैजिक शो, जो शायद सबको अट्रैक्ट करता है, खासकर बच्चों को। तो हमारा ये मोटो है कि इस एग्जीबिशन में विजिट बहुत अच्छी हो, क्योंकि बाहर से भी हमारी बहुत सारी स्टॉल्स आई है, तो उन्हें भी लगे कि शॉपिंग कम ज़्यादा हुई लेकिन कोई खास बात नहीं है, लेकिन विजिटर्स की संख्या प्लस उनसे कॉन्टैक्ट होने का, जो रूबरू होने का एग्जीबिशन का मोटो रहता है, वो ज़रूर पूरा हो, ये हमारा उद्देश्य है।
1: और अब कुछ स्टॉल्स पर चलते हैं, क्या कहती हैं ये महिला उद्यमी।
2: शुभ नाम आपका?
3: गोल्डी कोचर
2: जी। मैं ये देख रहा हूँ कि तेरा पंथ भवन में आपके स्टॉल लगी है और आप ज़्यादातर जो है महिलाओं के कपड़े जो है क्लॉथ्स लेके हैं, क्या कहना चाहेंगे? पहला दिन है,
3: मैं प्रीमियम क्वालिटी में रेगुलर कॉटन से लेके प्रीमियम क्वालिटी के कॉटन और क्रेप और मसलिन जैसे फैब्रिक्स में डील करती हूँ, इस तरह के सूट्स वगैरह रखती हूँ। और तेरापन भवन के एग्जीबिशन को लेके मेरे अंदर काफ़ी उत्साह था, क्योंकि पिछली बार भी जब मैंने लगाया था यहाँ, मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। मुझे ज़्यादा समय नहीं हुआ ये काम शुरू किए हुए, उसको देखते हुए मुझे यहाँ बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। और आज का जो प्रोग्राम इन्होंने आयोजन किया है, इसकी व्यवस्थाएं मुझे बहुत अच्छी लगी और बहुत सहयोग मिला सभी का। मेरे पास कॉटन और रेगुलर कॉटन से ले के प्रीमियम क्वालिटी तक के सूट्स मिल जाएंगे, कॉर्सेट्स मिल जाएंगे, शॉर्ट कुर्ती, सिंगल कुर्तीज़ और प्योर फैब्रिक की साड़ीज़ भी अवेलेबल है
2: जी। शुभ नाम आपका?
4: सृष्टि बोथरा।
2: सृष्टि, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ बहुत से आइटम जो है रंग बिरंगे आइटम भी लगे हैं, पेंटिंग भी लगी है, क्या कहना चाहेंगी? किस तरह से सेल करना उद्देश्य या कोई और उद्देश्य की भी इसके पीछे छुपा हुआ है?
4: हमारा उद्देश्य लोगों को इस चीज़ से इंट्रोड्यूस करवाना है, मतलब कि कुछ लोग ऐसे हमें पता लग रहा है कि जिनको ये चीज़ें पता ही नहीं है, और आर्ट को और लोगों में फैलाना है, तो वैसे और कलरफुल चीज़ें दिखे और आर्टिस्टिक वे में लोगों की नज़रें बढ़े। वैसे यहाँ पे फ़ोन चार्म्स लगे हुए हैं, कीचेन्स लगे हुए हैं, राखी लगी हुई है, फ्लावर्स है बहुत सारे, बुकेज जो रहते हैं, अपन असली फूल खरीदते हैं, दो दिन बाद वो मुरझा जाते हैं, तो उसका ऑल्टरनेट है, फूल लेके उसके बुकेज बनवा सकते हैं। पोर्ट्रेट्स है, पेंटिंग्स है, अपनी तस्वीरें बनवाएं जो लोग, वैसे बड़े बड़े सब कुछ, मतलब खुद के हिसाब से कस्टमाइज़ करवा सकते हैं। जो अपन को चाहिए होता है वो चीज़ एक रहता है कि भाई हमें कमरे में ये लगाना है, हमें साइड टेबल पे फ्रेम्स लगाने हैं, वो सब चीज़ें, तो खुद के हिसाब से एक मोल्ड हो जाती है वो चीज़। तो उस वो हमारा थॉट है कि लोगों को जो चाहिए वो उनकी सोच के हिसाब से हम बना पाएँ, आर्ट को उनके हिसाब से, उनकी नज़रों से देख के हम अपने दुनिया में क्रिएट कर पाएँ।
2: हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत, क्या कहीं ना कहीं महिलाएं ये स्टॉल लगा करके, ये चीज़ें सेल करके आत्मनिर्भर बन रही है?
4: बिल्कुल, धीरे धीरे बन रही है। आर्ट में धीरे धीरे, मतलब बहुत कुछ सीखने का मिल रहा है हमें यहाँ पे, और बहुत नई नई चीज़ें भी पता लग रही है, तो आत्मनिर्भर बन रही है।
5: नमस्ते, मेरा नाम पूजा महात्मा है और मैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी का बिजनेस करती हूँ, घर से भी करती हूँ और एग्जीबिशन भी लगाती हूँ और ऑनलाइन भी सेल करती हूँ मैं।
2: यहाँ किस तरह के आइटम है और क्या उम्मीद आप लगाते हैं कि आज, क्योंकि जो है पहला ही दिन है, दो दिन और अभी शेष है, क्या कहोगे?
5: नहीं, यहाँ पे रिस्पांस बहुत अच्छा है, कस्टमर भी बहुत अच्छे आ रहे हैं, मतलब बाइंग पावर भी बहुत अच्छी है लोगों की। और यहाँ से क्या है कि ये हमारे घर के जैसे पास भी है, तो इससे हमें नए कस्टमर जुड़ने की भी बहुत उम्मीद है।
6: नमस्ते, मेरा नाम है झरना सोनी और मैं हूँ यहाँ पे श्री उत्सव में सिल्वरम स्टॉल नंबर 7। यहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, यहाँ पे हमें नए नए कस्टमर्स भी जुड़े हैं और उनकी उत्सुकता और उन्हें किस चीज़ में अभी इंटरेस्ट है, लेटेस्ट ट्रेंड्स के बारे में, जैसे हम भी अपडेट रहते हैं और हमें और भी जानने का मौका मिला है। हमारे पास 9 to 5 प्योर सिल्वर ज्वेलरी के अंदर सिलेक्शन, इम्पोर्टेड कलेक्शन भी मिल जाएंगे और सारा कलेक्शन हमारा इटालियन बैंकॉक के ऊपर बेस रहेगा। और हमारे पास नाइट की हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है और हम होलसेल में भी डील करते हैं।
1: ये था आज का बीकानेर दर्पण, संयोजन था श्री अमित सिंह का, प्रस्तुति थी श्रीमती पुनीत विश्नोई की और वाचक स्वर था महेश उपाध्याय का। अब अगले अंक तक कुछ और गतिविधियों के साथ हम हाजिर होंगे, तब तक अनुमति दीजिए, नमस्कार।

तो हम हाजिर हुए मरुधरा की माटी का गौरव और बीकानेर की सांस्कृतिक सुगंध लेकर। बीकानेर का ये 153वां अंक आपके लिए प्रस्तुत किया श्रीमती पुनीत बिश्नोई ने। शब्द जीवंत कर रहे थे श्री महेश उपाध्याय और संयोजन श्री अमित सिंह का था। यह आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल। आप सुन रहे हैं हमारे सांध्यकालीन सभा के प्रसारण।

0: यह आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। लीजिए राजस्थानी धरती की वही सौंधी धनक पुनः सूंघने का प्रयास करते हैं। ढलते हुए सूरज की लाली से चुराई हुई ये लालिमा लेते हैं और आपको सुनवाते हैं लोक संगीत। लोक संगीत कार्यक्रम में आपका हार्दिक अभिवादन।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: लोक संगीत कार्यक्रम में सुनिए चंद्र गंधर्व को मारो वीर शिरोमणि देश प्यारो लागे सा।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

सीमा मिश्रा के द्वारा गाए इस लोकगीत के साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। यह आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज पर और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 8:45 होने को आपसे कुछ देर में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार संध्या और उसके पश्चात न्यूज़ @9।

0: वहीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा, आर्टिकल 370 फिल्म के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार, ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिलेगा। तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों के शामिल होने के बाद नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया को लोकसभा अध्यक्ष ने सदन में अलग बैठने की अनुमति दी। अहमदाबाद में पटाखों के कारखाने में भीषण आग में 5 लोगों की मृत्यु, प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। प्रमुख बुनियादी ढांचों और सैन्य ठिकानों पर हमलों के साथ होर्मुज जलडंब मध्य पर ईरान और अमेरिका का युद्ध तेज हुआ। ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह में भारत की ध्वजवाहक होंगी। और फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज रात मियामी स्टेडियम में फ्रांस का सामना इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की आज घोषणा की गई। आर्टिकल 370 फिल्म के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिलेगा।
1: जो आप चाहे मुझे एनआईए की तरफ से भेजें, आईडी की तरफ से भेजें या कश्मीर का सीएम बनाकर भेजें, इट विल मेक नो डिफरेंस। टेररिज्म धंधा है। इट हैज नथिंग टू डू विद ड्रामा ऑफ आजादी। इट हैज एवरीथिंग टू डू विद मनी। अगर अमेरिका पाकिस्तान को अरबों रुपए देता है बिन लादेन से पकड़ने के लिए, तो पाकिस्तान उसे ढूंढने का नाटक करेगा, पकड़वाएगा नहीं, ताकि उसकी फंडिंग चलती रहे। सेम सिचुएशन वैली।
0: ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार देने की घोषणा की गई है।
2: राजकुमार पेरियसामी को तमिल फिल्म अमरन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार दिया जाएगा। संजय मिश्रा को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता और सचना नमिदास और रूपश्री वरकड़ी को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार मिलेगा। शाश्वत सचदेव और जीवी प्रकाश कुमार को सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। अभय जोधपुरकर और वैकुम विजयलक्ष्मी को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायन का पुरस्कार दिया जाएगा। तेलुगु फिल्म चिन्ना काथा काडू को सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का पुरस्कार मिलेगा। कल की 2898 एडी को भरपूर मनोरंजन वाली सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया जाएगा। कैप्टन मिलर को राष्ट्रीय और सामाजिक मूल्यों को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। श्रीकांत को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म, मारन को सर्वश्रेष्ठ गुजराती फिल्म, लहरी को सर्वश्रेष्ठ उड़िया फिल्म, मिथ्या को सर्वश्रेष्ठ कन्नड़ फिल्म, सुनीता को सर्वश्रेष्ठ मणिपुरी फिल्म और ढोली को सर्वश्रेष्ठ गढ़वाली फिल्म का पुरस्कार दिया जाएगा। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल हुए तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों के लिए सदन में अलग बैठने की व्यवस्था को मंजूरी दे दी है। श्री बिरला ने कहा कि महाराष्ट्र के उप

0: मंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में 6 शिवसेना यूबीटी सांसदों के विलय को भी मंजूरी दी गई है। इन 6 सांसदों के विलय के बाद लोकसभा में शिवसेना की संख्या 7 से बढ़कर 13 हो गई है। संसद के मॉनसून अधिवेशन से पहले सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन में सहयोग की अपील करेगी। मॉनसून अधिवेशन 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होने और पारित किए जाने की संभावना है। गुजरात के अहमदाबाद में पटाखा कारखाने में भीषण आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह कारखाना रामोल गात्राड रोड पर है।
1: भीषण आग की घटना की खबर मिलते ही नजदीकी बसराल कैंप से रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने तुरंत स्थल पर पहुंचकर फंसे हुए श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाला और शवों को बरामद किया। घायल श्रमिकों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती किया गया है। अहमदाबाद फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है और फिलहाल कूलिंग ऑपरेशन जारी है। हादसे की सूचना मिलते ही नगर आयुक्त और मेयर सहित अहमदाबाद नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे। इस दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने प्रत्येक मृतक के परिजनों को 4,00,000 रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि देने की भी घोषणा की है। पुलिस की प्रारंभिक जांच के अनुसार यह पटाखा फैक्ट्री अवैध रूप से संचालित की जा रही थी। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे में जान गंवाने वालों के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में स्थानीय प्रशासन प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। उन्होंने घोषणा की कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के निकट परिजन को 2,00,000 रुपए की अनुग्रह राशि और घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं और उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि घायलों को हर संभव चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने भी हादसे में घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत का ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम वन आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है। यह प्रक्षेपण आज दोपहर 12:05 पर हुआ। इस रॉकेट का निर्माण हैदराबाद की निजी कंपनी स्काई रूट एयरो स्पेस ने किया है। एक रिपोर्ट।
2: भारत में निजी क्षेत्र की कंपनी स्काईरूट एयरोस्पेस द्वारा अंतरिक्ष में पेलोड स्थापित करने की क्षमता भी हासिल कर ली है। भारत ये उपलब्धि हासिल करने वाला विश्व का तीसरा देश बन गया है। विक्रम वन भारत का पहला निजी तौर पर विकसित कक्षीय प्रक्षेपण यान है। इसे हैदराबाद स्थित एयरोस्पेस स्टार्टअप स्काईरूट एयरोस्पेस द्वारा डिजाइन और विनिर्मित किया गया है। आगमन मिशन के अंतर्गत विकसित ये रॉकेट छोटे उपग्रहों के लिए किफायती प्रक्षेपण सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर बनाए गए विक्रम वन में 3 ठोस प्रणोदक चरण और 1 तरल ईंधन वाला रमन इंजन लगाया गया है। यह अंतरिक्ष की सबसे निचली कक्षा में पेलोड स्थापित करने में सक्षम है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायणन ने विक्रम वन से जुड़ी पूरी टीम को बधाई दी है।
3: आज देश में पहली बार एक निजी रॉकेट ने सफलतापूर्वक एक सैटेलाइट को उसकी कक्षा में स्थापित किया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है और इससे युवाओं में आर्थिक विकास और वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना बढ़ती है। वास्तव में ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है।
0: होर्मुज जलडमरू मध्य पर संघर्ष बढ़ने के कारण अमरीका और ईरान ने आज हमले तेज कर दिए। कुवैत में हमलों से भारी तबाही होने की खबर है। वहां ईरान ने वाटर डिसेलिनेशन संयंत्र और एक तेल सुविधा केंद्र पर हमले किए। इन हमलों में कई लोग घायल हुए और बिजली उत्पत्ति बाधित हुई है। पिछले 2 दिन में डिसेलिनेशन संयंत्र पर यह दूसरा हमला था। पेयजल के लगभग 90% हिस्से का डिसेलिनेशन के जरिए आने के कारण देश में चिंता बढ़ गई है। कुवैत के विदेश मंत्रालय ने ईरानी हमलों में महत्वपूर्ण नागरिक अवसंरचना को निशाना बनाए जाने की कड़ी निंदा की है। मंत्रालय ने ईरान पर अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन करने का आरोप लगाया है।

रूस पर यूक्रेन के ड्रोन हमलों में 8 लोगों की मृत्यु हो गई और 60 घायल हुए हैं। रूस के अधिकारियों ने बताया कि रूस के प्रमुख ऑनलाइन रिटेलर के 2 विशाल गोदामों पर यूक्रेन ने रात को ड्रोन हमले किए। एक गोदाम रूस के तांबो ओब्लास्ट क्षेत्र में और दूसरा मॉस्को में है। ओब्लास्ट क्षेत्र के कोटोवस्क में रात्रि पाली में काम करने वाले 7 श्रमिकों की मृत्यु हो गई और 25 घायल हो गए। वहीं मॉस्को के इलेक्ट्रोस्टल शहर में एक व्यक्ति मारा गया और 36 घायल हुए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा की पत्नी चनम्मा के निधन पर शोक व्यक्त किया। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि चनम्मा अपनी विनम्रता और समाज सेवा के प्रति अटूट समर्पण के लिए जनप्रिय थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दुख की घड़ी में उनकी संवेदनाएं श्री देवेगौड़ा और उनके पूरे परिवार के साथ हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि चनम्मा शांत स्वभाव, गरिमा और परिवार के प्रति अटूट समर्पण की प्रतीक थी। वे श्री देवेगौड़ा जी के लंबे सार्वजनिक सेवा काल में एक मजबूत स्तंभ के रूप में खड़ी रही। श्री देवेगौड़ा HD कुमारस्वामी और पूरे शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए उन्होंने कामना की कि ईश्वर उन्हें इस अपूर्णीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज नई रामनगर देहरादून एक्सप्रेस रेलगाड़ी को वर्चुअल माध्यम से झंडी दिखाकर रवाना किया। रेल मंत्री ने कहा कि ये रेलगाड़ी सप्ताह में 2 दिन संचालित होगी और उत्तराखंड के कुमाऊं तथा गढ़वाल क्षेत्रों के बीच बेहतर रेल संपर्क उपलब्ध कराएगी। श्री वैष्णव ने बताया कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना का कार्य भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। उत्तरी रेलवे ने जम्मू डिवीजन के कठुआ रेलवे स्टेशन का नाम तत्काल प्रभाव से बदलकर शहीद कप्तान सुनील कुमार चौधरी कठुआ रेलवे स्टेशन कर दिया है। स्टेशन का नया अल्फा कोड MSKT होगा, जबकि अन्य सभी विवरण अपरिवर्तित रहेंगे। अनारक्षित टिकट प्रणाली और यात्री आरक्षण प्रणाली में स्टेशन MC सुनील कठुआ के रूप में दिखाई देगा। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से इस निर्णय की घोषणा की और कठुआ के लोगों को बधाई देते हुए इस कदम को शहीद के बलिदान और राष्ट्र के प्रति सेवा को श्रद्धांजलि बताया। ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन के को ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वज वाहक चुना गया है। दोनों दिग्गज एथलीट 23 जुलाई को उद्घाटन समारोह में 126 सदस्यीय भारतीय दल का नेतृत्व करते हुए तिरंगा लेकर मार्च करेंगी। भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष PT ऊषा ने आज इसकी आधिकारिक घोषणा की। मीराबाई चानू लगभग एक दशक से भारत की अग्रणी भारोत्तोलक रही हैं। उन्होंने 2021 के टोक्यो ओलंपिक में महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता और उसके बाद 2022 के बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वहीं लवलीना बोरगोहेन ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य और 2023 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल किया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में तीसरे स्थान के प्लेऑफ मैच में आज फ्रांस का सामना इंग्लैंड से होगा। यह मैच देर रात 2:30 बजे अमेरिका के मियामी स्टेडियम में खेला जाएगा। वहीं अर्जेंटीना और स्पेन कल रात न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में विश्व कप के फाइनल में आमने सामने होंगे। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई हैं। महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में आज सिंधु ने चीन की चेन यूफी को पहले गेम में हराया। दूसरे गेम में चेन यूफी की चोट के कारण सिंधु को वॉकओवर मिला। प्रतियोगिता के फाइनल में कल सिंधु का सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचने के साथ ही पीवी सिंधु विश्व की 9वें नंबर की खिलाड़ी बन गई हैं। 31 वर्षीय सिंधु ने वर्ष 2026 की शुरुआत विश्व रैंकिंग में 18वें स्थान से की थी। उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा का पवित्र अड़ापा विजय अनुष्ठान आज शाम पुरी के श्री गुंडिचा मंदिर में पूर्ण श्रद्धा के साथ संपन्न हो रहा है। यह वार्षिक रथ यात्रा के सबसे आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण समारोह में से एक है। रथ यात्रा के सफल समापन के बाद कल पवित्र त्रिमूर्ति को वैदिक मंत्रों, भक्ति गीतों और सदियों पुराने मंदिर अनुष्ठानों के बीच पारंपरिक पहंडी जुलूस में उनके

संबंधित रथों से श्री गुंडीचा मंदिर के गर्भगृह में ले जाया जा रहा है। मौसम विभाग ने कल पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, सिक्किम और उत्तराखंड में तेज बारिश और कुछ स्थानों पर अत्यधिक बारिश की चेतावनी जारी की है। अगले दो दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, केरल, माहे, ओडिशा और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश की आशंका है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा। आर्टिकल 370 फिल्म के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार। ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिलेगा। तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों के शामिल होने के बाद नेशनल सिटीजंस पार्टी ऑफ इंडिया को लोकसभा अध्यक्ष ने सदन में अलग बैठने की अनुमति दी। अहमदाबाद में पटाखों के कारखाने में भीषण आग में 5 लोगों की मृत्यु। प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। प्रमुख बुनियादी ढांचों और सैन्य ठिकानों पर हमलों के

0: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोल हमारा चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज पर, एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत।
1: कौन है ये जिसने दोबारा मुड़के मुझे नहीं देखा? Who is he?

0: चौथे रविवार को सुबह 8:30 बजे सुनिए कार्यक्रम हेल्दी बीकाना, आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल की प्रस्तुति।
1: फिल्म कभी हाँ कभी ना, इसे सुनिए अमित कुमार और उदित नारायण की आवाज में ये गीत।

इस फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ही कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। यह आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज पर और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। आप सुन रहे हैं हमारे शांतिकालीन सभा के प्रसारण रात्रि के 9:30 होने को हैं। अब से कुछ देर में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली के निर्देशक अगला कार्यक्रम चित्र भारती।

0: संपादकीय प्रेमचंद की कहानियों पर बनी फिल्में स्मृति शेष में नमन, फिल्म जगत की कुछ ऐसी हस्तियों को जो इस बीच हमसे बिछड़ गई। जानी मानी अभिनेत्री और निर्देशक विजया मेहता।
1: विजया जी एक ऐसी अभिनेत्री थी जिसे दिग्गज कहना भी कम होगा। अलग किस्म के सब्जेक्ट्स ले आना, सवाल उठाना, नए नए नाटककार पेश करना, ये सारा योगदान विजया जी ने बड़े काबिलियत के साथ किया।
0: जानी मानी फिल्म निर्माता पहलाज निहलानी, जाने माने फिल्मकार, अभिनेता, गायक और संगीतकार के भाग्यराज।

सबसे पहले संपादकीय प्रेमचंद की कहानियों पर बनी फिल्में। प्रेमचंद हिंदी साहित्य के शिखर पुरुष हैं। 31 जुलाई 1880 को उनका जन्म हुआ था। जुलाई का महीना प्रेमचंद की याद का महीना होता है, इसलिए संपादकीय में आज हम चर्चा कर रहे हैं उन फिल्मों की जो प्रेमचंद की कृतियों पर आधारित हैं। प्रेमचंद का लेखन भारतीय समाज, भारतीय ग्रामीण जीवन, किसानों की पीड़ा और स्त्रियों की सामाजिक स्थिति का बाकायदा यथार्थवादी चित्रण करता है। आज भी प्रेमचंद उतने ही प्रासंगिक बने हुए हैं। शायद यही वजह है कि विभिन्न भाषाओं के फिल्मकार अपनी फिल्मों के लिए प्रेमचंद की कृतियों को चुनते रहे हैं। उनकी कृतियों पर बनी फिल्मों की बातें हम आगे करेंगे, पर पहले एक दिलचस्प बात। मुंशी प्रेमचंद स्वयं भी मुंबई सिनेमा जगत से जुड़े रहे थे। असल में हंस और जागरण पत्रिकाओं के संपादन की वजह से उन्हें जो नुकसान हुआ, उसके बाद उन्होंने फिल्मों के लिए लिखने और कमाई करने का मन बनाया था। सन 1934 में आर्थिक तंगी के चलते वे बंबई आए और फिल्म कंपनी अजंता सिनेटोन में लेखक के रूप में काम करने लगे। यहां उन्होंने दो फिल्में लिखी, मिल मजदूर और नवजीवन। अपने समय के विख्यात फिल्मकार नानू भाई वकील ने 1934 में उनके प्रख्यात उपन्यास सेवा सदन पर इसी नाम की एक फिल्म बनाई थी जो प्रेमचंद को पसंद नहीं आई थी। उन्हें फिल्म जगत का काम करने का तरीका अच्छा नहीं लगा, इसलिए उन्होंने अपना अनुबंध तक पूरा नहीं किया और साल भर के अंदर ही बनारस लौट गए। मशहूर तमिल फिल्मकार कृष्ण स्वामी सुब्रमण्यम ने सन 1938 में सेवा सदन पर तमिल भाषा में इसी नाम की एक

हिंदी फिल्म के उलट तमिल फिल्म मूल कृति के प्रति ज्यादा ईमानदार थी। इस फिल्म में प्रसिद्ध गायिका एमएस सुब्बलक्ष्मी ने नायिका सुमन की भूमिका निभाई थी। प्रेमचंद के उपन्यास रंगभूमि पर इसी नाम की फिल्म बनी सन 1941 में। मुंशी प्रेमचंद भले ही वापस लौट गए हों, लेकिन मुंबई में उनकी कृतियों पर फिल्में बनने का सिलसिला जारी रहा। सन 1959 में प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी दो बैलों की कथा पर कृष्ण चोपड़ा ने एक फिल्म बनाई हीरा मोती। इस फिल्म में बलराज साहनी और निरूपा राय मुख्य

मुंशी प्रेमचंद की अमर कृति गोदान सन 1936 में प्रकाशित हुई थी। इस उपन्यास पर सन 1963 में इसी नाम की फिल्म आई, जिसे त्रिलोक जेटली ने निर्देशित किया था। इस फिल्म में मुख्य भूमिकाएं थी राजकुमार, कामिनी कौशल, शशिकला और महमूद की। इस फिल्म के गाने अनजान ने लिखे और संगीत दिया जाने माने सितार वादक।

1966 में ऋषिकेश मुखर्जी ने प्रेमचंद के उपन्यास गबन पर इसी नाम की फिल्म बनाई थी। कलाकार थे सुनील दत्त, साधना, मीनू मुमताज, लीला मिश्रा और कन्हैया लाल वगैरह। संगीत शंकर जयकिशन का था।

0: के महानतम फिल्मकारों में गिने जाते हैं सत्यजीत रे। उन्होंने पूरे करियर में सिर्फ दो हिंदी फिल्में बनाई और संयोग देखिए कि दोनों ही फिल्में मुंशी प्रेमचंद की कहानियों पर आधारित थी। सन 1977 में सत्यजीत रे ने बनाई शतरंज के खिलाड़ी। ये सत्यजीत रे की पहली हिंदी फिल्म थी जो प्रेमचंद की इसी नाम की कहानी पर आधारित थी। इसमें अवध के दो कुलीन मित्रों मीर और मिर्जा की कहानी है जो शतरंज में इतने डूबे रहते हैं कि अंग्रेजों के हाथों अपने राज्य के पतन की परवाह तक नहीं करते। मुख्य कलाकार थे संजीव कुमार, सईद जाफरी, अमजद खान और शबाना आजमी वगैरह।
1: प्यादे तो ठीक है
2: जी,
1: तो वजीर और बादशाह भी ठीक है, लेकिन ये पीले घोड़े और रुख में गड़बड़ ना कीजिएगा। सुन लीजिए ना, पीला टमाटर, नीली घोड़ा, मिर्ची रुख।
0: सत्यजीत रे की दूसरी हिंदी फिल्म थी प्रेमचंद की कहानी सतगति पर आधारित इसी नाम की फिल्म। इस फिल्म में ओम पुरी, स्मिता पाटिल और मोहन अगाशे ने अभिनय किया था।
3: बिजिया की सगाई कर रहा हूँ महाराज, आप दया करके चले चलते और इसका साइड सगन बिचार दे।
4: क्या खड़ा हो गया यहाँ से?
5: मैं यहाँ खाली बैठा हूँ कि जब जो जहाँ बुलाए उसी दम चल पड़ो।
0: ये कहानी जातिगत शोषण की एक क्रूर और मार्मिक कथा है। बांग्ला के दिग्गज निर्देशक मृणाल सेन ने प्रेमचंद की मशहूर कहानी कफन को आधार बनाकर 1977 में तेलुगु की एक फिल्म बनाई ओका उरी कथा। इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ तेलुगु फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला था। छोटे पर्दे पर मुंशी प्रेमचंद की कहानियां खूब लोकप्रिय हुई। दूरदर्शन के सुनहरे दिनों में उनके उपन्यास पर आधारित एक धारावाहिक आया निर्मला, जिसे बहुत पसंद किया गया। इसके अलावा गुलजार ने दूरदर्शन पर प्रेमचंद की चुनिंदा कहानियों को लेकर एक धारावाहिक बनाया तहरीर मुंशी प्रेमचंद की। ये सीरियल भी काफी चर्चित रहा। इसके तहत पूस की रात, ईदगाह, ठाकुर का कुआं और नमक का दरोगा जैसी कई कहानियों को छोटे पर्दे पर शिद्दत से पेश किया गया था। भले ही प्रेमचंद को जीते जी बंबई की फिल्मी दुनिया रास नहीं आई, पर कमाल की बात यह है कि उनके जाने के बाद सत्यजीत रे और मृणाल सेन जैसे कालजयी फिल्मकारों ने उनकी कहानियों को वो सम्मान और गहराई दी जिसकी वे हकदार थी। मुंशी प्रेमचंद की स्मृति को हमारा नमन। ये था संपादकीय मुंशी प्रेमचंद की कृतियों पर बनी फिल्में। और अब स्मृति शेष। स्मृति शेष। स्मृति शेष में आज हम

0: करने जा रहे हैं जो हमसे बीते दिनों बिछड़ गईं। सबसे पहले नमन करते हैं जानी मानी अभिनेत्री और फिल्मकार विजया मेहता को, जिन्होंने 30 जून को इस असार संसार से विदा ली। बरसों पहले की बात है, तकरीबन 90 का दशक, दूरदर्शन पर एक सीरीज आती थी लाइफलाइन। अस्पतालों के जीवन, डॉक्टरों और इंटर्न्स के जूझने और मरीजों से जुड़े अनुभवों पर केंद्रित था ये धारावाहिक। इसकी निर्देशक थी विजया मेहता। एक से बढ़कर एक कलाकार थे इस सीरीज में, तन्वी आजमी, के रैना, मोहन जोशी, शफी नामदार, इलारूम, पंकज कपूर, ए के हंगल जैसी नामी हस्तियों का जुड़ाव था इस धारावाहिक से। विजया मेहता की पहचान सिर्फ लाइफलाइन टीवी सीरियल नहीं है, उन्होंने भारतीय फिल्म जगत को कुछ कालजयी और बेहद कलात्मक फिल्में दी हैं, पिस्टन जी, राव साहब और हमीदाबाई की कोठी वगैरह। उन्होंने रुपहले पर्दे पर कई बार अभिनय किया, खासतौर पर श्याम बेनेगल की फिल्म कलयुग में, गोविंद निहलानी की फिल्म पार्टी में दमयंती रानी की उनकी भूमिका सबको याद है। उनकी निर्देशित फिल्म राव साहेब सन 1985 में आई थी और जयवंत दलवी के मराठी उपन्यास पर आधारित थी। इसी उपन्यास पर जयवंत दलवी ने बैरिस्टर नाम का एक नाटक भी रचा था। इस फिल्म को 2 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले थे। विजया मेहता को सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला और इसी फिल्म के लिए श्याम भूतकर को मिला सर्वश्रेष्ठ कला निर्देशक का राष्ट्रीय पुरस्कार। सन 1988 में विजया मेहता ने पिस्टन जी नामक फिल्म बनाई। असल में ये फिल्म मुंबई में 50 और 60 के दशक में मौजूद पारसी समुदाय की कहानी है।
1: तूने जरू की सूरत देखी है, उसकी आवाज सुनी है? 5 वर्ष के अंदर जरू की क्या हालत बना दी तूने। बच्चा मर गया, पप्पा स्ट्रोक थी बीमार, नहीं तू सुख नहीं बात करे। उस औरत ने तेरे को इतना सेल्फिश बना दिया है, पन खुदा सब देखता है, याद रख जे।
0: इस फिल्म को 2 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले, सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम का राष्ट्रीय पुरस्कार।
2: विजया जी एक ऐसी अभिनेत्री थी,
0: जानी मानी फिल्मकार और अभिनेता अमोल पालेकर
2: से दिग्गज कहना भी कम होगा। रंगायन जैसी संस्था का उन्होंने निर्माण किया, अलग किस्म के सब्जेक्ट्स ले आना, अलग किस्म के सवाल उठाना, अलग किस्म के नाटक पेश करना, नए नए नाटककार पेश करना, ये सारा योगदान विजया जी ने बड़े काबिलियत के साथ किया। मैं इतना ही कहूंगा कि विजया जी मेरी सीनियर थी, क्योंकि मैं सत्यदेव दुबे ग्रुप से था, उसको राइवल ग्रुप माना जाता था। मेरी और विजया जी की एक बड़ी प्यारी सी दोस्ती थी, एक बहुत अच्छा गहरा रिश्ता था।
0: विजया मेहता को हमारा विनम्र नमन। जानी मानी फिल्म निर्माता पहलाज निहलानी का 4 जून को निधन हो गया। पहलाज निहलानी की कहानी संघर्ष की दास्तान है। उनका जन्म 28 दिसंबर 1948 को सिंध पाकिस्तान में हुआ था। विभाजन के बाद परिवार सब कुछ छोड़कर आ गया। पहलाज निहलानी का बचपन मुंबई के कोलाबा में बीता। घर की हालत अच्छी नहीं थी, इसलिए पहलाज निहलानी ने पढ़ाई छोड़ दी और छोटे मोटे काम पकड़ लिए। फिल्मों से बचपन से उन्हें लगाव रहा था। वे कोलाबा की टॉकीजों के बाहर घंटों खड़े रहते। जेब खर्च के लिए वो कभी कभी फिल्मों के टिकट ब्लैक किया करते थे। इसी रास्ते उनकी मुलाकात सिनेमा जगत के कुछ लोगों से हुई और वे फिल्म संसार में बतौर क्लैपर बॉय शामिल हो गए। यहां उन्हें समझ में आया कि अगर अच्छी जिंदगी बितानी है तो फिल्मों से जुड़ा कोई बिजनेस करना होगा। धीरे धीरे पैसे जमा करके उन्होंने फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन का काम शुरू किया। वे छोटी फिल्मों के राइट्स खरीदते और उन्हें छोटे थिएटर्स में लगवाते। कुछ ही सालों में पहलाज निहलानी बंबई और गुजरात सर्किट के एक बड़े वितरक बन गए। सन 1982 में उन्होंने अपनी फिल्म कंपनी शुरू की, चिराग दीप इंटरनेशनल। उनकी पहली फिल्म थी हथकड़ी, साल 1982।

लड़ी कामयाब रही और पहलाज नेहलानी फिल्म जगत के दिग्गज प्रोड्यूसर्स में शामिल हो गए। सन 1985 के आसपास उन्होंने विरार के एक दुबले पतले लड़के को देखा जो कमाल का डांस करता था। उसका नाम था गोविंदा आहूजा। पहलाज नेहलानी ने इस नौजवान को लेकर 1986

0: 1981 में बनाई फिल्म इल्जाम. इस फिल्म ने गोविंदा को सुपरस्टार बना दिया. इसके बाद उन्होंने गोविंदा के साथ कई फिल्में की. 1992 शोला और शबनम, 1993 आंखी,
1: और लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता.
0: पहलाज निहलानी की प्रमुख फिल्में हैं आग ही आग, पाप की दुनिया और अंदाज 1994.
2: किसी से तुम प्यार करो तो फिर इजहार करो.
0: पहलाज निहलानी भारतीय फिल्म सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे थे. विनम्र नमन. 27 जून को हमसे विदा हो गए तमिल सिनेमा के जाने माने फिल्मकार, गायक और संगीतकार के भाग्यराज. भारतीय सिनेमा, विशेषकर तमिल और हिंदी सिनेमा के इतिहास में के भाग्यराज एक वन मैन आर्मी रहे. एक ही समय में फिल्म के लेखक, निर्देशक, अभिनेता और संगीतकार, सब कुछ एक साथ. मणिरत्नम से लेकर शोमैन राज कपूर तक पटकथा की उनकी जादुई समझ का लोहा मानते थे. जब रजनीकांत और कमल हासन अपनी अपनी स्टाइल से अभिनय की दुनिया पर राज कर रहे थे, तब के भाग्यराज एक साधारण सीधे साधे और डरपोक आम आदमी के रूप में तमिल सिनेमा में दर्शकों के दिल में उतर गए. के भाग्यराज का जन्म 7 जनवरी 1993 को तमिलनाडु के इरोड जिले के एक साधारण गाँव में हुआ था. भागीराज का मन बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल नहीं लगता था. वे अक्सर स्कूल से भागकर सिनेमा घरों में पाए जाते थे. उनकी इस आदत से परेशान होकर उनके पिता ने एक बार हताश होकर कह दिया था, ये लड़का जिंदगी में कभी कुछ कर नहीं पाएगा. पिता की ये कड़वी बात उनके दिल को चुभ गई. उन्होंने ठान लिया कि वे फिल्मी दुनिया में नाम कमाकर सबको दिखा देंगे. कॉलेज के दिनों में असफल होने के बाद अपनी जेब में कुछ रुपए और दिमाग में ढेर सारी कहानियां लेकर वे चेन्नई आ गए. यहां भाग्यराज ने कई हफ्तों तक निर्देशकों के दफ्तरों के चक्कर काटे. उन दिनों तमिल सिनेमा में एक नए निर्देशक अपनी यथार्थवादी फिल्मों से धूम मचा रहे थे. नाम था भारती राजा. भाग्यराज जब भारती राजा से काम मांगने गए तो उन्होंने कोई भारी भरकम डायलॉग नहीं सुनाया. उन्होंने भारती राजा को अपने गांव के किरदारों और वहां के लोगों के बात करने के अजीबोगरीब लहजे को इतने मजेदार ढंग से सुनाया कि भारती राजा हंसते हंसते लोटपोट हो गए. उन्होंने तुरंत के भाग्यराज को अपना सहायक निर्देशक बना दिया. के भाग्यराज ने भारतीय सिनेमा की कल्ट फिल्म 16 वैथिनीले में बतौर सहायक निर्देशक काम किया. इस फिल्म के कलाकार थे कमल हासन, रजनीकांत और श्रीदेवी. इस फिल्म में उन्होंने एक छोटा सा रोल भी किया था. 2 सालों के अंदर भाग्यराज ने अपनी काबिलियत साबित की और साल 1979 में फिल्म सुवरिल्लाद सिथिरंगल में बतौर निर्देशक और अभिनेता के रूप में एक शानदार शुरुआत की. ये फिल्म सुपरहिट रही.
3: நீ வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் எந்திரிச்சேன்.
4: நினைச்சேன் பணத்தை காணாம நினைச்சேன்.
3: ஐயோ தத்தியமா எனக்கு தெரியாது.
5: என்னம்மா
4: இந்த அறியாத்து பாத்தியாடா, பணத்தை எண்ணி வச்சிருந்தாடா. 30 ரூபாய் காணாமடா, 30 ரூபாய் காணாம்.
3: ஏடா அழகப்பா, நீ தானே போட்டிக்கோள இருந்து பணத்தை எடுத்த.
5: ஏப்பா விளையாடுறியா? நான் காலையில போன இப்பதானே வர்றேன்.
0: अस्सी के दशक में भाग्यराज का नाम फिल्म हिट होने की गारंटी बन गया था. उन्होंने तमिल सिनेमा को 2 ऐसी फिल्में दी जो आज भी फिल्म मेकिंग के छात्रों को दिखाई जाती हैं. मौन गीतोंगल सन 1981 में आई ये फिल्म

सन 1987 में आई अनिल कपूर की फिल्म जुदाई के कई हिस्से इसी फिल्म से प्रेरित थे। सन 1983 में के भागीराज की फिल्म आई मुंथानई मुदिचू। एक शिक्षक और गांव की शरारती लड़की की इस कहानी ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाया।

कुछ कामयाब फिल्में हैं चिन्नावीडू और इधू नम्मा आलू। बहुत कम लोग जानते हैं कि 80 और 90 के दशक की हिंदी सिनेमा की कई हिट फिल्में के भाग्यराज के दिमाग की उपज थी। अमिताभ बच्चन के डबल रोल वाली फिल्म थी आखिरी रास्ता। ये फिल्म असल में के भाग्यराज की फिल्म ओरू कैथीन डायरी की आधिकारिक रीमेक थी। इस फिल्म की कहानी, स्क्रीन प्ले और निर्देशन तीनों की बागडोर खुद के भाग्यराज ने संभाली।

तेलुगुया की फिल्म राजा बाबू के भागीराज की सुपरहिट तमिल फिल्म रासुकुट्टी की रीमेक थी। जितेंद्र की फिल्म मास्टर जी के भागीराज की ब्लॉकबस्टर फिल्म मूथने मुदुचू पर आधारित थी। 27 जून 2026 को भारतीय सिनेमा का ये चमकता सितारा हमेशा के लिए बुझ गया। विनम्र

इसलिए भाग्यराज को याद करते हुए हमने जिक्र किया उन्हें पहला मौका देने वाले निर्देशक भारती राजा का। कैसी विडंबना है कि इसी महीने भारती राजा भी हमसे बिछड़ गए। 10 जून को उन्होंने आखिरी सांस ली। भारती राजा भारतीय सिनेमा के उन गिने चुने निर्देशकों में से एक हैं जिन्हें 6 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिले। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया। महान निर्देशक मणिरत्नम से लेकर पटकथा के जादूगर के भाग्यराज तक बहुत सारी फिल्मी हस्तियां हैं जो भारती राजा को अपनी प्रेरणा मानती रही। भारती राजा तमिल सिनेमा के वो क्रांतिकारी फिल्म मेकर हैं जिन्होंने बंद स्टूडियो के शीशों को तोड़कर फिल्मों को गांव की असली मिट्टी, खुली हवा और यथार्थ की खुशबू से सराबोर कर दिया था। 70 के दशक के दक्षिण भारतीय सिनेमा का मतलब था भव्य सेट और स्टूडियो के भीतर पूरी शूटिंग, लेकिन भारती राजा ने आकर तमिल सिनेमा का पूरा भूगोल बदल दिया। भारती राजा का जन्म 17 जुलाई 1941 को तमिलनाडु के थेनी जिले के एक खूबसूरत गांव अल्ली नगरम में हुआ था। उनका असली नाम था चिन्नासामी। गांव के खेतों, तालाबों, लोकगीतों और ग्रामीण संस्कृति ने उनके मानस पटल पर गहरी छाप छोड़ी। वे अक्सर गांव के लोगों के बर्ताव को बहुत बारीकी से देखते थे। फिल्मों में आने से पहले वे स्वास्थ्य विभाग में एक क्लर्क की नौकरी पर थे, पर उनका दिल थिएटर में धड़कता था। आखिरकार नौकरी छोड़कर वे चेन्नई आ गए। सन 1977 में उन्होंने अपनी पहली फिल्म बनाई 16 वैथिनिले। इस फिल्म ने तमिल सिनेमा के सारे पुराने नियम तोड़ दिए। जब भारती राजा ने इस फिल्म की शूटिंग पूरी तरह से आउटडोर की तो चेन्नई के कई बड़े स्टूडियो मालिकों ने कहा, ये पागल लड़का पूरी फिल्म खराब कर देगा। आउटडोर में न अच्छी लाइटिंग होती है, न आवाज साफ आती है। लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो इसने इतिहास रच दिया। इस फिल्म में भारती राजा ने कमल हासन, रजनीकांत और श्रीदेवी को

राजा की फिल्में सिर्फ गांव की खूबसूरती नहीं दिखाती, वे गांव में फैली रूढ़िवादिता और जातिवाद पर करारा प्रहार भी करती हैं। खिसक के पोगुम रेल 1978 में आई ये फिल्म एक बेहद खूबसूरत प्रेम कहानी है जो अलग अलग गांवों में सामाजिक ताने बाने और रेलवे स्टेशन के इर्द गिर्द घूमती है। 1978 में आई सिगप्पू रोजक्कल, ग्रामीण फिल्मों के उस्ताद भारती राजा ने सबको चौंकाते हुए कमल हासन और श्रीदेवी को लेकर एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर बनाई थी। ये फिल्म बहुत कामयाब रही। 1987 में आई वेदम पुदिथु, ये फिल्म जाति व्यवस्था और धार्मिक पाखंड पर तीव्र प्रहार करती है। तमिल सिनेमा में इतिहास रचने के बाद भारती राजा ने हिंदी सिनेमा का रुख किया। 1986 में उन्होंने बनाई सवेरे वाली गाड़ी, ये उनकी तमिल कल्ट फिल्म किसक के पोगुम रेल का हिंदी रीमेक था। कलाकार थे सनी देओल

0: सन 1980 में भारती राजा ने अपनी फिल्म सिंगप्पू रोज़ाक्कल का हिंदी रीमेक किया रेड रोज के नाम से।
1: हम जिंदगी में सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन किसी से अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर सकते।
2: पिछले एक हफ्ते से मेरी बहन घर वापस नहीं लौटी।
0: 1984 में आई आज का एमएलए राम अवतार। इस फिल्म में राजेश खन्ना और शबाना आजमी ने काम किया था। 1983 में आई कुमार गौरव और पद्मिनी कोल्हापुरे के अभिनय वाली फिल्म लवर्स।

1984 में आई कानून क्या करेगा। सितारे थे सुरेश ओबेरॉय और दीप्ति नवल। भारती राजा को 6 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिले थे। 1982 में फिल्म अनाथा रथम के लिए, 1986 में फिल्म मुथल मरियाथाई के लिए, 1988 में फिल्म वेदम पुदिथु के लिए, 1985 में फिल्म करुथम्मा के लिए, 1996 में फिल्म अंती मंथराई के लिए और साल 2001 में कडाल पुक्कल के लिए। भारत सरकार ने सिनेमा में महत्वपूर्ण योगदान के लिए उन्हें साल 2004 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया था। विनम्र

राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती का जुलाई महीने का अंक। शोध, आलेख, स्वर और संपादन यूनुस खान। प्रस्तुति अनुश्री पाठक। राष्ट्रीय प्रसारण के लिए फिल्म पत्रिका चित्र भारती का निर्माण विविध भारती के मुंबई स्थित स्टूडियो

आकाशवाणी है। संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है देवव्रत मिश्र का सितार वादन। वाराणसी के प्रतिष्ठित संगीत घराने में जन्मे देवव्रत मिश्र ने अपनी मां प्रमिला मिश्रा से संगीत की प्रारंभिक

0: आकाशवाणी है। संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है देवव्रत मिश्र का सितार वादन। वाराणसी के प्रतिष्ठित संगीत घराने में जन्मे देवव्रत मिश्र ने अपनी मां प्रमिला मिश्रा से संगीत की प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण की और अपने पिता पद्मश्री पंडित शिवनाथ मिश्र के मार्गदर्शन में सितार की विधिवत शिक्षा प्राप्त की। आकाशवाणी के ए ग्रेड कलाकार देवव्रत मिश्र ने ठुमरी परंपरा और बनारस घराने के गायकी की विशिष्ट बारीकियां अपने दादाजी ठुमरी सम्राट पंडित महादेव प्रसाद मिश्र से सीखी। इस प्रभाव ने उनके सितार वादन को एक अनूठी पहचान दी। सितार वादन की शिक्षा में पोस्ट ग्रेजुएट और गोल्ड मेडल के साथ संगीत प्रवीण देवव्रत मिश्र ICCR के सूचीबद्ध कलाकार भी हैं। उन्होंने भारत और विदेशों में कई प्रतिष्ठित मंचों पर सितार वादन की सफल प्रस्तुतियां दी हैं। इनमें तानसेन संगीत समारोह, संकट मोचन संगीत समारोह, सप्तक संगीत समारोह और अंतर्राष्ट्रीय ध्रुपद मेला प्रमुख हैं। उन्होंने अमेरिका, कनाडा, स्पेन, फ्रांस, इटली और जर्मनी जैसे कई देशों में अपने सितार वादन से संगीत प्रेमियों को मंत्रमुग्ध किया है। देवव्रत मिश्र को नेशनल यूथ फेस्टिवल अवार्ड, स्वरमणि अलंकरण, काशी रत्न संगीत शिखर सम्मान, BHU कौस्तुभ सम्मान, जर्मन बेस्ट जैज क्रिटिक अवार्ड और वर्ल्ड म्यूजिक विजनरी अवार्ड USA से सम्मानित किया गया है। आज के कार्यक्रम में आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं आकाशवाणी के ए ग्रेड कलाकार प्रशांत मिश्र। देवव्रत मिश्र अपने सितार वादन का आरंभ राग जोग से कर रहे हैं। विलंबित और द्रुतगत 3 ताल में निबद्ध हैं।
1: दिस इज आकाशवाणी। इन द नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक टुनाइट वी ब्रिंग यू सितार रिसाइटल बाई देवव्रत मिश्रा। बॉर्न इनटू डिस्टिंग्विश्ड म्यूजिक घराना ऑफ वाराणसी, देवव्रत मिश्रा रिसीव्ड इनिशियल म्यूजिक ट्रेनिंग फ्रॉम हिज मदर प्रमिला मिश्रा एंड अंडरवेंट फॉर्मल ट्रेनिंग इन द सितार अंडर द गाइडेंस ऑफ हिज फादर पद्मश्री पंडित शिवनाथ मिश्रा। An A grade artist of Akashvani, Devbrat Mishra received distinctive lesson of Thumri tradition and vocal style of the Banaras Gharana from his grandfather, the great Thumri exponent Pandit Mahadev Prasad Mishra, an influence that lent a unique identity to his sitar playing. Postgraduate in sitar and Sangeet Praveen with gold medal, Devbrat Mishra is also an empaneled artist of ICCR. He has delivered successful sitar performances on numerous prestigious platforms, both in India and abroad. Notable among these are the Tansen Sangeet Samaro, Sankat Mochan Sangeet Samaro, Saptak Sangeet Samaro, and the International Dhrupad Mela. He has captivated audiences with his sitar recitals in many countries such as USA, Canada, Spain, France, Italy and Germany. Devbrat Mishra has been honored with the National Youth Festival Award, Swarmani Alankaran, Kashi Ratna, Sangeet Shikhar, BHU Kostub Samman, German Best Jazz Critic Award and the World Music Visionary Award, USA. In tonight's program, accompanying him on tabla is Prashant Mishra, an A-grade artist of Akashvani. Devbrat Mishra is beginning his sitar recital tonight with Raag Jog, Vilambit and Dhrutgat set to 3 taal.

0: आप सुन रहे थे राग जोग। देवव्रत मिश्र अब प्रस्तुत कर रहे हैं राग गोरख कल्याण में सितार वादन। मध्य लय रूपक ताल में निबद्ध है और द्रुत तीन ताल में है।
1: यू जस्ट हर्ड राग जोग। देवव्रत मिश्रा इज नाउ प्रेजेंटिंग सितार रिसाइटल इन राग गोरख कल्याण। मध्य लय इज सेट टू रूपक ताल एंड द्रुत इज इन तीन ताल।

0: राग गोरख कल्याण के बाद देवव्रत मिश्र अपने सितार वादन का समापन दादरा ताल में निबद्ध राग मिश्र पीलू में धुन से कर रहे हैं।
1: आफ्टर राग गोरख कल्याण, देवव्रत मिश्रा इज कंक्लूडिंग हिज सितार रिसाइटल टुनाइट विथ धुन कंपोज्ड इन राग मिश्र पीलू सेट टू दादरा ताल।

0: येथे सितार पर प्रस्तुत राग मुश्य पीलू मधुन, कलाकार थे देवव्रत मिश्र। संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज आपके साथ तबले पर संगति की प्रशांत मिश्र ने। आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र पर रिकॉर्ड इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया गया।
1: दिस वॉज धुन इन राग मिश्र पीलू।

0: played on sitar by Devvrat Mishra. In tonight's national program of music, accompanying him on tabla was Prashant Mishra. Earlier recorded at Akashvani Varanasi, this program came to you from Delhi station of Akashvani.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। बहत्तरवे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की आज घोषणा कर दी गई है। आर्टिकल 370 फिल्म के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिलेगा।
2: देखिए, आप चाहे मुझे एनआईए की तरफ से भेजिए, आईडी की तरफ से भेजिए या कश्मीर का सीएम बनाकर भेजिए, इट विल मेक नो डिफरेंस। टेररिज्म धंधा है, इट हैज नथिंग टू डू विद ड्रामा ऑफ आजादी, इट हैज एवरीथिंग टू डू विद मनी। अगर अमेरिका पाकिस्तान को अरबों रुपए देता है बिन लादेन को पकड़ने के लिए, तो पाकिस्तान उसे ढूंढने का नाटक करेगा, पकड़वाएगा नहीं ताकि उसकी फंडिंग चलती रहे। सेम सिचुएशन वैली में।
1: ब्रह्म युगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार देने की घोषणा की गई। राजकुमार पेरियासामी को तमिल फिल्म अमरन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देश

0: सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिलेगा।
1: देखिए आप चाहे मुझे एनआईए की तरफ से भेजिए, आईडी की तरफ से भेजिए या कश्मीर का सीएम बनाकर भेजिए, इट मेक नो डिफरेंस। टेररिज्म धंधा है, इट हैज नथिंग टू डू विद ड्रामा ऑफ आजादी, इट हैज एवरीथिंग टू डू विद मनी। अगर अमेरिका पाकिस्तान को अरबों रुपए देता है बिन लादेन से पकड़ने के लिए, तो पाकिस्तान उसे ढूंढने का नाटक करेगा, पकड़वाएगा नहीं, ताकि उसकी फंडिंग चलती रहे। सेम सिचुएशन वैली में।
0: ब्रह्म युगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार देने की घोषणा की गई। राजकुमार पेरियासामी को तमिल फिल्म अमरन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार दिया जाएगा। संजय मिश्रा को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता और सचना नबीदास और रूपाश्री वरकड़ी को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार दिया जाएगा। शाश्वत सचदेव और जीवी प्रकाश कुमार को सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। अभय जोधपुरकर को और वेकोम विजयलक्ष्मी को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायन का पुरस्कार दिया जाएगा। तेलुगु फिल्म चिन्ना काथा कांडू को सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का पुरस्कार मिलेगा। गुजरात के अहमदाबाद में एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग से 5 लोगों की मृत्यु हो गई और कई अन्य घायल हो गए। ये दुर्घटना रामोल गाताद्र रोड पर मौजूद फैक्ट्री में हुई।
2: भीषण आग की घटना की खबर मिलते ही नजदीकी वस्त्राल कैंप से रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने तुरंत स्थल पर पहुंचकर फंसे हुए श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाला और शवों को बरामद किया। घायल श्रमिकों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती किया गया है। अहमदाबाद फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है और फिलहाल कूलिंग ऑपरेशन जारी है। हादसे की सूचना मिलते ही नगर आयुक्त और मेयर सहित अहमदाबाद नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे। इस दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने प्रत्येक मृतक के परिजनों को 4,00,000 रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि देने की भी घोषणा की है। पुलिस की प्रारंभिक जांच के अनुसार यह पटाखा फैक्ट्री अवैध रूप से संचालित की जा रही थी। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि स्थानीय प्रशासन प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि घायलों को हर संभव चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने भी हादसे में घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। संसद के मॉनसून अधिवेशन से पहले सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन में सहयोग की अपील करेगी। मॉनसून अधिवेशन 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होने और पारित किए जाने की संभावना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल हुए तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों के लिए सदन में अलग से बैठने की व्यवस्था को मंजूरी दे दी है। श्री बिरला ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में 6 शिवसेना यूबीटी सांसदों के विलय को भी मंजूरी दे दी। इन 6 सांसदों के विलय के बाद लोकसभा में शिवसेना की संख्या 7 से बढ़कर 13 हो गई है। राजस्व आसूचना निदेशालय DRI ने देश में खुफिया जानकारी के आधार पर कई अभियान चलाए। इसके अंतर्गत विदेश से तस्करी कर लाया गया 15 किलोग्राम सोना और 20 किलोग्राम चांदी जब्त की गई, जिसकी कुल कीमत लगभग 22 करोड़ रुपए है। साथ ही 2 करोड़ रुपए से अधिक की भारतीय मुद्रा भी जब्त की गई। वित्त मंत्रालय ने बताया कि इन अभियानों में अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा 2026 के नतीजे घोषित कर दिए हैं। छात्र अपने नतीजे डिजी लॉकर परिणाम पोर्टल results.digilocker.gov.in पर देख सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिशों के अनुसार CBSE ने इस वर्ष से 10वीं कक्षा के लिए 2 बोर्ड परीक्षाएं शुरू की थी। ओडिशा में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की पवित्र अडप्पा बीजे अनुष्ठान आज पुरी के श्री गुंडीचा मंदिर में पूर्ण श्रद्धा के साथ संपन्न हो रहा है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए प्लेऑफ मैच में आज फ्रांस का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। यह मैच देर रात 2:30 बजे से अमेरिका के मियामी स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।